सुप्रभात। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948, भाद्र माह की तिथि 18, तदनुसार 10 सितंबर ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur to Jharsuguda, 4th line, Katni to Pendra Road, 4th line, and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bengarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Umalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs. Mr. Vaishnav informed that the government has decided to four-lining or quadrupling of all the 7 high-density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. These routes cover 11,000 kilometers railway networks and four lining of 2,000 kilometers has been completed. These approved projects for four lining are related to the high density railway networks. Prime Minister Narendra Modi has said that the cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the five

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। हम आकाशवाणी के चाय भाषा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6:10 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन और साथी।
1: एपिसोड 194 194।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और साथी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में इस भजन से।

श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। और अब आइए सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये वंदना।

श्रोताओं, ये वंदना आप सुन रहे थे हरिओम शरण के स्वर में। आइए अब सुनते हैं ओम व्यास और साथियों के स्वर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब ये जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे सुभाषिश मित्रा के स्वर में संगीत रचनाओं का। सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईवासा। सवेरे 8 समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। सवेरे 8:40 पर सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। कलाकार होंगी रीता कुमारी और साथी। आप सुनेंगे हमारे चाईवासा केंद्र से। श्रोताओं, सवेरे 9 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। सवेरे 10 सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। उसके बाद दिन के 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। यहीं से दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दिन के 3 आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। शाम 4 सुनिएगा मुख्य समाचार। शाम 4:02 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 5 सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं, हमारे केंद्र से शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे युगल गीत। शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, शाम 6 सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं, शाम 6:02 पर सुनिएगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। श्रोताओं, शाम 6:30 पर सुनिएगा संथाली कार्यक्रम, इसमें आनंद लीजिएगा लंगड़े लोकगीत से बंगाली हांसदा और साथियों के स्वरों में। आज की भेंटवार्ता का विषय होगा सामाजिक साहित्य का विकास। भेंटवार्ताकार होंगे वीर प्रताप मुर्मू। श्रोताओं, शाम 4 सुनिएगा दोंगलो, माफ कीजिएगा श्रोताओं, उसके बाद आप सुनेंगे दोंगलो गीत मदन सोरेन और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 7 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा हमारे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, शाम 7:15 पर। श्रोताओं, शाम 7:30 पर सुनेगा हमारे किसान भाइयों और बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी, इसमें आज की चर्चा का विषय होगा दलहन और तिलहन फसलों की खेती। मनोरंजन की जगह हो लोकगीत से जगबंधु बारी और साथियों के स्वरों में। मौसम की जानकारी प्राप्त कीजिएगा और कार्यक्रम में आप भेंट वार्ता भी सुन सकेंगे। वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी आप इस कार्यक्रम प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आनंद लीजिएगा मुंडारी लोकगीत का जादू मुंडरी और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 8 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। शाम 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9 और उसके बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। रात्रि 11 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। रात्रि 11:45 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं भी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं सुभाषिश मित्रा के स्वर में संगीत रचनाओं का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे सुभाषिष मित्रा के स्वर में संगीत रचनाओं का। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आपका मेरा जोहार और नमस्कार। आपको बता दूं, कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। तो श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, और सबसे पहले ये सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत है।

श्रोताओं, किशोर कुमार की मधुर आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लोफर।

श्रोताओं, लोफर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में, और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म संगम का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म संगम का ये गीत। आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म धरती कहे पुकार के का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म धरती कहे पुकार के का ये गीत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर, आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म आराधना का ये गीत है।

0: और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं इस जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जोहार चाईबासा में। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं, वो गीत हमने लिया है फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये था सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत। और अब श्रोताओं सुनते हैं येसुदास की आवाज़ में सुनैना फिल्म का ये गीत है।

सुनैना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज़ में। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चायबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर, और जोहर चायबासा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्मी गाने अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ। आइए अब सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है गाइड।

श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब आइए बात करते हैं उनकी जिनकी बदौलत आज देश आज़ाद है। श्रोताओं, भारतीय सेना के हमारे वीर सैनिक हर वक्त देश की सेवा में लगे हुए हैं और हर प्रतिकूल परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। श्रोताओं, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि देश के लिए देश के सैनिकों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमें उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और सदैव हमारे सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। और अब भाई सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म उपकार का गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म गोलमाल का ये गीत है।

0: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बनी। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़,

0: झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्यजीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस

0: रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुँचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said, these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsuguda, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arnakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bangarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Omalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs.
6: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors get connected by this project. Already from Wadi to Secunderabad, work is going on. It has been approved earlier. And now from Hyderabad to Secunderabad to Kazipet. So the two major corridors where the connection points are Kazipet and Wadi, in between there is Secunderabad. These two corridors get connected by a quadrupled, by a four-lining corridor. So this makes a huge traffic interchange can happen between these two corridors, and many trains which have to go from east to west or from south to east or from south to west, they can all use this corridor for their connectivity.
5: Mr. Vaishnav informed that the government has decided to four-lining or quadrupling of all the 7 high-density railway corridors. He said these routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route.
6: रेलवे के सात हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स
7: द सेवन हाई डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर्स अलॉन्ग विद सेवरल अदर कॉरिडोर्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू कैरी सिग्निफिकेंट ट्रैफिक इन द फ्यूचर आर बीइंग अपग्रेडेड टू फोर लाइन दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली टू मुंबई मुंबई टू चेन्नई चेन्नई टू कोलकाता एंड कोलकाता टू मुंबई रूट्स इन एडिशन इट्स टू डायगोनल्स द दिल्ली टू चेन्नई एंड मुंबई टू चेन्नई रूट्स आर ऑल्सो बीइंग क्वाड्रुपल्ड अलॉन्ग विद द दिल्ली टू गुवाहाटी कॉरिडोर
6: ये दोनों डायगोनल्स फिर दिल्ली से गुवाहाटी
5: Prime Minister Narendra Modi has said that the cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the five railway projects worth over 10,000 crore rupees will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. The Prime Minister also said that the cabinet decision pertaining to three multi-tracking projects worth over 10,500 crore will add additional railway network and improve connectivity across Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal. He added that it will also encourage tourism, especially heritage and wildlife related tourism and lower logistics costs. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit, markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-Led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said India is focused on empowering women financially, socially and through education, skills and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth. Highlighting women's financial inclusion, Mr. Goyal noted that India has nearly 300 million women bank account holders and provides collateral-free loans to women seeking to start their own work, including those without a credit history.
8: 100 million women in rural India, in the villages, are members of 9 million self-help groups who get together to experiment, to work on an idea. Women who earn about 100,000 Indian rupees, which is probably barely $1,000, but which means a lot for a woman who didn't earn anything until then, has now exceeded about 30 million, whose personal income is over 100,000 Indian rupees. And we hope to continue to expand both the number and the amount. We call them Lakhpati Didis. Lakhpati as in a person with 100,000 rupees, and Didi is a sister.
5: Today is the third day of the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the GFF on Tuesday. We have more from a correspondent.
1: On the third day of the Global FinTech Fest in Mumbai, various sessions on agentic AI, tokenization and quantum technology have been organized. Union Minister Jyotiraditya Sindhia will address a session titled Connect India, Empowered Finance, Building Trusted Digital Infrastructure for the AI Economy. RBI Governor Sanjay Malhotra will address a session titled Shaping the Next Decade of Finance, Technology, Trust and Innovation. SEBI Chairman Tuhinkant Pandey, former Chairman of UIDAI Nandan Nilekani, SBI Chairman C.S. Shetty are also scheduled to address important sessions during the day. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
5: The Election Commission of India, ECI, has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls in Tripura. Various political parties, including the ruling Bharatiya Janata Party, BJP, demanded it in view of the September 28 village committee elections in the state's tribal areas. With January 1, 2027 as a qualifying date in the state, the SIR exercise, which was earlier scheduled to commence from September 5th, has now been deferred. This is Akashwani giving you the news.
0: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on public at AIR News Alerts.
5: India stepped up its humanitarian assistance to flooded Nepal with the 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies landed in Kathmandu yesterday. Minister of External Affairs, MEA, said the latest consignment includes National Disaster Response Force, NDRF equipment, rescue gear, forensic supplies and replenishment supplies for the Indian Army teams involved in the ongoing relief and rescue efforts. We have more from a correspondent.
2: India's assistance comes as rescue operations continue in areas affected by flash floods in Nepal, including at the Chilimi Tunnel in Rasuwa, where an Indian team is working alongside the Nepal Army in search and rescue operations. According to Nepal's Disaster Management Authority, 13,646 people have been rescued so far in the flood-hit areas, while around 5,132 people remain missing. Among those reported missing are around 2,860 people from Rasuwa and 1,787 from Nuwakot. The missing include Nepal Army personnel, Nepal Police and Armed Police Force personnel, government employees, bank and financial institution employees, as well as foreign tourists. India's relief response began shortly after the devastating flash floods in the last week of August. The first Indian relief aircraft arrived in Nepal on August 26, carrying 10 tons of supplies, including temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps and medicines. Yashasvi Kirial for Akashvani News, Delhi.
5: International Atomic Energy Agency, IAEA, has referred Iran to UN Security Council for the first time in 20 years, citing Tehran's failure to cooperate with a long-running probe into uranium traces found at undeclared sites. The IAEA's 35-member board approved the resolution by 23 votes to 5 with 8 abstentions. Russia, China and Niger voted against it. The resolution was proposed by the United States, Britain, France and Germany. Referring Iran to the Security Council opens the country to possible sanctions and asset freezes. However, such punitive measures are unlikely because Iran's allies Russia and China are permanent Security Council members and can veto any punitive action. The Financial Action Task Force, FATF, has warned countries about the growing misuse of gaming and gambling platforms for financial crimes. FATF said criminals are using gambling platforms to move money without actually gambling, splitting large amounts into multiple small transactions, and placing unusual or coordinated bets to avoid detection. It has also flagged illegal and unlicensed online gaming as a major risk. India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Kerala, Mahe and Uttarakhand during the next 2 days. The Met Department has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andhra Pradesh, Telangana, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till the 15th of this month. Similar conditions are likely to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, East Uttar Pradesh and Madhya Pradesh till tomorrow. Hot and humid weather over coastal Andhra Pradesh is likely today. In the US Open, Americans Ben Shelton and 11-seed Francis Tiafoe have set up an All-American men's single semifinal. In the women's single semifinals on Friday, defending champion Arina Sabalenka will face 3rd-seed Jessica Pegula, while 4th-seed Coco Gauff will play Elina Rybakina of Kazakhstan. In the men's singles quarterfinals, 8th-seed Shelton stunned defending champion Carlos Alcaraz in a 5-set thriller. Tiafoe defeated fellow American Alex Michelsen in his quarterfinal match. Both Shelton and Tiafoe are chasing the first Grand Slam final. In the other men's quarterfinals, 28-seed Belgian Alexander Blok is currently playing against unseeded Russian Karen Khachanov, while top-seed Alexander Zverev of Germany will play Dutchman Botik van der Zandschulp today. News just in Philippines, 5 people have died and 86 remain unaccounted for after a fire broke out on a ferry off the Palawan province. The country's coast guard says the fire erupted on the MV June Aster as it neared its destination at the tourist hotspot of Coron in Palawan province. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
9: Thank you, Abhishek. Defense Minister Rajnath Singh's meeting with the Sri Lankan president in Colombo is noticed prominently by the dailies. Hindustan Times quotes the Sri Lankan president Anuradha Kumarasinghe as saying, "Won't allow our soil to be used for anti-India activities." Delhi turns into a diplomatic fortress as BRICS leaders arrive, reports the Pioneer. Following the tragic Satyaniketan tragedy in Delhi, the Asian Age writes, Delhi surveys 1,200 PGs, launches big crack crackdown. In another story, the Asian Age says BJP to mark Prime Minister's 25 years in service with birthday outreach. And finally, century on, Oxford set to return Naga ancestral remains. Well, the Tribune reports that 39 Naga ancestral skulls, some taken more than a century ago during British colonial rule, are to be brought home from Oxford to Nagaland. And with that, it's back to you, Abhishek.
5: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight, specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's single semifinal at the US Open in New York. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
10: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
11: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
12: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
11: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
13: अरे रंथू बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना। अब तुम्हारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है। इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
14: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
13: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
14: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
13: गर्भ के दौरान बराबर जांच कराते रहें।
14: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
13: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
14: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
15: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
16: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
17: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
16: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
17: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
15: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
18: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 नई मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, झारखंड समेत 5 राज्यों में बेहतर होगा रेल संपर्क और माल ढुलाई। देश के 30 में से 24 क्रिटिकल मिनरल्स झारखंड में उपलब्ध। खान एवं भूतत्व विभाग तथा जियोलॉजिकल सर्वे की उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का निर्णय। जमशेदपुर के मतदाता सूची में 3 अफगानी नागरिकों के नाम मिलने से प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। रांची मौसम केंद्र ने जारी किया अलर्ट। और बोकारो में तीसरी झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न। पटना में होने वाली पूर्वी क्षेत्र प्रतियोगिता के लिए राज्य की टीम चयनित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए 8 महत्वपूर्ण मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दक्षिण भारत की 5 और झारखंड छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों की 3 परियोजनाओं से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी। इन पहलों से माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन लागत में कमी आएगी। खान एवं भूतत्व विभाग तथा जियोलॉजिकल सर्वे की बैठक में झारखंड की नई खनन रणनीति पर चर्चा हुई। खनन सचिव अरवा राजकमल ने बताया कि देश के 30 में से 24 क्रिटिकल मिनरल्स झारखंड में उपलब्ध हैं। बैठक में पारंपरिक कोयले से हटकर पर्यावरण अनुकूल खनिजों के अन्वेषण और राज्य में ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया है।
19: 30 क्रिटिकल मिनरल हैं, उसमें 24 हम लोगों के पास एग्जिस्ट करने का प्रमाण हम लोगों के पास है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिथियम, बिकॉज ऑफ अभी क्लाइमेट चेंज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बात कर रहे हैं, जो बैटरीज की बात, तो लिथियम का डिमांड 40 गुना होने वाले हैं आने वाले 20 से 25 साल। माइंस हम लोगों का लिथियम के लिए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक हम लोगों का काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ये विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, माइनिंग हो जाए और माइंड मिनरल क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग भी झारखंड में।
18: जमशेदपुर पूर्वी के बूथ संख्या 286 पर 3 अफगानी नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने के खुलासे के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए डीसी और एसएसपी को गहन जांच के निर्देश दिए हैं।
20: फॉर्म 6 में एक रिलेटिव का नाम, उनका नंबर भी, एपिक नंबर भी मांगा जा रहा है, वो भी उसका भी नाम ढूंढा जा रहा है, उसमें और भी व्यक्ति है, वो भी उसी एरिया पर चेक किया जा रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उसका काम कर रहा है ताकि कोई भी विदेशी नागरिक मतदाता सूची में नहीं आ सके। एसआर प्रोसेस शुरू हुआ, ये एसआर प्रोसेस केवल भारत के नागरिक के लिए, इसलिए विदेशी नागरिक इसमें भाग नहीं लेंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट बना के नहीं, मतलब गलत डॉक्यूमेंट करके देंगे तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपका वो सामने आ जाती है, उसके बाद काम निकाल।
18: रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण बैठक में मतदाता सूची कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दावा आपत्ति सुनवाई के दौरान भीड़ रोकने के लिए टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने तथा पूरी निष्पक्षता से समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने को कहा है। रांची के सीएम पीडीआई रविंद्र भवन में 2 दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम सह उत्पाद प्रदर्शनी 2026 शुरू हुई। उद्घाटन करते हुए सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य एमएसएमई को बड़े सार्वजनिक उपक्रमों से जोड़ना है। इस आयोजन में 150 से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमियों ने वेंडर पंजीकरण कराया है।
21: अगर हमें कोई माइन प्लानिंग करनी है, हम सॉफ्टवेयर लाते हैं बाहर के कंट्रीज से, वो सॉफ्टवेयर इंडिया में क्यों नहीं बन सकता, हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इनोवेशन और इंडियन सामान बनना, ये हमारे लिए एक प्राथमिकता है। दूसरा क्या है, अगर हम सिर्फ सीएमपीडीआई की बात करें तो सीएमपीडीआई में भी संभावनाओं की कोई कमी नहीं है।
18: मीडिया घराना, अखबारे मशरिक और टीएमसी सांसद नदीमुल हक के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी के बाद वित्तीय गड़बड़ियों की जांच तेज हो गई है। 60 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध नकद लेन देन और बिटकॉइन निवेश मामले में कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। जब्त किए गए लैपटॉप और हार्ड ड्राइव की फॉरेंसिक जाँच जारी है। रांची के नेपाल हाउस में आयोजित विशेष समारोह में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की 8 जल सहियाओं को सम्मानित किया। इसमें बोकारो की 5 और रांची की 3 जल सहिया शामिल हैं। सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जलापूर्ति, जल संरक्षण और सामुदायिक जागरूकता में इनके सराहनीय योगदान की सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में जल पर्याप्त ग्राम पंचायतों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के 30 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश की 500 पंचायतों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। हजारीबाग शहर को सुंदर और जाम मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। उपायुक्त हेमंत सती ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क किनारे लगने वाले ठेला खोमचे व्यवसायियों को व्यवस्थित करने के लिए आधुनिक वेंडिंग जोन विकसित करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए ताकि यातायात सुगम हो सके।
3: सड़क पर जितने भी आंदोलन थे उसकी ट्रेमेंडस एंगर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शब्दों से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। हम लोगों का प्लान लिए गए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे वेंडिंग जोन बनाए जाए, कुछ जिस वेंडर है उस स्ट्रीट वेंडर को वहाँ शिफ्ट किया जा सके और वो गरिमामय जीवन जीते हुए अपना जीवन यापन करें।
18: रांची के सुकरहोटो में नवनिर्मित ट्रांसपोर्ट नगर का नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यहां पार्किंग लेआउट और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था जांची। इस ट्रांसपोर्ट नगर के शुरू होने से शहर में भारी वाहनों का जाम कम होगा। रांची मौसम केंद्र ने आज और कल राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बादल गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है।
4: जो सिस्टम डेवलप हो रहा है नींद हवा का क्षेत्र, उसके प्रभाव में झारखंड में अगले 3-4 दिनों में आपको बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये 11 तारीख के बाद से 12 तारीख से थोड़ा सा स्थिति कमजोर होगी सिस्टम की, तो उसके बाद में बारिश में धीरे धीरे कमी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी यही है कि गर्जन वज्रपात के साथ में आपको बारिश झारखंड में देखने को मिलेगी, जिसको लेके येलो अलर्ट है।
18: हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का पद्मा प्रखंड में भव्य आगाज हुआ। इस 12 दिवसीय आयोजन में करीब 50 टीमें और 750 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बोकारो के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 3री झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में रांची, लातेहार और हजारीबाग की टीमें अलग अलग वर्गों में ओवरऑल चैंपियन रहीं। अब चयनित खिलाड़ी 22 से 24 सितंबर तक पटना में होने वाली 37वीं पूर्वी क्षेत्र एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची जिला स्कूल में पुरानी टंकी गिराने में लापरवाही की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 40 साल पुरानी टंकी तोड़ते वक्त ढही 2 मजदूरों की मौत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड समेत देश भर में रेलवे को मिलेगी रफ्तार। प्रभात खबर ने लिखा है, 14वीं जेपीएससी में सामान्य वर्ग से 1 करोड़ और एससी एसटी से 80 लाख रुपए में होती थी डील। दैनिक जागरण लिखता है, रांची आरएसएस कार्यालय पर हमला मामले में पटना में छापा। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 नई मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, झारखंड समेत 5 राज्यों में बेहतर होगा रेल संपर्क और माल ढुलाई। देश के 30 में से 24 क्रिटिकल मिनरल झारखंड में उपलब्ध। खान एवं भूतत्व विभाग तथा जियोलॉजिकल सर्वे की उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का निर्णय। जमशेदपुर में मतदाता सूची में 3 अफगानी नागरिकों के नाम मिलने से प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। रांची मौसम केंद्र ने जारी किया अलर्ट। और बोकारो में 3री झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न। पटना में होने वाली पूर्वी क्षेत्र प्रतियोगिता के लिए राज्य की टीम चयनित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
22: मैं चली।
23: कहाँ?
22: बच्चे को पोलियो खुराक पिलवाने।
24: पोलियो खतरनाक बीमारी है जिससे बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है।
22: अचानक हाथ पांव लुंजपुंज हो जाता है या बच्चा चल फिर नहीं सकता।
24: बच्चे को 1 साल की उम्र तक पोलियो की 3 खुराकें
22: 1-1 महीने के अंतर पर दिलाएं।
24: जानकारी के लिए सहिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलें।
22: पोलियो की खुराक सभी सरकारी अस्पताल,
24: डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर में मुफ्त मिलती है।
22: 2 बूंद जिंदगी के।
15: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
25: भूल गए आज कौन सा
1: दिन है?
6: गुरुवार है, क्या हुआ तो?
1: अरे गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर एक साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं।
6: अच्छा चलो जल्दी फिर।
1: आप भी याद रखें, टीकाकरण कराएं और बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।
7: हर गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर एक साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगवाएं।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक में आज आप आनंद ले रहे हैं। खोरठा लोकगीतों का कलाकार है रीता कुमारी और साथी।

ले रहे थे खोरठा लोकगीतों का कलाकार थे रीता कुमारी और साथी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम विविधा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदयपान। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और समय निकालकर आप हमारे कार्यक्रम भी सुन रहे होंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। श्रोताओं, हर साल दुनिया भर में लाखों लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिनमें से कई लोग लंबे समय से गहरे भावनात्मक दर्द से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसे कैसे व्यक्त करें या मदद कैसे मांगे। यही कारण है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, ताकि ये याद दिलाया जा सके कि आत्महत्या को रोका जा सकता है और समय पर सहायता मिलने से जीवन बचाया जा सकता है। श्रोताओं, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज की बातचीत को शुरू करते हैं और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। श्रोताओं, आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 10 सितंबर को आत्महत्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, इस दिवस की स्थापना सन 2003 में अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ IASP ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से की थी। तब से ये सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों को आत्महत्या रोकथाम को बढ़ावा देने और मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के बारे में बातचीत करने को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि श्रोताओं, किस तरह से आत्महत्या को रोका जा सके, इसके लिए एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है। श्रोताओं, इस दिन का महत्व केवल मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य आत्महत्या से जुड़े कलंक को कम करना है, लोगों को सहायता लेने और देने के लिए प्रोत्साहित करना और आत्महत्या के जोखिम में योगदान देने वाले कारकों को जो है उसकी समझ को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, खुले और सहानुभूतिपूर्ण संवादों के लिए स्थान बनाकर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जी हाँ श्रोताओं, खुले और सहानुभूतिपूर्ण संवादों के लिए जो है एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि संकट को पहचानना और लोगों को उचित सहायता से जोड़ना रोकथाम में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। श्रोताओं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2026 का विषय है यानी थीम है आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना, और इसके साथ जुड़ा आह्वान है बातचीत शुरू करें। श्रोताओं, ये विषय आत्महत्या के बारे में चुप्पी, कलंक और गलतफहमी से दूर हटकर अधिक खुले, ईमानदार और सहानुभूतिपूर्ण संवाद की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। ये ऐसे स्थान बनाने में महत्व पर जो है बल देता है जहाँ लोग बिना किसी डर के अपने अनुभवों के बारे में

बात कर सके, साथ ही व्यक्तियों और समुदायों को संकट को पहचानने, सहायता प्रदान करने और लोगों को उचित देखभाल से जोड़ने में मदद करने के लिए ये प्रोत्साहित करता है। श्रोताओं, आत्महत्या की पीड़ा के लक्षण हमेशा एक जैसे नहीं होते और हो सकता है कि व्यक्ति सीधे तौर पर ये न कहे कि वो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। उनकी भावनाओं, व्यवहार और बातचीत में दिखने वाले बदलावों पर ध्यान देने से ये पहचानने में मदद मिल सकती है कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं। कुछ संकेत जिन पर गौर करना चाहिए वो इस प्रकार है, जैसे कि परिवार या दोस्तों के साथ अगर कोई कम समय बिताए, सामाजिक मेलजोल से बचे या उन गतिविधियों में रुचि खो दे जिनका वो पहले आनंद लेते थे, यानी कि जो अलगाव हो जाता है श्रोताओं। तो अगर इस तरह से हमें ये देखने को मिले कि कोई व्यक्ति अलगाव का शिकार है, यानी कि परिवार या दोस्तों के साथ कम समय बिताता है या सामाजिक मेलजोल से जो बचता है, हो सकता है कि वो इस तरह से जो है किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। श्रोताओं, निराशा, बेबसी अगर कोई महसूस करे इस तरह, तो हो सकता है कि उनके हालत बेहतर नहीं हो। श्रोताओं, मनोदशा में महत्वपूर्ण बदलाव दिखना, जैसे लगातार उदासी, चिंता, चिड़चिड़ापन, क्रोध या भावनात्मक संकट। श्रोताओं, नींद, खान पान की आदतों, व्यक्तिगत देखभाल, दैनिक दिनचर्या या अन्य व्यवहारों में परिवर्तन जो व्यक्ति के लिए असामान्य प्रतीत हों। श्रोताओं, अक्सर व्यक्ति को ये जो है महसूस होता है या जी हाँ, उन्हें महसूस होता है कि उन्हें ऐसे लगता है कि वो किसी तरह का बोझ महसूस कर रहे हैं। अक्सर यह व्यक्त करना कि दूसरों के लिए उनके बिना रहना बेहतर होगा या वे परिवार या दोस्तों पर बोझ हैं। श्रोताओं, किसी असामान्य या अंतिम तरीके से अलविदा कहना, अपनी कीमती चीज़ों जो है उनका दान कर देना या अपने निजी मामलों को व्यवस्थित करना। अगला लक्षण है श्रोताओं, आत्महत्या के बारे में बात करना। श्रोताओं, आत्महत्या का जिक्र करना, मरने की इच्छा व्यक्त करना या महसूस करना कि जीने का कोई कारण नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ न रहने की इच्छा के बारे में अप्रत्यक्ष टिप्पणियों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। श्रोताओं, मुख्य बात यह है कि किसी एक विशिष्ट लक्षण की जो है किसी एक विशिष्ट लक्षण से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। किसी व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में ध्यान देने योग्य बदलाव, विशेष रूप से जब कई लक्षण एक साथ दिखाई दें, तो उनसे संपर्क करने बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी बातें सुनने और उन्हें उचित सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करने का एक कारण हो सकता है। श्रोताओं, अब आइए बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके लिए हमें बातचीत शुरू करनी होगी, एक शांत और एकांत जगह चुनना होगा और उनसे बातें करनी होगी, पूछना होगा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आत्महत्या को लेकर चिंता है तो सीधे यह पूछना उचित होगा कि क्या वे आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। श्रोता, उन्हें बोलने का समय दें, बीच में टोकने, दोषारोपण करने या उनकी भावनाओं को खारिज करने की कोशिश ना करें। उनकी पीड़ा को स्वीकार करते हुए सरल प्रतिक्रियाएं देने से उन्हें यह महसूस करने में मदद मिल सकती है कि उनकी बात सुनी जा रही है। श्रोताओं, आत्महत्या के बारे में दिए गए या बताए गए बातों को ध्यान आकर्षित करने का प्रयास समझकर खारिज ना करें या यह ना माने कि व्यक्ति का मतलब वह नहीं है जो वो कह रहा है।
आत्महत्या के विचारों की कोई भी अभिव्यक्ति ध्यान देने योग्य है। श्रोताओं, लगातार संपर्क में रहें और जब संभव हो तो किसी की सुरक्षा को लेकर तत्काल चिंता होने पर उसे अकेला ना छोड़ें। श्रोताओं, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, डॉक्टर या सहायता के किसी अन्य उपयुक्त स्रोत से जुड़ने में मदद करें। उनके साथ जाने या अपॉइंटमेंट की व्यवस्था करने में मदद करने से उन्हें मदद लेने में आसानी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वहाँ मौजूद रहें, सुनें और उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करने में मदद करें। श्रोताओं, सबसे ज़रूरी है कि जो बातचीत शुरू करनी होगी, श्रोताओं आत्महत्या के बारे में बातचीत शुरू करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर जब कुछ गलत कहने का डर हो। लक्ष्य सही शब्द ढूंढना नहीं है, बल्कि सच्ची चिंता के साथ उस व्यक्ति से बात करना है। बातचीत शुरू करने के कुछ तरीके इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे एक शांत स्थान का चुनाव, एक निजी शांत जगह ढूंढें जहां व्यक्ति खुलकर बात करने में सहज महसूस करे, अपनी चिंता साझा करें, जो आपने देखा है उससे शुरुआत करें, जैसे मैंने देखा है कि आप आजकल पहले जैसे नहीं लग रहे, या आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सीधे सवाल पूछें, यदि आत्महत्या को लेकर चिंता है तो स्पष्ट और शांत भाव से पूछें, क्या आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। सीधे पूछने से आत्महत्या का खतरा नहीं बढ़ता है। ध्यान से उनकी बातें सुननी होगी। व्यक्ति को बोलने दें, बीच में टोकने, आलोचना करने या तुरंत समाधान सुझाने की कोशिश ना करें। उनकी भावनाओं को उतना ही महत्व दें जितना कि वे हकदार है। श्रोताओं, ये वाकई आप जो है उनकी भावनाओं को समझना होगा। आप ये कह सकते हैं कि ये वाकई बहुत मुश्किल लगता है, जैसे इस तरह के जवाब ये दिखा सकते हैं कि उनके अनुभव को सुना जा रहा है और गंभीरता से लिया जा रहा है। पूछें कि किस चीज़ से मदद मिलेगी और व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर या सहायता किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत के से बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। श्रोताओं, हमें बातचीत के दौरान कुछ बातें कहने से बचना चाहिए, जैसे कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि दूसरों की हालत इससे भी बदतर है। श्रोताओं, अपनी स्थिति की तुलना दूसरों की समस्याओं से करने से उनका दर्द महत्वहीन लगने लगता है। श्रोताओं, सकारात्मक सोचना जरूरी है। किसी को सकारात्मक रहने के लिए कहना उसके साथ हो रही समस्या की गंभीरता को कम आंकना हो सकता है। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि जो है श्रोताओं काफ़ी चीज़ें हैं जो हम उनसे नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें उनसे बातें करती रहनी चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रोताओं, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या की भावनाएं आ रही हैं तो हमें उनसे बातें करते रहनी चाहिए और उनके दर्द को समझना चाहिए। इससे हो सकता है कि आत्महत्या के विचार वो त्याग दें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है श्रोताओं कि उन्हें हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो श्रोताओं, आज 10 सितंबर है और आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इस जानकारी के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं और आइए बात करते हैं अब्दुल हमीद जी की, जिनकी आज शहादत दिवस है। श्रोताओं,
अब्दुल हमीद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धर्मपुर गांव के एक मुस्लिम दर्जी परिवार में 1 जुलाई 1933 को हुआ था। आजीविका के लिए कपड़ों की सिलाई का काम करने वाले मोहम्मद उस्मान के पुत्र अब्दुल हमीद जी की रुचि अपने इस पारिवारिक कार्य में बिल्कुल नहीं थी। कुश्ती के दांव पेचों में रुचि रखने वाले पिता का प्रभाव अब्दुल हमीद पर भी था। लाठी चलाना, कुश्ती का अभ्यास करना, पानी से उफनती नदी को पार करना, गुलेल से निशाना लगाना, एक ग्रामीण बालक के रूप में इन सभी के क्षेत्रों में हमीद पारंगत थे। उनका एक बड़ा गुण था, सबकी यथासंभव सहायता करने को तत्पर रहना, किसी अन्याय को सहकर जो है सहन करना उनको नहीं भाता था। श्रोताओं, यही कारण है कि जब किसी गरीब किसान की फसल बलपूर्वक काटकर ले जाने के लिए जमींदार के 50 के लगभग लोग उस किसान के खेत पर पहुँचे तो हमीद जी ने उनको ललकारा और उनको बिना अपना मंतव्य पूरा किए ही लौटना पड़ा। इसी प्रकार बाढ़ प्रभावित गांव की नदी में डूबती दो युवतियों के प्राण बचाकर अपने अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया। श्रोताओं, 21 वर्ष के अब्दुल हमीद जीवन यापन के लिए रेलवे में भर्ती होने के लिए गए, परंतु उनके संस्कार उन्हें प्रेरित कर रहे थे सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए। अतः उन्होंने एक सैनिक के रूप में सन 1954 में अपना कार्य प्रारंभ किया। हमीद जी 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किए गए थे। जम्मू कश्मीर में तैनात अब्दुल हमीद पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों की खबर तो लेते हुए मजा चखाते रहते थे। ऐसे ही जो है श्रोताओं, उनके बारे में काफ़ी बातें कही जाती हैं। श्रोताओं, सन 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, अब्दुल हमीद जी को अवसर प्राप्त हो गया कि अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। मोर्चे पर जाने से पूर्व उनके भाई को उन्होंने कहा था कि पलटन में उनकी बहुत इज्जत होती है जिनके पास कोई चक्र होता है। देखना, हम जंग में लड़कर कोई ना कोई चक्र जरूर लेकर लौटेंगे जो उनके स्वप्नों को अभिव्यक्त करते हैं। श्रोताओं, उनकी भविष्यवाणी पूर्ण हुई और 10 सितंबर 1965 यानी कि आज ही के दिन जब पाकिस्तान की सेना अपने जो है श्रोताओं नापाक इरादों के साथ अमृतसर को घेर कर उसको अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही थी, अब्दुल हमीद जी ने पाक सेना को अपने अभेद्य पैटर्न टैंकों के साथ आगे बढ़ते देखा। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अब्दुल हमीद जी ने अपनी तोप युक्त जीप की टीले के समीप खड़ा किया और गोले बरसाते हुए शत्रु के 3 टैंक ध्वस्त कर डाले। पाक अधिकारी क्रोध और आश्चर्य में थे। उनके मिशन में बाधक अब्दुल हमीद पर उनकी नज़र पड़ी और उनको घेर कर गोलों की वर्षा प्रारंभ कर दी गई। इससे पूर्व कि वो उनका एक और टैंक समाप्त कर पाते, दुश्मन की गोलीबारी से वो जो है शहीद हो गए। अब्दुल हमीद जी का शौर्य और बलिदान ने सेना के शेष जवानों में जोश का संचार किया और दुश्मन को खदेड़ दिया गया। श्रोताओं, 32 वर्ष की आयु में ही अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर करने वाले इस वीर को उनकी शहादत पर आज हम नमन करते हैं। उन्होंने अपनी अद्भुत वीरता से पाकिस्तानी शत्रुओं के खतरनाक कुत्सित इरादों को ध्वस्त करते हुए अपना नाम इतिहास में सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया। साथ ही एक संदेश भी दिया कि केवल साधनों के बलबूते युद्ध नहीं जीता जाता। अपने भाई से किया गया वादा उन्होंने पूर्ण किया और मरणोपरांत उनको सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो उनकी पत्नी श्रीमती रसूली बीबी ने प्राप्त किया।
इसके अतिरिक्त भी उनको समर सेवा पदक, सैन्य सेवा पदक और रक्षा पदक प्रदान किए गए। श्रोताओं, 28 जनवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों में उनके सेट में 3 रुपये का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट पर रिकाइललेस राइफल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार वीर अब्दुल हमीद जी का रेखा चित्र उदाहरण की तरह बना हुआ है। 4th ग्रेनेडियर्स ने अब्दुल हमीद की स्मृति में उनकी कब्र पर एक समाधि का निर्माण किया है। हर साल उनकी शहादत के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। श्रोताओं, उनके नाम से उनके गांव में एक डिस्पेंसरी, पुस्तकालय और स्कूल है। सैन्य डाक सेवा में जो है उन्होंने सैन्य डाक सेवा ने 10 सितंबर 1979 को उनके सम्मान में एक विशेष आवरण जारी किया था। तो श्रोताओं, हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे वीर शहीद अब्दुल हमीद जी के बारे में, और अब आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, और अब भाई सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: స్వయం ఇది కట్టుబడి భారతీయ సేన.
1: श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है. उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गीत, अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं फिल्म तड़ी पार्क से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ। आइए अब सुनते हैं अगला गीत। गीत को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब श्रोताओं, ये सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म जोश का ये गीत है।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन, और अब पेश है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है

नमस्कार, करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से। प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओ, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया। हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को

0: लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।

0: हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
1: कमली और सोमारू चले घास लेने।
2: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
2: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
2: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
0: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:29 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रचना।
1: चलो हम अपने श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार, जोहार।
0: आपको भी जोहार।
1: तुमको भी जोहार रचना। और बस हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में जब भी मिले खुशी के साथ मिले।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: हाँ।
1: और जब खुशी मिलती है तो फिर लगता है कि सारा काम अच्छा होगा, है ना। और जब अच्छे काम होते हैं तो उसके लिए हम शुरू से ही अपना मन अच्छा बनाए रखते हैं, पॉजिटिव बनाए रखते हैं, ताकि हम आगे भी अच्छे बन सके और अपना काम भी निकाल सके।
0: वही होता है ना कि खुशियां तो मतलब छोटी छोटी चीजों से भी हमें मिल जाती है, लेकिन हम उस खुशी को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। और हमेशा उलझे रहते हैं शिकायतों के दौर में।
1: तो फिर उससे हमको हमेशा निकलने की कोशिश करना चाहिए। और पता है रचना, कोई भी काम करने से पहले हमें कुछ अच्छा सोचना चाहिए, ताकि ये काम हमें काम में जो है सफलता मिल जाए।
0: बिल्कुल, अच्छी सोच का मतलब है की सकारात्मक सोच मंजिल की दिशा में सोच रखना।
1: तभी तो हम जिंदगी के हर मुकाम में सफलता पा सकते हैं। और इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है।
0: बिल्कुल उषा जी, बनाए रखने के लिए ही, बैलेंस बनाए रखने के लिए ही तो हमें चलते रहना पड़ता है। सारा जीवन जो है वो बैलेंस का ही तो खेल है।
1: हाँ, और कहीं रुक गए तो समझ जाओ अपने जीवन की गाड़ी रुक जाती है, है ना। इसीलिए बस चलने का नाम ही जिंदगी है।

0: रचना, जीवन तो चलने का ही नाम है और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी चलती रहे, है ना
1: जी।
0: क्योंकि जितनी अच्छी तरह से हम इस परिवर्तनशील दुनिया में अपने आप को बदलते हुए, ऐसा ना कि अगर हम एक जगह स्टिक हो जाएं कि नहीं मेरे को ऐसा ही चलना है तो फिर अच्छा नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल, समय के साथ हमें बदलना चाहिए और समय के साथ साथ हमें चलना भी चाहिए, नहीं तो क्या होता ना कि हम पीछे रह जाएंगे। और वैसे भी जो आज की जनरेशन है वो काफी हद से आगे है,
0: वो समय से थोड़ा आगे चल रही है,
1: ये हम कह सकते हैं। मैच करना हमें
0: जरूरी है और अगर नहीं मैच करोगे ना तो इसी को कहते हैं जनरेशन गैप, है ना। तो जनरेशन गैप जहाँ हो जाएगा तो फिर हम उन बच्चों के साथ या फिर जो युवा पीढ़ी उनके साथ हम तालमेल नहीं बैठा पाएंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा आपस में, वाद विवाद, गुस्सा या फिर बात नहीं मानने की जो जिद हो जाती है, ये सब इसके कारण होता है।
1: ये होता है ना कि हमें बच्चों की बातें भी सुननी चाहिए और बच्चों को भी हमारी बातें सुननी चाहिए ताकि दोनों जो है आपस में बैठकर उसमें तालमेल बैठा सके। और बातें उनकी माननी चाहिए, कुछ हमारी
0: माननी चाहिए। और ये जो मानने और मनवाने वाली जो बात है ना रचना, यहाँ पर सबसे पहले अपने घर के संस्कार आ जाते हैं, है ना। क्योंकि जैसे हमारे बड़े करते आए हैं, जैसा हम अपने बच्चों के साथ करते आए हैं, वही चीज हमारे बच्चे हमें लौट के देंगे। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए, कहते भी है ना कि जितना तुम दोगे टिट फॉर टैट, जो तुम दोगे वो तुम पाओगे, प्यार दोगे प्यार पाओ, गुस्सा दोगे गुस्सा पाओ, है ना। तो अपने बच्चों को वो मिट्टी के जो घड़े होते हैं ना उस तरह के, अगर हम उन्हें प्यार सिखलाएं, संस्कार सिखलाएं, तो फिर अपने जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वो सब सिखलाते हैं तो वो बच्चे भी बदले में हमें वही देंगे ना।
1: तो बच्चे कहीं भी चले जाएं, अपना संस्कृति है वो संस्कार वो नहीं भूलते हैं, जुड़े रहते हैं।
0: तो उससे क्या, इससे दो फायदे होते हैं, एक तो अपने माता पिता और परिवार को कोई उनसे दुख नहीं होता, और सबसे बड़ा फायदा होता है उन बच्चों को जो कहीं भी जाएं अपने संस्कार के साथ बहुत चैन से और पॉजिटिव होकर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, है ना। क्योंकि ये आने वाला जो समय हो रहा है ना, इस जगह हमेशा देखो कि वो उनके बात नहीं मानते हैं, माँ पापा हमेशा परेशान रहते कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते। लेकिन बात नहीं मानने के पीछे कारण जो है उसे अगर हम ढूंढ लेते हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, बच्चे भी गुस्सा नहीं करेंगे, आपको भी तकलीफ नहीं होगी।
1: कई बार क्या होता है ना कि बच्चों के साथ करने के लिए आपको भी थोड़ा बचपना में आ जाना पड़ता है, बच्चे बनना पड़ता है,
0: उनके बीच घुसना पड़ता है,
1: तभी आप उनकी चीजों को समझ पाएंगे, उनकी समस्या को समझ पाएंगे, तभी तो आप उनकी समस्या सुलझा पाएंगे।
0: और इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चों के साथ आप उनके मित्र बन जाइए।
1: और जब एक एज के बाद जब वो टीन एज पे आ जाते तो सबसे जरूरी होता है कि उस समय आप उनके
0: दोस्ताना व्यवहार उनके साथ रखिए। खास करके मम्मी है ना, वो अपने बेटों के साथ में दोस्ताना व्यवहार रखती है और बेटियां हैं वो अपने पापा के साथ, ऐसा कहा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। अगर तुम अपने बच्चे को प्यार करते हो तो बेटा हो या बेटी दोनों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखिए, तब वो अपनी सारी जिंदगी की जो रोजमर्रा की जो बातें हैं वो आके आपसे कहेंगी।
1: और वो बहुत जरूरी भी है,
0: बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ दोस्तों से करते हैं और दोस्त कैसे हैं उस पर ये बातें निर्भर होती है। और हमारे बच्चे हमारे घर के संस्कार और मेरे अनुरूप चले ताकि उनकी जिंदगी अच्छी चले, तो इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्ताना व्यवहार भी रखें। और परिवर्तनशील ये दुनिया है तो आप भी उनके हिसाब से बदलते चलें, अपना रूढ़ वाला जो रवैया है उन पर ना थोपें ताकि उन्हें परेशानी ना हो कि हम बताने जाएंगे और पेरेंट्स हमारे डांटना शुरू कर देंगे,
1: इसी वजह से वो बता भी नहीं पाते हैं।
0: तो ये परिवर्तनशील दुनिया की बात हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये जो मौसम है ना इसी का हिस्सा है।
1: देख रहे बदल रहा है हमेशा,
0: देख रही हो ना कि अचानक कड़ी धूप और तुरंत इतनी काली घटा छा जाती है, लगता है अब बारिश होगी, छाता निकालो तो धूप निकल जाती है, फिर कब बारिश हो जाती है, तो इसका कोई ठिकाना नहीं है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं, ये भी हमें मान लेना है। क्योंकि भगवान ने चार मौसम बनाए हैं लेकिन हम लोगों ने इसे 6-7 कर दिया है, है ना।
1: बिल्कुल, जिस मौसम पे जो होना चाहिए वो अब वैसा होता नहीं है।
0: अब कोई मौसम के फल है वो आज हर मौसम में मिलने लगे हैं,
1: फल सब्जी हर मौसम में मिल रही है,
0: अपने अनुरूप हमने इसे कर लिया है, तो उसी तरह से मौसम को भी कर लिया है, तो भगवान ने भी आपके अनुरूप छोड़ दिया है कि जाओ गर्मी में भी बाढ़ आएगी और बारिश में भी बाढ़ आएगी। अब इसको कोई
1: उसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं।
0: और आने वाले जो समय में जो भी हो रहा है उसको तो हम सभी देख ही रहे हैं, तो इसलिए इस मौसम के आनंद को अगर हम लेना चाहते हैं तो अपने आसपास हरियाली बिखेरने में सहयोग देना है ना। क्योंकि पूरी दुनिया में अभी
1: हाँ, जलवायु परिवर्तन होने वाले दुष्प्रभाव से देखने को मिल रहे हैं, और अभी जो समय है हमें सजग हो जाना चाहिए इसके लिए भी,
0: और जागरूक हम एकदम हो जाना चाहिए ताकि हम सभी प्राणी भविष्य में सुखद जीवन जी सके। वैसे हमारी रांची की बात करें तो यहाँ पर कभी बारिश हो रही है और कभी धूप भी निकल रहे हैं, और मौसम एकदम अभी तो बहुत ही आनंदमय वाला है।
1: हाँ, लेकिन अभी ऐसा भी बताया गया है कि आज और कल जो है भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है,
0: और ये 12 तक मानसून सक्रिय रहेगा।
1: मानसून हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि अब थम रहा है, अब रुक रहा है, लेकिन वो बार बार सक्रिय हो जाता
0: बस है। बस इसीलिए ना कि परिवर्तन, कहाँ पर विक्षोभ हो रहा है, कहाँ पर तूफान उठ रहे हैं, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ बाढ़ आ रहे हैं, तो ये सब जो परिवर्तन है ना, ये सब हमें हर समय अब झेलने को तैयार हो जाना है, और नहीं तो फिर अच्छा करना है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा ना, और मौसम को अपने पर्यावरण को बचाने के लिए
1: करना पड़ेगा। और कहीं भी विक्षोभ आता है, चाहे उड़ीसा में हो चाहे बंगाल में हो, वो सब विक्षोभ जो है रांची से होकर गुजरता है।
0: इसलिए हमें सभी मौसम का असर देखने को मिलता है और डर जाते हैं कि ये आंधी चल रही है और इतनी बारिश हो रही है, लेकिन इसका भी अनुमान लगाइए कि जहाँ बाढ़ हो रहा है ना, जहाँ तूफान सबसे पहले जहाँ टकराता है, वहाँ की जो स्थिति है, उन लोगों की जो स्थिति है, जिंदगी है, उसको सोचकर भी अगर हम अपने को बदलना चाहें तो फिर जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी ना,
1: अच्छी से गुजरेगी।
0: हाँ, तो फिर हाँ, ये जो मौसम है ना और जो बारिश चलती ही रहती है, तो पता नहीं क्यों बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, और इसके गीत भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक गीत सुनवा दो तुम।
1: जी बिल्कुल।

0: रचना, हम मौसम की बातें करें, परिवर्तन की बातें भी हमने की, लेकिन जब परिवर्तन की बात करते हैं ना, तो बहुत सी चीज ऐसी होती है ना देश दुनिया में जो हमेशा बदलते रहते हैं। कुछ अच्छे अच्छे आविष्कार भी होने लगते हैं जो अपने जीवन प्रणाली को भी बदलते रहते हैं, है ना। ऐसी ही एक जानकारी है। हाँ, बताओ हमारे
1: श्रोताओं को बता दें कि चीन के अंतरिक्ष स्टेशन टियायोंग से छात्रों के लिए लाइव क्लास आयोजित की गई है, और इस दौरान उन्होंने हांगकांग और मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के छात्रों से सीधे संवाद किया है। यानी कि अब वो एस्ट्रोनॉट जो है वो अंतरिक्ष से ही
0: बातचीत करेंगे। यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन से आयोजित इन कक्षाओं का उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और वहां किए जा रहे प्रयोगों के बारे में जानकारी देना है। लाइव क्लास के जरिए छात्रों को यह समझने का मौका मिलता है कि अंतरिक्ष में रहना धरती से कितना अलग है। भाई अलग तो है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, जनजातियां हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अंतरिक्ष में तो ये सब कुछ नहीं है ना, तो वहां पर जीना बहुत मुश्किल होगा, और उसके लिए शायद अभी से तैयारी की जा रही है।
1: हाँ, है ना, वो समय भी आए जब ऐसा होगा।
0: तो आने वाला जो समय होता है वो हम सबको देख कर चलना है कि हम किस तरह से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं।

0: तो फिर रचना, हम जब कुछ जानकारी दे रहे थे तो एक और अच्छी सी जानकारी है और वो हमारे शरीर के लिए है, है ना। और हाँ। वो शरीर में सबसे चाहता हुआ जो चीज होता है ना, दांत, है ना। जब मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले हमारा दांत ही दिखाई देता है, और उसको अच्छा बनाने के लिए, चमकीला सफेद बनाने के लिए न जाने हम कितने कितने उपाय करते हैं। और ये भी होता है जब दांत में कीड़े लग जाते हैं ना, तो उसकी परेशानी भी हम ही झेलते हैं ना। तो इसलिए कहा जाता है कि बचपन से बच्चों को बहुत अधिक टॉफी न खिलाएं, और खिलाएं तो सोते समय जरूर उसकी सफाई करवा दें, ब्रश करें। वैसे नियम तो रचना हम सभी का है कि रात को सोते समय ब्रश जरूर
1: करना चाहिए, बिल्कुल, तभी तो दांत हमारे सुरक्षित रहेंगे और हमारे मोतियों से जैसे दांत जो हमेशा
0: चमकते रहेंगे। इसके लिए लेकिन एक अच्छी सी जानकारी भी है जो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कनाडा की दो छात्राओं ने टूथ टिंट नाम का एक अनोखा रंग बदलने वाला टूथ पेस्ट बनाया है। इसका मकसद बच्चों को सही तरीके से और पर्याप्त समय तक ब्रश करने में मदद करता है।
1: तो मुंह के पीएच स्तर के हिसाब से रंग बदलने के लिए इसमें एंथोसियानिन नामक प्राकृतिक पिगमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ये टूथ पेस्ट ब्रश करते समय सीधे विजुअल संकेत देता है, जिससे उन्हें बिना किसी टाइमर के ये समझने में आसानी होती है कि वे सही से ब्रश कर रहे हैं या नहीं।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी, देखिए तकनीक कितनी मतलब कि विकसित हो गई है, कितना ज्यादा लोगों के बीच में ये ज्ञान बढ़ रहा है। और ये बहुत अच्छी बात होगी अगर ये बाजार में आ जाए तो, कि जो बच्चे होते हैं ना वो ब्रश को चबाते रहते हैं और पेस्ट को खा जाते हैं, है ना, या और पेस्ट की मांग करते हैं, या फिर कोई ब्रश करना नहीं चाहते हैं, कोई उंगली से करते हैं, या कोई सिर्फ कुल्ला करके रह जाते हैं, तो जिससे दांतों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और दांत के साथ साथ हमारे दिमाग पर असर पड़ता है कि हमारे दांत खराब है, मैं हंसू कैसे, तो दिमाग बहुत टेंशन में। तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो एक दूसरे से लिंक होती है, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारी आंखें अच्छी हो, हमारे नाखून अच्छे हो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने भोजन में संतुलित आहार का प्रयोग करें, है ना। तो जिससे हमारे दांत भी बहुत मजबूत होंगे, अचानक हिले नहीं, गिरे नहीं, कई तरह की बीमारियां होती वो ना हो, और दांत जो चमकेंगे और कितना ब्रश करेंगे उसके लिए ये जानकारी थी। लेकिन दांतों के लिए इतना विस्तार से जानकारी है ना कि हर बच्चे जानते और हर पेरेंट्स भी जानते हैं। इसके लिए बहुत कुछ हम समय समय पर जरूर बताएंगे, लेकिन अभी बताने को वक्त हो चला है इतिहास के, क्योंकि ये सब बातें कल जरूर इतिहास में चली जाएंगी और जो हुई है आज के दिन उसकी जानकारी आज हम साझा करते हैं। तो आज के दिन यानी 10 सितंबर को ऐसा क्या हुआ था ये हम बताते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि 10 सितंबर को हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है?
1: समाज में आत्महत्या के बढ़ते मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को ये बताना कि इसे रोका जा सकता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि अगर कुछ मन में तनाव है, कोई ऐसी बातें हैं जो हम मेरे को अपने को खत्म करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो उसके लिए आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने गुरुजनों से, या फिर आजकल बहुत जगह ऐसी साइट बन गई है जहां पर आप अपने तनाव को अपना नाम पता छुपा कर डिस्कस कर सकते हैं।
1: काउंसलिंग तो जरूर लेनी चाहिए इससे, क्योंकि आपको क्या तकलीफ है और जिसके कारण आप ये कदम उठाना चाहते हैं या उठाने वाले हैं।
0: तो उससे पहले एक बार आप जरूर ये जरूर सोचें कि ऐसे गलत कदम उठाने से पहले, हम इंसान के पास में इतनी सारी शक्तियां और बौद्धिक क्षमता है, तो पहले उसका उपयोग क्यों न करें, है ना। तो अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास में एक विवेक है और हम विवेकशील प्राणी होकर इतने मतलब क्या बोलेंगे, हारे हुए काम को हमें नहीं करना चाहिए। और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही हो और जीवन का जो मूल्य है उसे हम जरूर समझें, क्योंकि ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता है। तो फिर इस जीवन को सहेजिए और कुछ अच्छे काम में लगाए ना।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारे पास में, जिनके पास में जो विकलांग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, वो कुछ नहीं रह के भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। और अगर आपके पास सब कुछ है और किसी एक प्रॉब्लम के कारण अगर आप उसके अपने को खत्म करना चाहते हैं, तो पहले आप सोचिए कि आपके पास कितना अच्छा अच्छा चीज है। पॉजिटिव भी सोचना चाहिए ना,
1: तो जरूर सोचना चाहिए, तभी तो आप उस नकारात्मक को
0: दूर कर सकते हैं। तो एक नकारात्मक के आगे आपके पास कम से कम 100 पॉजिटिव बातें जरूर होती है, मेरा ये मानना है, क्योंकि आपके पास भगवान ने बहुत कुछ नियमतें दी है, आपके आसपास भी बहुत कुछ दी है। आप एक नकारात्मक नकारात्मक विचार को एक किनारे रख के 100 सकारात्मक विचार को पहले आप सोच लें, उसके बाद देखें कि आप में क्या कमियां हैं, आप उसे दूर कीजिए और देखें कि आप कितने मूल्यवान हैं, है ना। और उस मूल्यवान वस्तु को बचा कर रखना हमारा धर्म है। और चलो अब आगे बताते हैं कि आज के दिन क्या हुआ है। तो 1847 में 10 सितंबर को ही हवाई द्वीप में पहला थिएटर खुला। ये खास इसलिए भी था क्योंकि पहली बार फायर प्रूफ थिएटर का निर्माण हुआ था।
1: आज ही के दिन यानी 10 सितंबर 1935 में दून विद्यालय की स्थापना की गई थी, जो भारत के जाने माने निजी और स्वतंत्र विद्यालयों में से एक है।
0: और 1944 में आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित और सम्मानित लेखिका चित्रा मुदगल का जन्म हुआ था। और 1966 में भारतीय संसद ने पंजाब और हरियाणा के गठन को मंजूरी दी थी।
1: और 1976 में इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का 1976 में लाहौर से अपहरण हुआ था।
0: ये भी सभी को मालूम है। और ये भी बता दें कि 1996 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 3 के मुकाबले 158 मतों से स्वीकृत होकर भारत 3 देशों द्वारा संधि का विरोध किया था। और ये भी बताते हैं
1: कि 2009 में आज के दिन जेट एयरवेज प्रबंधन और उसके पायलट व्यापक समझौते पर राजी हुए थे आज के दिन। और रियो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने आज के दिन स्वर्ण पदक और वरुण भाटी ने
0: कांस्य पदक जीता था 2016 में, है ना। और 1872 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कुमार रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। और जन्म की हम बातें कर रहे हैं तो ये भी बता दें
1: कि 1887 में आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था।
0: और हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में से एक राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म भी 1890 में हुआ था आज के दिन।
1: और आज के दिन राष्ट्रवादी हिंदी सेवी और आर्य समाजी भवानी सन्यासी का जन्म हुआ था
0: 1892 में, है ना। और प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण का जन्म भी 1895 में आज के दिन हुआ था।
1: फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे बीडी जत्ती का जन्म भी आज के दिन यानी 10 सितंबर 1912 को हुआ था।
0: और बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार सुकुमार राय का निधन आज ही के दिन 1923 को हुआ था। और क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारी
1: जतेंद्रनाथ मुखर्जी का निधन भी आज के दिन यानी 10 सितंबर 1915 को हुआ था।
0: और ये सभी हम बातें जानकारी ले रहे हैं आज के दिन का ही। तो 1923 में आयरलैंड राष्ट्रसंघ में शामिल हुआ था। और
1: 2008 में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में पहली बार सफलतापूर्वक प्रोटॉन धारा प्रवाहित की गई थी।
0: तो फिर हम जब जन्म की भी बात करते हैं, निधन की भी बात करते हैं, तो फिर हम ये भी बता दें कि 1929 में आर्नोल्ड पॉमर प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी है, इनका भी जन्म हुआ था। और बसप्पा दनप्पा जत्ती यानी बीडी जत्ती, जिनका तुमने नाम बताया, भारत के राष्ट्रपति थे, 1912 में इनका जन्म हुआ था। और आर्थर एच कॉम्पटन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, इनका भी जन्म 1892 में हुआ था। तो चलो हम अब जन्म की जब बातें करते हैं ना, तो कुछ कुछ बातें हमें याद आने लगती हैं कि अपने श्रोताओं से जन्म को लेकर ही कुछ बातें करें। उन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं, जो हमारे बीच नहीं रहे उनके लिए हम याद भी करते हैं, उन्हें नमन भी करते हैं। लेकिन जहां तक जन्म की बात होती है ना ये रचना, तो हम चाहते हैं कि अपने श्रोताओं से कुछ ये भी जानकारी करें कि जब जन्मदिन मनाएं तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, है ना। उन लोगों के जन्मदिन को तो हम अच्छी तरह मनाते हैं और याद भी रखते हैं, लेकिन जो हम सब हैं, हमारे जन्मदिन हर साल दर साल हम जो जन्मदिन मनाते हैं, तो स्वस्थ रहकर जीवन में खुशी ला सकते हैं अच्छी तरह, अगर हम सेहत के साथ मनाएं।

0: मिलकर उसे पीट कर जश्न मनाते हैं। तो भाई ये तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता है और मुझे ये ठीक नहीं लगा, और उस वक्त का माहौल जो था सो अच्छा नहीं होगा हमें लगता। और जानती हो कभी कभी ये माहौल बिगड़ भी जाता है, क्योंकि बातों बातों में कुछ बात बिगड़ गए, कुछ किसी को ज्यादा अगर मारपीट हो गई या फिर कुछ ज्यादा चहलकदमी हो गई तो फिर
1: हाँ, कुछ
0: शरीर को
1: भी
0: नुकसान
1: अनहोनी,
0: होता
1: कुछ
0: है,
1: अनहोनी हो गई तो
0: अनहोनी
1: फिर
0: भी हो सकती
1: वो
0: है,
1: बात तो बिल्कुल
0: क्योंकि
1: आगे बढ़
0: बच्चे
1: जाएगी।
0: जोश में होते हैं ना।
1: हाँ
0: तो इस बात को सोचना चाहिए कि अगर जन्मदिन है तो उसे खुशियों के उपहार दीजिए, है ना, हंसिए, मुस्कुराइए, कुछ अच्छे अच्छे चीज खाइए, पोषण से युक्त खाइए
1: लेकिन
0: सामान,
1: पोषण से युक्त तो नहीं खाते हैं ना
0: है ना, वो
1: हमारी
0: जंक फूड
1: जो
0: खाते
1: जंक
0: हैं।
1: फूड खाते हैं,
0: हाँ,
1: जो कि हम पोषण
0: और
1: की बात करें तो जो जंक फूड जो है वो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही
0: अच्छा
1: नहीं
0: नहीं है,
1: है।
0: कोल्ड ड्रिंक्स है, जंक फूड है, या फिर आजकल इतने तरह के खाद्य पदार्थ बाजार में है ना जो ऑनलाइन एकदम उपलब्ध होते हैं, और इसलिए उन्हें कुछ घर में बनाने की जरूरत नहीं। और पहले जानते हो पोषक तत्व से भरपूर भोजन में बर्थडे के समय हमेशा पूड़ी, हलवा, जलेबी,
1: खीर,
0: रसमलाई,
1: हाँ
0: खीर, ये सब बनते थे, और ये सब बनाने के पीछे भी राज था कि आज जन्मदिन है तो कुछ अच्छे भोजन खाएंगे तो इन्हें अच्छी ताकत मिलेगी, सेहत अच्छा होगा,
1: सही बात है,
0: है ना।
1: सही
0: और
1: बात
0: जैसे कि अभी हाल ही में हमने कृष्ण जन्म मनाया है ना, भगवान कृष्ण के जन्मदिन में भी कितने तरह के पोषक तत्व,
1: तत्व बने,
0: धनिया
1: बिल्कुल,
0: हाँ के पाउडर थे, तो लड्डू, तो मखाने की खीर, तो जितने
1: साबूदाने की
0: साबूदाने
1: खीर,
0: की खीर, यानी कि सब कुछ पोषक से भरपूर। तो हम उन लोगों से सीखे कि जन्मदिन मनाया कैसे जाता है। अभी गणेश चतुर्थी में भी उनका भी जन्मदिन मनाया जाएगा, कितने लड्डू और मोदक
1: मोदक,
0: और तरह तरह के फल पकवान उन्हें चढ़ाए जाएंगे। तो हमें इन परंपराओं को सीखना चाहिए और अपने जन्मदिन में इनका ही उपयोग करना चाहिए, ताकि वो इतने प्रकार के मिठाई और तरह तरह के पोषण के जो ऊर्जा से भरपूर मिठाइयां हैं वो जन्मदिन में मनाए, किसी खास उपलक्ष्य में, खुशी में उसका उपयोग करें, तब जाकर पता चलेगा कि असली जन्मदिन कैसे मनाया जाता है।

0: रचना, जब हम बातें कर रहे थे ना अभी सेहत और पोषण की, तो अभी जो हाल में ही अभी हमने मनाया ना कि पोषण सप्ताह, और वैसे भी पूरा सितंबर पोषण सप्ताह के ही रूप में मनाया जा रहा है, 1 से 8 तो वो सप्ताह था और ये माह भी इसे हम मनाते हैं। लेकिन हमें लगता है ना रचना कि सिर्फ माह में या सप्ताह में पोषण मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो लंबी जिंदगी जीते हैं ना, तो हर दिन पोषण,
1: हाँ, वो आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए। मैं आपको उसी तरह से चलना चाहिए। क्या होता है कि कई बार हम लोग खा तो लेते हैं लेकिन हमको कितना पोषक मिल रहा है या प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो जानकारी नहीं होती, जिसके कारण हमारा जो है संतुलन भोजन, जिसको हम कहते हैं संतुलित भोजन, वो पूरा नहीं हो पाता।
0: इसीलिए कभी कभी किसी चीज की कमी हो जाती है और उसकी परेशानी हमें झेलनी पड़ती है।
1: विटामिन सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं
0: तो भी सप्लीमेंट की तरफ जाने से पहले भगवान ने जो इतनी सारी नेमतें दी है ना, कि गाजर दिया है विटामिन ए के लिए, विटामिन सी के लिए, नींबू दिया है, आंवला दिया है, तो ये सब जो चीजें दी हैं, क्यों दी हैं? हमारे शरीर को इसकी जरूरत पड़ेगी, उन्हें पता था, इसलिए इतनी इतनी चीजें, हरी साग सब्जियां सब कुछ दी हैं, जो हम इसका उपयोग करें एकदम बेफिक्र होकर।
1: अगर हम देखें हमारी भोजन की थाली, अगर हम देखने जाएं जो हम खाते हैं, उसमें दाल भी होता है, चावल भी होता है, रोटी होती है, हरी सब्जियां होती है, सलाद होता है, दही होता है, यानी सब तरह से
0: कुछ होता है,
1: तो एक तरह से वो जो थाली है वो पोषण भरी रहती है।
0: तो ये पौष्टिक थाली को आप अगर हमेशा ध्यान में रखें कि हमारी थाली में एक दाल चावल सब्जी जरूर होनी चाहिए, तो फिर कहोगे कि अगर हमारे पास में इतने पैसे नहीं है तो उसके भी उपाय है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गांव में जितने लोग हैं वो बहुत स्वस्थ होते हैं शहरों की बनस्पत, है ना, क्योंकि यहाँ पर लोग जंक फूड खाकर अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, और वहाँ पे हरी हरी साग सब्जियाँ अपने अपने घर के आंगन में वो लगाते हैं और ताजा ताजा अपनी सब्जी लेकर आते हैं, और चावल और सब्जी बनाकर जो खाते हैं। अमरूद है, अगर आप सेब नहीं खरीद सकते हैं तो अमरूद का सप्लीमेंट है, सेब का सप्लीमेंट है अमरूद, है ना। केला है, नारंगी है, खीरा है, जो कुछ वहां पर बेर है, जो कुछ बाजार में मिलते हैं ना, उसके सारे सप्लीमेंट कम पैसे में भी मिलते हैं हमारे भारत में, और इसका उपयोग लोग बखूबी से करते हैं और जानते भी हैं कि इससे हमें कितनी मतलब ताकत मिल जाएगी, पोषण मिल जाएगा, तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं, हर जगह पैसे की जरूरत नहीं।
1: एक बात ये भी है कि आजकल जो है हमारे जो फ्रूट्स हैं, हम फैंसी फ्रूट्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो अपने जो पुराने फ्रूट जो हमारे यहाँ मिलते हैं फ्रूट्स, उसको छोड़कर हम जो है फैंसी
0: महंगे
1: ये सब के पीछे हम लोग जाते हैं, जबकि हमारे अपने फल है वो

0: भी पूरे पोषक
1: वो
0: तत्व
1: भी
0: से
1: है
0: भरे हुए, वो
1: देखो।
0: खाने चाहिए।
1: हाँ, अगर आप कीवी खाते हो उसके बदले में जो गांव में शहतूत होते हैं जो इसी मौसम में भी होकर चले भी गए, अगर आप उनका पूरी तरह से उपयोग कर लिए होते तो पता है लोग फॉरेन में इसे खोजते हैं और हमारे यहाँ यूं खिलता रहता है,
0: ये भी
1: पेड़ में
0: खिलते रहते हैं, गिरते रहते हैं,
1: गिरते रहते हैं और लोग उसे पसंद नहीं करते कि वो इस तरह दिखते हैं, वो इस तरह दिखते हैं। दिखने पर मत जाइए, आप जाइए कि उसके अंदर क्या चीज है ना,
0: वो पौष्टिक कितना
1: तो
0: है।
1: उसमें कितना गुण है, कितना विटामिन है, वो हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद है, इस पर आप जाइए और इसका उपयोग आप कीजिए। बहुत सारे ऐसे फल हैं, बेर है, केंद है और अनार है, कटहल है, सब्जियों में भी बहुत सारे ऐसे,
0: क्योंकि
1: जामुन
0: और वो
1: है।
0: तो सब सीजन में आते ही रहते हैं, तो हमें
1: हाँ
0: हर सीजन में जो फ्रूट
1: हाँ
0: उपलब्ध होते हैं वो हमें
1: अनानास
0: खाने
1: है। हाँ
0: चाहिए।
1: अनानास अभी जैसे बारिश के मौसम में खाना चाहिए, क्योंकि अगर पेट में कीड़े हैं या फिर कुछ भी अगर पेट में परेशानी है लीवर में, तो सब अनानास दूर करता है। तो देखो कितने सस्ते फल और कितने फायदे हैं। तो भोजन की थाली में आप इसे समय समय पर बदल बदल कर पाते हैं तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ
0: स्वस्थ
1: रहेगा
0: रहता है।
1: और किसी भी बीमारी को हम न्योता देने से पहले ये भी जान लें कि भोजन के साथ साथ सफाई भी बहुत जरूरी है।
0: हाँ,
1: तो अपने को सफाई के साथ भी रखना है, आसपास भी सफाई करनी है, ताकि हम हर मौसम में कोई बीमारियों को न्योता ना दें। और अपने मन को खुशी देने के लिए एक न्योता देना तो बनता है,
0: और वो न्योता है
1: गीत।
0: हाँ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: रचना, गीत सुनकर कैसा लगा? एकदम की बहारों में आनंद लेने का मन कर रहा
3: मन
2: था,
3: ऐसा कर रहा था सच में पहुंच जाए कहीं। अच्छी बात हो रही, बहारा बहारा मतलब
2: कुछ रंग मतलब कि बहारों के पास में जाने का मन किसे नहीं करता है ना। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब जाओ तो बहुत ही आनंद आता है कि चलो थोड़ा सा समय मिले और बस घूमने की बात हम करने लगते हैं। अपने घर के कामकाज तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा नीरसता दूर करने के लिए हमें घूमना बहुत जरूरी है।
3: क्या होता
2: है
3: ना कि रूटीन के जो हमारे प्रतिदिन के काम होते हैं उससे हम हमारे उमस मतलब एक उपसी हो जाती है कि हम वही काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में तो कुछ है ही नहीं। हम सुबह उठेंगे बस वही किचन का काम करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे, तो ऐसे ही समय बीत जाता है।
2: तो उसके बदले अगर कोई कह दे आकर, दोस्त यार या तो परिवार के कोई सदस्य कि चलो फलने जगह प्लान बना रहे हैं, उसके बाद देखो ना
3: चेहरा कैसे खिल जाता
2: और ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा आ जाती है कि कहाँ चलना है, कब चलना है और क्या क्या लेकर जाना है। हम महिलाएं बस तैयार हो जाती है कि क्या क्या लेकर चलेंगे वहाँ खाने के लिए, कितने समय के लिए जा रहे हैं। अगर एक दिन में ही जाकर घूम के आना है तो वैसा प्लान बनता है। तो अक्सर ना घर के लोग जो है ना वो चाहते हैं कि आज सुबह जाए शाम तक घर आ जाए, तो ये भी कहीं कहीं पर सही है। कहीं कहीं पर जब गर्मी छुट्टी हो जाए तो लंबी दूरी पर भी जा सकते हैं। और वैसे हमारे रांची में ना सुबह जाओ शाम तक आओ ऐसे घूमने वाले बहुत से जगह हैं। जैसे कि तुम पतरातू घाटू के ही ले लेना, पतरातू घाटी में घूमना इतना सुकून भरा होता है ना, जो नहीं घूमे हैं वो जरूर जाएं और जो घूम लिए हो तो बार बार।

0: रचना बातें करते करते देखो ना अब हम आखिरी पायदान पर पहुंच रहे हैं, तो थोड़े से खेल की भी बातें अपने श्रोताओं से कर लें।
1: हाँ, ये बातें हम बता देते हैं, जैसे कि आज भारतीय टीम यानी कि महिला जो क्रिकेट टीम की नजर है वो छठे फाइनल पे, यानी कि आज उनका जो मुकाबला है वो सेमीफाइनल का है, वो
0: एशिया कप के लिए
1: बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगी।
0: और झारखंड के स्टार क्रिकेटर कुमार कुशाग्र को भारतीय ए टीम में शामिल किया गया है। भारतीय ए टीम ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पुंडुचेरी में 22 सितंबर से 2 टेस्ट और 3 वनडे मुकाबले खेलेगी और दिलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर ये लाभ कुशाग्र को मिला है। इसके लिए इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। और अनमोल ने गोल की झड़ी लगाई है, 11वीं बार सेमीफाइनल में भारत आया है और इसके लिए 5 बार रिकॉर्ड चैंपियन भारतीय टीम ने एशिया कप में चीनी ताइपे को 15-0 से रौंदा था और कप्तान एक्का ने पेनल्टी पर दागे 6 गोल आर्यन की शानदार हैट्रिक के साथ ये हमारा भारत है सेमीफाइनल पर गया है। और हम आशा करते हैं कि फाइनल में जीत हमारे भारत की होनी चाहिए, है ना? ऐसा ही है। और ये भी जानकारी दे देते हैं
1: कि ईशान किशन की कप्तानी पारी के दम पर जो है 13 साल बाद दिलीप ट्रॉफी का चैंपियन बनना लगभग तय कर लिया है।
0: और दक्षिण क्षेत्र की पहली पारी बुधवार को 336 रन पर सिमट गई थी और कप्तान तिलक वर्मा 1 रन से शतक से चूक गए थे और दक्षिण क्षेत्र के को फॉलो ऑन नहीं दिया था। और पहली पारी में बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 212 रन बना लिए थे। और इसी तरह से मुझे लगता है कि ईशान किशन की जो चैंपियनशिप है हमारे दिलीप ट्रॉफी को जरूर लेकर आएगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी है हमारे देश के।
1: और CISCE राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू होने वाली है, यानी कि सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा की मेजबानी में ये हॉकी प्रतियोगिता बालिका वर्ग का आयोजन होने जा रहा है आज से।
0: तो फिर हम यही कहना चाहते हैं चलते चलते कि किसी भी बात में रुकना नहीं है और बस आगे बढ़ते रहना है ताकि जीत हमारी होनी चाहिए, है ना? और इसी के साथ हम एक प्यारे से गीत के साथ अपने श्रोताओं को यहीं से इजाजत लेते हैं उनसे और कहते हैं नमस्कार जोहार।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आज आप सुन रहे थे जोहार रांची कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम आपकी पसंद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा नगमा, जिसे हमने लिया है अनारकली फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे तक्षक फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। ए.आर. रहमान ने संगीत दिया था और सुखविंदर सिंह और तेजपाल कौर का गीत था, आवाज आशा भोसले की थी। अब आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं धनवान फिल्म का। ये आप ही की पसंद है और गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने, संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बड़ा बाम्बू सुपाई साई से, देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा प्रधान, प्रकाश तांती, श्याम देव नायक और ललित प्रधान, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती बनमाली बेसरा, सिद्धू कुमारी और इनके बहुत सारे साथी।

0: श्रोताओं, आइए हम आपको भारतीय सेना की शौर्य गाथा भी सुनवाते हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: श्रोताओं, इस शौर्य गाथा के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके पसंद कार्यक्रम में कुछ फिल्में नगमे अपनी ही फरमाइश के। आइए अगला गीत आप ही के फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं, तीन देवियां फिल्म से। आवाज किशोर कुमार की है, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं SD बर्मन। पसंद करने वाले हैं हमारे श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, चैतिक बिरक और मीका बिरक। आप सभी हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, हैप्पी कुमार रॉय और हैप्पी रॉय, अमित कुमार रॉय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। शेरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। लीजिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत सुनिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा नगमा, और इस गीत को किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे, और इसी गीत को और हमारे श्रोता सुनना चाह रहे थे, और वो सभी श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, और इसी गीत को सुनना चाहा था नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी, गोला घाट बक्सर से विजय केसरी, गौरी शंकर केसरी और शंभु केसरी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा। और इसी के साथ आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने दोस्त उषा जायसवाल को। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब आप सुनेंगे हमारी बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। इस कार्यक्रम के साथ हैं आपकी दोस्त कुमारी खुशबू और सुभाषिनी। इनसे आप सुनेंगे आज कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।

0: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर मोड़ पर आजमाएगी। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर मोड़ पर आजमाएगी। पर याद रखना मेरे दोस्त, हिम्मत टूटने से कोई मुश्किल आसान नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी की प्रसिद्ध और प्रेरणादायक ये पंक्तियाँ हमें जीवन में कभी हार न मानने और निरंतर प्रयास करने की सीख देती है।
1: और इसी प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आज हम अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी की शुरुआत करते हैं। बहनों, कार्यक्रम के सफर में आज आपके साथ मैं हूँ खुशबू और हमारी एक और सखी है सुभाषिनी। तो स्वीकार करें हम दोनों का स्नेहिल नमस्कार।
0: बहनों, आज का दिन थोड़ा ठहर कर खुद से

0: चादर तोड़ देते हैं कि उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया।
1: बिल्कुल सही कह रही हो सुभाषिनी तुम। और इसी बेहद कमजोर पल में इंसान एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। रात चाहे कितनी भी लंबी हो और काली क्यों ना हो, सुबह का सूरज निकलने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए।
0: हाँ बहनों, मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, पर उनसे भागना रास्ता नहीं है। यह मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत मुश्किलों से मिलता है, इसे यूं ही जाया नहीं करना चाहिए। जीवन एक ऐसी यात्रा है बहनों, जो कई तरह के अनुभवों, सुख दुख, उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी हुई है।
1: बिल्कुल, और लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बढ़ते मानसिक तनाव के कारण लोग जरा सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं। कुछ लोग निराशा के गहरे अंधकार में डूबकर इस बहुमूल्य जीवन को खुद ही समाप्त कर देते हैं।
0: लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जीवन को समाप्त करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं होता, बल्कि इससे हमारे माता पिता, परिवार, मित्र और चाहने वाले भी जुड़े होते हैं।
1: सही कहा सुभाषिनी तुमने। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का अंत करता है तो वह केवल अपनी सांसें नहीं रोकता, बल्कि अपने पीछे पूरे परिवार को कभी ना खत्म होने वाले दर्द और दुखों के सागर में धकेल कर चला जाता है। वर्तमान समय में चुनौतियां तो बहुत है, पर जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थाई होती है।
0: बिल्कुल सही। और मानव विचारकों ने भी कहा है ना खुशबू, कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। यदि जीवन में कोई कठिनाई ना हो तो सफलता का आनंद भी फीका पड़ जाता है। और इतिहास गवाह है, जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया है।
1: हार मानकर पीछे हट जाना या जीवन को समाप्त कर लेना कायरता की निशानी है, जबकि परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना ही असली वीरता है।
0: बिल्कुल।
1: असफलताएं हमें ये सिखाती है कि कमी कहाँ रह गई है, कहाँ हमें अपने प्रयासों में सुधार करना है।
0: और हर समस्या का समाधान है बहनों। अगर कभी मन में हताशा या निराशा आए तो अपने करीबियों, दोस्तों या परिवार से खुलकर बातें करनी चाहिए। मानसिक तनाव को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्टर या काउंसलर की मदद भी लेनी चाहिए।
1: और समाज को भी ऐसे संवेदनशील लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। योग, ध्यान और फिर सकारात्मक किताबों का सहारा लेकर भी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये एकदम सही उपाय बताया तुमने। और जीवन तो ईश्वर का दिया हुआ है, एक अनुपम उपहार है कहे एक तरह से, तो इसे किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर संकट का सामना धैर्य और साहस के साथ करना ही सच्ची समझदारी है।
1: सखियों, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती है। इसलिए जब भी मन में निराशा का भाव आए तो खुद को याद दिलाए कि जीवन है अनमोल, ना करे इसका अंत।
0: बिल्कुल, साथ ही जीवन से प्यार करें, खुद पर विश्वास रखें और हर पल को जिंदा दिली के साथ जिएं।

0: खुशबू, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले बहनों को कुछ हम जानकारी है हमारे पास वो भी देंगे। और देखो हमारे साथ डॉक्टर ब्यूटी बैनर्जी भी हैं, उनसे भी चर्चा हम करेंगे। और लेकिन पहले हम सुन लेते हैं विज्ञापन, और इस छोटे से अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होंगे, है ना?
1: बिल्कुल।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेज और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
4: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
5: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
4: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
5: कहाँ से पता चलेगा?
4: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
6: आज ही सर्च करूंगा।
4: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: इस छोटे से अंतराल के बाद सखियों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और सखियों आज है गुरुवार और इसमें हम आपको एक विशेष कड़ी संजीवनी के बारे में बताते हैं, जहां पे हम डॉक्टर से बातें करते हैं। और आज का विषय है UTI, कारण, लक्षण और निदान। और आज की स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हमसे बातचीत कर रही हैं डॉक्टर ब्यूटी बनर्जी, और उनसे बातें हो रही हैं सुभाषिनी की। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
0: बहनों, हमारे समाज में महिला को शक्ति का रूप माना जाता है। वो घर की धुरी है, क्योंकि महिला कामकाजी हो या गृहिणी, वो परिवार के हर सदस्य की पसंद नापसंद, सुख दुख और सेहत का ख्याल रखती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ शारीरिक दिक्कतें उन्हें परेशान कर देती हैं। उन्हीं में से एक परेशानी है UTI। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आमतौर पर महिलाएं जागरूकता की कमी, झिझक, अज्ञानता, इन सब के कारण ज्यादा

0: बात नहीं करती या करना नहीं चाहती। हमारे लिए खुशी की बात ये है कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्यूटी बैनर्जी। आज हम उनसे यूटीआई के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: जी, सबसे पहले तो हमारी जो श्रोता बहने आपको सुन रही हैं, उन्हें आप ये बताइए कि यूटीआई होता क्या है और इसके लक्षण क्या है।
1: यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब के रास्ते का जो इन्फेक्शन है। कहाँ कहाँ इन्फेक्शन होता है आप लोग सब जानते हैं। पेशाब बनता है किडनी में, किडनी के बाद एक नली से वो आता है जिसको हम लोग यूरेटर कहते हैं, वहां से एक थैला में जमा होता है जिसको ब्लैडर कहते हैं, और ब्लैडर के बाद एक यूरेथ्रा होता है जो बाहर निकलने का रास्ता है। ये इसमें से कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई कहते हैं।
0: जी,
1: अब बात यह है कि महिलाओं को ये ज्यादा क्यों होता है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि महिलाओं का जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा मतलब जो ब्लैडर था, पेशाब का थैली था, वहां से जो बाहर निकलने का रास्ता है वो छोटा होता है।
0: जी,
1: छोटा होता है तो जल्दी से वहां बैक्टीरिया कुछ अगर आता है तो ऊपर चढ़ जाने का चांस ज्यादा है क्योंकि छोटा है। दूसरी बात है कि ये जो महिलाओं का यूरेथ्रा है ये बहुत पास में रहता है वेजाइना के और एनस के, मतलब एनस का जो पार्ट है उससे बहुत नजदीक होता है, और वेजाइना और एनस दोनों में ही बहुत बैक्टीरिया होते हैं और वहां से भी बैक्टीरिया जाता है, तो इसलिए महिलाओं में ज्यादातर यूटीआई की समस्या होती है। आप पूछ रही थी कि उनके लक्षण क्या है।
0: हाँ, अगर किसी महिला को अगर यूटीआई हो भी जाता है तो वो कैसे पहचानेंगी कि उन्हें यूटीआई ही।
1: यूटीआई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है कि पेशाब में लहर जलन, बार बार पेशाब होना।
0: जी,
1: किसी को अगर तुरंत तुरंत पेशाब हो रहा हो, लग रहा है कि पूरा पेशाब नहीं हो पाया, रुक रुक के पेशाब हो रहा हो या लहर जलन हो रहा हो, तो तुरंत उसको एड्रेस करना है, तुरंत उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने के पहले आप क्या काम कर सकते हैं, आप ज्यादा पानी पी सकते हैं। अगर रात में आपको हो रहा है, आप डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम आप पानी ज्यादा पीते रहिए।
0: बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है ना कि महिलाओं को पता तो रहता है कि उन्हें यूटीआई की दिक्कत हो रही है, लेकिन वो इलाज भी करवाती है और कुछ राहत उन्हें महसूस होता है तो वो फिर अधूरा ही छोड़ देती है।
1: ये बहुत बड़ी समस्या है, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हमारे पास जब यूटीआई की पेशेंट आती है, दुर्भाग्यवश उसमें से बहुत सारी महिलाएं ने पहले कुछ दवा खा लिया होता है। दवा दुकान में जाके दवा खाना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूटीआई के लिए, क्योंकि दवा दुकान वाले थोड़े दो चार एंटीबायोटिक दे देते हैं जो वो खा लेती है। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तब हम लोग उसका चाहते हैं कि रूटीन एग्जामिनेशन और कल्चर करवाएं। कल्चर क्यों करवाएं? कल्चर अगर यूरिन का होता है तो पता चलता है कि किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उससे दवाई देने में सुविधा होती है, उसी बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई दी जाती है। तो अगर वो थोड़ा दवाई, थोड़े एंटीबायोटिक वो पहले से खा के आ जाते हैं तो उसका पूरा सिनेरियो बदल जाता है। अब पता करना डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है कि अब उसको क्या दवाइयां दें, और बहुत बार थोड़े थोड़े दवाई खाने से बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है।
0: अच्छा।
1: बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा होने से क्या होता है, जब दवा खाती भी है फाइनली पूरा दवाई खाती है तब भी वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि सारे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो गया होता है, तब उन लोग के लिए इंजेक्शन ही एकमात्र उपाय बचता है।
0: बहुत सही कहा आपने, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें थोड़ा थोड़ा दवाई मिलता रहता है एंटीडोज, लेकिन उसे खाकर वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं।
1: एकदम सही
0: कहें कि उनकी आदत हो जाती है और वो पनपने लगते हैं,
1: वो बर्दाश्त कर लेते हैं छोटे छोटे डोज को, छोटे छोटे एंटीबायोटिक्स को, और बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं यह बैक्टीरिया।
0: तो यूटीआई की दिक्कत किसी महिला को ना हो इसके लिए पहले से क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी सावधानियां हैं। यूटीआई यानी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से बचा जा सकता है साफ सफाई के साथ। तो बहुत महिलाएं आके कहती है मैं तो बहुत साफ रहती हूँ, मेरा बाथरूम भी साफ रहता है, फिर यूटीआई क्यों होता है? क्योंकि आदत से। क्या करना है, जब आप हर बार पेशाब करती हैं, पेशाब करने के बाद उस जगह को पानी से धोना है। किस तरह से धोना है, ताकि वो नीचे का पानी ऊपर ना जाए। ऊपर
0: अच्छा।
1: का पानी नीचे जाएगा तो यूटीआई नहीं होगा। एक बहुत सिंपल चीज। दूसरा चीज

0: में गंदा पानी का व्यवहार मत कीजिए। अगर आप पब्लिक टॉयलेट में जा रही हैं तो थोड़ा सावधानी बरते, पब्लिक टॉयलेट का पानी या उससे बहुत यूटीआई का चांस है, वहाँ पानी से ना धो, वहाँ के पानी से आप ना धो, कोशिश करें ना धोने का। और अगर सारे लोग ये सोचे कि कोई भी पब्लिक टॉयलेट आपका अपना टॉयलेट है, जाने के बाद उसको साफ रखे, तो ये सब भी सावधानी बरतने की शायद जरूरत ना पड़े।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। और ऐसा होता भी है कि हम बाहर जाते हैं लेकिन वॉशरूम साफ नहीं मिलता है हमें, टॉयलेट गंदा रहता है, तो उस वजह से बहुत सारी महिलाएं जिन्हें दिक्कतें भी आती हैं, तो वो अपना जो पेशाब है वो रोकती हैं, तो इससे भी क्या दिक्कत होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, पेशाब रोकने से अगर आप एक सिंपल बात समझिए, एक नाली में पानी जमा हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया हो जाता है। घर में भी आप पानी बहुत दिन तक कहीं पर रख दीजिए तो उसमें कीड़े पनप जाते हैं ना। उसी तरह से अगर आप पेशाब को बहुत देर तक थैले में रोकिएगा और वो एक जगह पे जमा हो है, तो हो सकता है कि आपका उसमें कीड़ा पनपे, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, अगर बहुत देर तक पेशाब आप रोकते हैं और थैला में, एक थैला का क्या नियम है कि उसमें पेशाब जब जमा हो जाता है तो वो उसमें एक सेंसेशन आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन आप अगर उसको ज्यादा फुलाते रहिएगा, उसको आदत हो जाएगा ज्यादा फुल के रहने का, तब वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और बाद में उसमें थोड़ा, हमेशा थोड़ा पेशाब बचा हुआ रह जाएगा, तो इससे भी आपका इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। पेशाब रोक के नहीं रखना है,
1: यानी कि बहुत सारी सावधानियां हैं, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है।
0: एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि मैं बोल रही हूँ ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन ये भी साथ में बात है कि बहुत ज्यादा भी नहीं। कितना पानी पीना है, जो घर में रहती है, ज्यादा काम कुछ नहीं जिन लोगों को है, उन लोग अगर 2 लीटर भी पानी पीता है इस समय तो सही है, क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, ये सब भी तो पीते हैं, वो भी पानी में काउंट होता है। और जिन लोग बाहर जाती है वो 3 लीटर, बहुत लोग आजकल मिलते हैं जो ज्यादा पानी के चक्कर में 4-5-6 लीटर पानी पीते हैं, तो उससे भी उनके किडनी पे जोर पड़ता है, ये भी कुछ अच्छी बात नहीं है।
1: बिल्कुल, बहुत सही। और एक तो होता है किडनी इन्फेक्शन और एक यूटीआई, तो दोनों क्या एक ही चीज है या दोनों अलग अलग?
0: किडनी इन्फेक्शन यूटीआई में ही आता है। किडनी, मैंने बताया ना, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लाडर और यूरेथ्रा, ये 4 चीज के इन्फेक्शन को यूटीआई कहते हैं।
1: अच्छा, वो सब मिला के यूटीआई।
0: जब, और हमेशा ही इन्फेक्शन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है अधिकतर केसेस में, तो अगर किडनी में इन्फेक्शन चला गया है मतलब वो सीरियस है।
1: तो क्या किडनी पर क्या असर पड़ता है, क्यों, क्या मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है उस टाइम जब इन्फेक्शन किडनी पर चला जाता है? तो
0: किडनी पे इन्फेक्शन चला जाता है तो ज्यादा दिक्कत तो होगी ही ना, क्योंकि किडनी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के शरीर में।
1: किडनी से संबंधित बीमारियां भी क्या हो सकती हैं?
0: नहीं, किडनी से संबंधित बीमारियां नहीं हो सकती है, लेकिन जिसको बार बार बार इन्फेक्शन होता है उन लोग में पथरी होने का खतरा ज्यादा रहता है।
1: वही कहना था कि कुछ
0: पथरी होने का खतरा ज्यादा जरूर रहता है। तो यूटीआई को शुरू में ही संभालने की जरूरत है, साफ सफाई रखना है, पानी पीना है। और यूटीआई अगर आपको हो, कुछ भी दिक्कत होती है, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। आजकल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे डॉक्टर है स्वास्थ्य केंद्रों में, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपना परेशानी बताएं।
1: बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई, और महिलाएं जो हमारी श्रोता बहनें हैं वो आपकी बातों से जरूर लाभान्वित हो रही होंगी। लेकिन चलते चलते आपसे हम ये एक सवाल पूछना चाहेंगे या कहना चाहेंगे कि आप जो श्रोता बहनें आपको सुन रही हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: मैं श्रोता बहनों को ये संदेश देना चाहूंगी कि यूटीआई से बचे, किसी भी चीज से बचना सबसे ज्यादा उपयोगी है। साफ सफाई से रहे, अपने जननांग को साफ वो सूखा रखे, अपने जो बाथरूम है घर का उसका बहुत अच्छा से सफाई रखे, और जो आप अंदर का वस्त्र पहनते हैं जो उसको भी बहुत साफ रखने की जरूरत है। उसको साफ रखने के लिए आप उसको साबुन और पानी से धोइए, बार बार खंगारिए, साबुन लगा नहीं रहना चाहिए, उसके बाद उसे धूप में सुखाइए। अगर किसी कारणवश धूप नहीं मिल पाता है तो आप उसको आयरन कर सकते हैं। सुखा रखिए, स्वस्थ वस्त्र पहनिए, पानी जितना पीना है 2 से 3 लीटर पानी आप पीजिए, यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।
1: जी बहनों, बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही जानकारी दी इन्होंने, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें डॉक्टर साहिबा ने बताई। आशा है आप जरूर इनसे लाभान्वित हुई होंगी, इतना कीमती समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी और हमारे स्टूडियो में अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद और थैंक यू, नमस्कार, जोहार।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी यूटीआई कारण लक्षण और निदान पे एक विशेष भेंट वार्ता, और आज की भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर ब्यूटी बनर्जी और उनसे बातें हो रही थी सुभाषिनी की। सुभाषिनी, अब कार्यक्रम में आगे क्या है?
1: कार्यक्रम में आगे तो बहुत सी बातें हैं खुशबू, लेकिन बहनों को ले चलते हैं संगीत की दुनिया में।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

ये गीत आप सुनेंगे तेरे नाम फिल्म से। गीतकार हैं समीर अंजान और संगीतकार हिमेश रेशमिया। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण।

थ्री इडियट्स फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, इस समय दिन का 1 बजने को है। आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व

0: ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has held high-level bilateral meetings with his counterparts from Malaysia, Timor-Leste and Myanmar. The meeting was held on the sidelines of the 9th ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry in New Delhi. During his meeting with Malaysia's Agriculture and Food Security Minister, Malaysia Mohammed bin Sabu, Mr. Chauhan noted the importance of sharing knowledge, expertise and best practices. Timor-Leste's Agriculture Minister, Mr. Marcos da Cruz, expressed interest in building strong institutional mechanisms between both sides to address various challenges in agriculture and ensuring food security for the nation. Meanwhile, Mr. Chauhan held a meeting with the Agriculture Minister of Myanmar, May Now. During the meeting, the minister noted that the Memorandum of Understanding between the two countries is at an advanced stage of finalization for strengthening the cooperation in agriculture and allied sectors. Defence Minister Rajnath Singh has described the maiden visit of Japan Air Self-Defence Force fighter aircraft to India as a significant milestone in the India-Japan defence partnership. In a social media post, Mr. Singh said it reflects both nations' growing trust and shared commitment to peace and stability in the Indo-Pacific. Mr. Singh noted that the development follows highly productive discussions held with his Japanese counterpart, Shinjiro Koizumi, in New Delhi last month. The defense minister said mutual exchange of visits, such as Exercise Veer Guardian, further strengthens this synergy. The three-day Global Dryland Congress 2026 is underway in New Delhi. The program is being held on the theme Transforming Dryland Agriculture with South-South Cooperation. Panel discussions are being held on various themes, including Breeding for Tomorrow, Accelerating Genetic Gains, and Climate Resilient Dryland Landscapes. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, will address the Congress later in the day. Director General of the World Health Organization, WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, met Union Health Minister Jagat Prakash Nadda on the sidelines of the 79th session of the WHO Regional Committee for Southeast Asia and Dili, Timor-Leste. Dr. Tedros congratulated Mr. Nadda on India's significant health gains, particularly in maternal and child health and the fight against non-communicable diseases. In a social media post, the WHO Director General said through 160,000 Ayushman Arogya Mandirs, India is bringing screening for hypertension, diabetes and common cancers closer to communities with referral pathways for further care.

0: Ahead of the BRICS Summit 2026, the Delhi police has imposed a blanket ban on the operation of drones and several other small aerial platforms across the national capital from today till the 14th of this month, citing heightened security concerns. Delhi Police Commissioner Anurag Kumar issued the order under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 as part of enhanced security arrangements for the summit. The restrictions will remain in force until Monday. According to the order, the prohibition covers a wide range of aerial platforms, including drones or unmanned aerial vehicles, unmanned aircraft systems, quadcopters, remotely piloted aircraft, paragliders, paramotors, hang gliders, microlight aircraft, small powered aircraft, hot air balloons, and para jumping from aircraft. India has stepped up its humanitarian assistance to flood-hit Nepal with the 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies that landed in Kathmandu yesterday. The Ministry of External Affairs said the latest consignment includes National Disaster Response Force equipment, rescue gear, forensic supplies and replenishment supplies for Indian Army teams involved in the ongoing relief and rescue efforts. The Indian Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Kerala, Mahe and Uttarakhand for the next 3 to 4 days. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा इस्तेमाल। स्वास्थ्य विभाग एआई असिस्टेंट और एआई फैमिली डॉक्टर प्लेटफॉर्म करने जा रहा है विकसित। वित्तीय अनियमितता के मामले में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति के सभी अधिकार सीज। राज्यपाल ने तत्काल इस्तीफा देने का दिया निर्देश। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी। धनबाद और चतरा समेत 6 जिलों में किया जा रहा है घेराव। जमशेदपुर में नागरिक सुविधाओं के लिए जोहार पुलिस व्हाट्सएप चैट बॉट सेवा शुरू। मोबाइल नंबर 9471167577 पर हाय भेजकर घर बैठे मिलेंगी कई जरूरी सुविधाएं। और रांची के बेड़ों में आयोजित अशोकपुरा फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल हुई मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कहा खेल ग्रामीण युवाओं को नशे से दूर रखने का है सशक्त माध्यम। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठकों में राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक आधारित बनाने के लिए एआई असिस्टेंट और एआई फैमिली डॉक्टर प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही रिम्स में आधुनिक कैंटीन के निर्माण और रेडियोथेरेपी विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए तकनीशियनों की संख्या बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने वित्तीय अनियमितता के मामले में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश कुमार सिंह के सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। लोक भवन द्वारा कराए गए विशेष ऑडिट में करोड़ों रुपए के हेराफेरी की पुष्टि होने के बाद राज्यपाल ने कुलपति को तत्काल इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के एसआईआर बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 4,06,000 से अधिक नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरा है। दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित है। दुमका जिले में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए दावों और आपत्तियों की सुनवाई जारी है। सूची के छूटे नामों को दर्ज कराने के लिए मुंबई जैसे महानगरों से भी लोग जरूरी दस्तावेजों के साथ दुमका पहुंच रहे हैं।
2: शिवपुरिया प्रसाद श्रीवास्तव, वायुसेना का रिटायर्ड स्टाफ हूँ और मेरी उम्र 84 साल की चल रही है। मैं नोटिस मिला था इसलिए एसआईआर में आया हुआ है।
3: मेरा नाम नीलम कुमारी है, एसआईआर में नोट आया हुआ था, ना आने पे मेरा समाचार नहीं।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फिल्म हनुमान अंश को झारखंड में कर मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसे टैक्स फ्री करने का अनुरोध किया। श्री सेठ ने कहा कि नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से प्रेरित यह फिल्म सनातनियों को सकारात्मक ऊर्जा देती है और देश के कई राज्यों की तरह यहाँ भी इसे रियायत मिलनी चाहिए।
4: मानस पिक्चर बनी है और बहुत प्रेरणादायी है। सनातनी को बल मिलता है, गुरु को, ईश्वर को हम मानते हैं, पॉजिटिविटी आती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैंने आग्रह किया कल पत्र लिखकर, झारखंड में भी अगर टैक्स फ्री होता है, और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जरूर इस पिक्चर को टैक्स फ्री करें।
1: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन के तीसरे दिन भी सड़कों पर है। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आज धनबाद, चतरा, सरायकेला और लातेहार समेत 6 जिलों में समाहरणालय और उपायुक्त कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने और पूर्व में आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग दोहराई है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने राजनीतिक चंदा मामले को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल बड़े पैमाने पर चंदा वसूली कर दूसरी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को तोड़ने का काम कर रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने नागरिक सुविधाओं के लिए जोहार पुलिस व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू की है। मोबाइल नंबर 9471167577 पर हाय भेजकर लोग घर बैठे ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन स्टेटस, साइबर शिकायत, चरित्र प्रमाण पत्र और खोए मोबाइल की सहायता ले सकेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक एहतशाम बकारीब ने कहा कि इस पहल से पुलिस और जनता के बीच त्वरित संवाद होगा।
5: का लॉन्च किया गया जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, जिसमें हम लोग पासवर्ड वेरिफिकेशन में, जॉब वेरिफिकेशन, चलान को लेके इशू आ रहा है, पुलिस कंप्लेंट को लेके दिक्कत हो रही है, सीनियर सिटीजन को कोई इशू आ रहा, महिला छेड़खानी को लेके कोई इशू आ रहा है, इसमें आप कंप्लेंट फ्लैग कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरफ। अच्छी पहल है जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और इसमें हमें NIT जमशेदपुर ने सहयोग किया है ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए।
1: रांची में राज्य सरकार और सिनी संस्थान की ओर से प्री कंसेप्शन केयर पर राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञों ने महिलाओं में कुपोषण, एनीमिया और कम उम्र में विवाह जैसे गंभीर आंकड़ों पर चिंता जताई। बैठक में गर्भधारण से पहले नियमित स्वास्थ्य जांच, उचित पोषण और किशोरावस्था से ही मानसिक व प्रजनन स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कोलकाता एसटीएफ से मिले गुप्त इनपुट पर पुलिस ने रेलवे ओवरब्रिज के पास एक मकान में छापेमारी कर लेथ मशीन और हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए। एसपी पीताम्बर सिंह खैरवार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मकान को सील करने और सघन जांच के निर्देश दिए हैं। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पुरानी और जर्जर पानी की टंकी को ध्वस्त करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। ढांचा अचानक भरभराकर गिरने से मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस और नगर निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से देर रात तक राहत बचाव अभियान चलाकर दोनों शवों को बाहर निकाला।
6: पानी का टंकी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके नीचे एक डेड बॉडी फंसी हुई है। जैसे ही सूचना मिला, हम तत्काल मौके पहुंच के हमने सिविल प्रशासन की मदद से बॉडी को सक्सेसफुली रिट्रीव कर लिया है। जैसा कि पहले बताया गया था, लगभग 5 लोग थे, जिसमें से 3 लोग सही सलामत निकल गए थे। NDRF ने सही सलामत बॉडी को रिट्रीव करके पुलिस को सौंप दिया है।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज शुरुआती सत्र के बाद मामूली सुधार देखा जा रहा है। सुबह की हल्की गिरावट से उबरते हुए सेंसेक्स लगभग 5 अंकों की बढ़त के साथ 74,769 के स्तर पर, जबकि निफ्टी हल्की रिकवरी के साथ 23,441 के अंक पर पहुंच गया है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के बेड़ो स्थित तेतर टोली में आयोजित अशोक उना फुटबॉल टूर्नामेंट में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। मंत्री ने ग्रामीण खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को सकारात्मक दिशा मिलती है और वे नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहते हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा इस्तेमाल। स्वास्थ्य विभाग एआई असिस्टेंट और एआई फैमिली डॉक्टर प्लेटफॉर्म करने जा रहा है विकसित। वित्तीय अनियमितता के मामले में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति के सभी अधिकार सीज। राज्यपाल ने तत्काल इस्तीफा देने का दिया निर्देश। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी। धनबाद और चतरा समेत 6 जिलों में किया जा रहा है घेराव। जमशेदपुर में नागरिक सुविधाओं के लिए जोहार पुलिस व्हाट्सएप चैट बॉट सेवा शुरू। मोबाइल नंबर 9471167577 पर हाई भेजकर घर बैठे मिलेंगी जरूरी सुविधाएं। और रांची के बेड़ों में आयोजित अशोक उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल हुई मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कहा खेल ग्रामीण युवाओं को नशे से दूर रखने का है सशक्त माध्यम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अनुरंजनी कार्यक्रम। इसमें उपशास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे। हमारी आज की कलाकारा है डॉक्टर अनीता सेन। इनसे आप सुनेंगे बंदिश और टप्पा। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत में डॉक्टर अनिता सेन से बंदिश और टप्पा। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे सुगम संगीत। इसमें आप सुनेंगे हरिहरन से चंद गजलें थोड़ी ही देर में।

0: सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और क्वांटम समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंद नीलेखणी एजेंटिक एआई टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। राजना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
3: डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
5: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
6: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्मभूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वेत्री कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम्स से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिदार, सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में

0: आठवीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। हमारे सभी फौजी भाइयों का हमारा दिल से नमन है। आइए उनकी शौर्य गाथा का बखान करते हैं, क्योंकि वो हमारे फौजी भाई देश के सीमा प्रहरी हैं।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கட்படை பாரதிய சேனா.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.
3: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आपका स्वागत है जय भारती कार्यक्रम में. हमारे सभी फौजी भाई अपने देश के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हैं, अपनी खुशियां देश के नाम करके, और हर समय अपने देश की ही बातें करते हैं, देश के लिए ही जीते मरते हैं, और हम उन्हें हर पल नमन करते हैं. वो हमारे देश की ढाल है, वो सरहद पर जागते हैं, इसलिए पूरा देश चैन से सोता है और हम अपने देश को प्यार करते हैं.

जी हाँ, अपने देश से प्रेम हो तो हर कुछ अपने देश में ही नजर आता है। वो हमारी जान है, आन है, मान है, शान है, जितना भी कहें वो कम है। और यही सब बातें हमारे सैनिक भाइयों के लिए, फौजी भाइयों के लिए दिल पर बसी होती है, क्योंकि वो रीलों के एक्टर नहीं बल्कि हमारे देश के असली रियल लाइफ हीरो हैं। और हम उन्हें हर पल प्यार करते हैं अपने दिल से, और अपनी धरती माँ को सलाम करते हैं उनके साथ मिलकर।

0: हमारे फौजी भाई, उनके अनुशासन, उनके पाबंदी और उनकी देश सेवा, हम हर वक्त उन्हें सलाम करते हैं। उनके कंधों पर सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा और तिरंगे का मान होता है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, जिसे हम दिल से प्यार करते हैं।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है?

जी हाँ, हमारा वतन, हमारा हिंदुस्तान और हमारी पहचान, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमारी पहचान सबसे अलग होती है, क्योंकि हम हैं भारतीय। हमारी सादगी, हमारा भाईचारा, हमारा दिल और हमारी जीत का जज्बा, ये सभी खासियत है हम सभी इंडिया वालों की।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठकों में राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। इसके तहत राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक आधारित बनाने के लिए AI असिस्टेंट और AI फैमिली डॉक्टर प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही रिम्स में आधुनिक कैंटीन के निर्माण और रेडियोथेरेपी विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए तकनीशियनों की संख्या बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के SIR बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 4,06,000 से अधिक नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरा है। दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित है। JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन के तीसरे दिन भी सड़कों पर है। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आज धनबाद, चतरा, सरायकेला और लातेहार समेत 6 जिलों में समाहरणालय और उपायुक्त कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। इस बीच भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच कराने और पूर्व में आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग दोहराई है।
3: मुकदमे हुए हैं पूरे 2400 जिला में 1000 छात्रों पर, अविलंब सरकार उसको वापिस ले। छात्रों का और भारतीय जनता पार्टी का मांग है, और हेमंत सोरेन जी अगर छात्रों के हितैषी है तो उनको CBI जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और अविलंब जो फर्जी मुकदमे हैं उसको वापिस लेनी चाहिए।
2: राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने वित्तीय अनियमितता के मामले में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश कुमार सिंह के सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। लोकभवन द्वारा कराए गए विशेष ऑडिट में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की पुष्टि होने के बाद राज्यपाल ने कुलपति को तत्काल इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर सिक्योरिटी मनी वसूल कर 5 से 6 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने बताया कि VSK फाउंडेशन में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के नाम पर 40,000 से 3,00,000 रुपए तक वसूले जाते थे। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राहुल दुबे गिरोह के 2 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान रामगढ़ निवासी मुन्नू कुमार और अविनाश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से लेवी के 40,000 रुपए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने नागरिक सुविधाओं के लिए जोहार पुलिस व्हाट्सएप चैट बॉक्स सेवा शुरू की है। मोबाइल नंबर 9471167577 पर हाई भेजकर लोग घर बैठे ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन, स्टेटस, साइबर शिकायत, चरित्र प्रमाण पत्र और खोए मोबाइल की सहायता ले सकेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारब ने कहा कि इस पहल से पुलिस और जनता के बीच त्वरित संवाद होगा। पाकुड़ में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर परिवहन विभाग ने वाहन जांच अभियान चलाया। जिला परिवहन पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की।
4: सड़क सुरक्षा को लेकर के आए दिन जिले में दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके मद्देनजर हम सभी मोटरसाइकिलदारियों से जो भी है हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो टोटो के भी ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी ट्रैफिक रूल का अनुपालन नहीं करने वाले चेकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा कार चालक सीट बेल्ट काम कर नहीं चलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नहीं चलते हैं, इसी की जाँच की जा रही है।
2: दिलीप ट्रॉफी 2026 का खिताबी मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ईस्ट जोन की टीम चैंपियन बनी। पहली पारी की बढ़त के आधार

पर चैंपियन की घोषणा की गई। इससे पहले आज झारखंड के कुनैन कुरैसी ने शतकीय पारी खेली। वहीं पहली पारी में झारखंड के ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 270 रन बनाए थे, जबकि झारखंड के ही कुमार कुशाग्र ने शतकीय पारी खेली है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय आइए हम आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल NS सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13

0: हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटेगी।

0: हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
1: कमली और सोमारू चले

0: आज घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए।

0: नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारु ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारु ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए जरा, बताइए तो।
0: अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहाँ बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।
0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
0: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।

0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत,
3: फूल सी गुड़िया हमारी।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक थे NCERT। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं। आज का विषय है जिंदगी है अनमोल, इसकी कद्र करें, आत्महत्या कारण एवं रोकथाम। इसके बारे में बातचीत करेंगे डॉक्टर सुयश सिन्हा, इनसे बातचीत करेंगे प्रभु शरण।
2: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुयश सिन्हा, जो ऑर्किड हॉस्पिटल रांची के कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और शहर के प्रख्यात मनोचिकित्सकों में इनकी गिनती होती है। आज हम बात करेंगे जिंदगी अनमोल है इसकी कद्र करें। ईश्वर ने मानव को ही केवल सोचने और समझने की क्षमता दी है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में भागदौड़ भरी जिंदगी में सोचने समझने की क्षमता ही कई बार इंसान की या मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। व्यक्ति भागता रहता है, दौड़ता रहता है, परेशान होता है, लेकिन किसी से कह नहीं पाता है। और एक समय आता है जब उसको लगता है कि अब जिंदगी का अंत ही उसके लिए एकमात्र मार्ग बचा है। इस विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर सुयश सिन्हा सर से। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें आज बुलाने के लिए।
2: सर, एक मनोचिकित्सक होने के नाते जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका पहला क्या इंप्रेशन आपके दिमाग में होता है, अगर कोई पेशेंट के तौर पर आपके पास आता है?
3: जी, कभी भी कोई भी मरीज जब किसी भी डॉक्टर के पास आता है तो पहला हम लोगों का यही उद्देश्य होता है कि जो उसकी समस्या है उसका समाधान करने में हम सक्षम हों और भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि उनको उस परेशानी से या जिस भी वजह से वो हम तक आ रहे हैं उनको उससे हम निकाल पाए।
2: सर, अक्सर देखा गया है कि पहले इंसान जब पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है तो उस समय उसको ज़्यादा चिंता इस बात की होती है कि हम एग्ज़ाम में स्कोर कैसे करें। उसके बाद जब वो पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी हो रही होती है तब चिंता होती है कि अच्छी नौकरी में कैसे जाएं। और ये चिंता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक इस प्रकार की एंग्जाइटी में बदल जाती है कि वो फिर इंसान के व्यक्तित्व से बड़ा हो जाता है। तो इसके विषय में सर आप क्या कहेंगे?
3: जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, जहाँ पे आपने मेंशन किया है कि चिंता कैसे एक धीरे धीरे एक इंसान के बचपन में एंटर करती है और फिर उसके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी जाके इम्पैक्ट दिखाती है। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि हमेशा जो चिंता है या किसी चीज़ का तनाव है वो नकारात्मक नहीं होता है। उसका आपके लाइफ में आने का उद्देश्य होता है कि वो आपके अंदर से जो पॉजिटिविटी है उसको निकाले, एक चैलेंज की तरह आपके सामने आए और आपको प्रेरित करे कि उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके उस पर जीत हासिल करें और आगे बढ़ सकें। बट अक्सर देखा जाता है कि जो भी चिंता है या तनाव है जब वो एक नेगेटिव वे में हमें इम्पैक्ट करती है तो हमारे सोचने समझने की पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को भी ख़त्म करती है, हमारी ऊर्जा को भी ड्रेन करती है। ऐसी स्थिति में अक्सर हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और एक ऐसे मनोदिशा में पहुंच जाते हैं जहां मन की उदासी और भी मानसिक विकारता जैसे घबराहट, बेचैनी, चिंता, सिर दर्द, ये सब होना शुरू होता है। और एक समय के बाद हम खुद के इस पूरे परिवेश से इतना थक चुके होते हैं कि हम नकारात्मकता वश अपने लाइफ को ख़त्म करने के बारे में तक भी सोच जाते हैं।
2: सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब तक हम किसी चिंता को एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे लेते हैं, एक मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं तब तक तो ठीक है।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन चिंता जब स्ट्रेस में बदलने लगती है तब परेशानी शुरू होती है।
3: बिल्कुल।
2: सर, स्ट्रेस के क्या सामान्य लक्षण होते हैं जिससे व्यक्ति ये समझे कि अब उसको परामर्श की आवश्यकता है?
3: जनरली स्ट्रेस जब भी आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलम करे या आपके सामने जो स्थिति है वो आपके कंट्रोल के बाहर जाने लगे, आपके रोज़मर्रा के काम की क्षमता घटने लगे, आपके फोकस कंसंट्रेशन में समस्या आने लगे, एकाग्रता की कमी आने लग जाए, नींद की समस्या उत्पन्न होने लग जाए और ये सारी चीज़ें एटलीस्ट 10 से 15 दिन तक लगातार बनी हुई हो और उसके बाद भी आपको इससे निजात नहीं मिल रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आप एक तनाव वाली स्थिति में हैं जिसमें आपको परामर्श ले लेना चाहिए।
2: सर, अक्सर ऐसा होता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी है, सोशल मीडिया पे पीछे छूट जाने की चिंता भी होती है, क्योंकि सर अब मोबाइल इंटीग्रल पार्ट हो गया है हम लोगों की जिंदगी का। तो जैसे पहले होता था सर कि जिस प्रकार से अगर बटुआ छूट गया, पर्स छूट गया तो बड़ी चिंता होती थी, तो अब पर्स से ज्यादा मोबाइल की चिंता होने लगी है। सर, आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और उससे जो ये नकारात्मक भावनाएं आती हैं, इसके लिए मोबाइल को कितना जिम्मेदार मानते हैं?
3: आई थिंक जैसा हम हमेशा जानते हैं कि पहले भी हम कहते थे कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो एक बून हो सकती है या फिर एक नेगेटिव फॉर्म में भी उसको हम ले सकते हैं, नकारात्मकता की तरफ भी वो लेके जा सकती है। आज से 20 साल पहले फ़ोन में बात ही होती थी, अब फ़ोन में बात भी होती है, बात के अलावा ज़्यादा काम लोग कर लेते हैं rather than बात करने के, और उसमें बाकी चीज़ें ज़्यादा चलाते हैं। तो आई थिंक डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी

0: मजबूरी हो जाता है आज के दौर में, जहाँ पे हर इंसान एक लाइन ड्रॉ करना सीखे कि इसके बाद अब हमें मोबाइल का या किसी भी स्क्रीन का या किसी भी गैजेट का व्यर्थ में इस्तेमाल करने से बचना है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो लाइन ड्रॉ करना सीखें। स्टूडेंट्स के अंदर हम देखने को मिलता है कि वो अननेसेसरी का स्क्रॉल करते हैं रील्स को, जो अगेन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। घंटों सोने के पहले भी वो रील्स देखते हैं, इवन अडल्ट्स के अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद पढ़ाई के नाम पे लोग फ़ोन में पढ़ाई तो शुरू करते हैं, लेकिन वो एंड अप किसी और चीज़ पे होता है। तीसरी चीज़, आजकल लोग वर्चुअल दोस्ती पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में पोस्ट्स डालते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं बार बार उसमें जाके कि मेरे कितने लाइक्स आए।
1: वैलिडेशन,
0: बिल्कुल, वो वैलिडेशन वाली टेंडेंसी वर्चुअली हम लोग ढूंढ रहे हैं, रादर देन रियल कनेक्शंस जो पहले हम बनाते थे उससे हम बच रहे हैं। तो जो ये जो वर्चुअल दुनिया की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक विकार का बहुत बड़ा कारण बन रहा है।
1: सर, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि ये जो आभासी दुनिया है, जो वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, कई बार सर जो अभी आपने वैलिडेशन की बात कही, इसकी वजह से युवा कई बार अपने आप को, अगर उनको लगा कि नहीं मेरी पोस्ट पे लाइक नहीं आया, मतलब वो अपने भीतर कमी ढूंढने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा इसकी वजह से सर कई बार ये सुसाइडल टेंडेंसीज जो डेवलप होती हैं, तो इसके लिए आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? युवाओं में ऐसा क्या हो रहा है जो पहले नहीं था अब होने लगा, या कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसको आप सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हो?
0: आई थिंक समय के साथ साथ इन गैजेटों के ओवर यूज़ के साथ साथ पीयर प्रेशर भी डेवलप करता जा रहा है। आपके दोस्तों को देखते हैं आप किसी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हुए, तो जिसको एक लर्न बिहेवियर डेवलप करते हैं कि नहीं, अगर कोई इंसान फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व है तो हमें भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम ये ज़रूरी समझने लगते हैं। फ़ोन में हम या सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट देखते हैं जिसको देख के लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ को छोड़ के बाकी सबकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, एकदम फैंसी है, एकदम अच्छी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो झूठ का पर्दा है, वो युवाओं के और इवन हर किसी के आँख के ऊपर से हटना बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो दिखाया जा रहा है वो कितने हद तक सही है, इसका आकलन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम लोग रियलिटी और वर्चुअल चीज़ों में डिफरेंशिएट कर पाएँ और रियल लाइफ में उसको कितना इन्वॉल्व करना है और रियल लाइफ वो कितना इम्पैक्ट करे, इस चीज़ से उससे बच सकें।
1: सर, एक और प्रश्न यहाँ उठता है कि अगर ये माइंडसेट की बात अगर बन रही है, तो कहीं ना कहीं सर इसके लिए परवरिश भी उतनी ही जिम्मेदार है, जो एक इमोशनल कनेक्ट जो परिवार के भीतर होना चाहिए
0: जी।
1: अगर कोई परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे युवा हो या वो एडल्ट हो या महिला हो, अगर वो परिवार के बाहर ढूंढ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ तो डिस्कनेक्ट है।
0: बिल्कुल सही,
1: इसके विषय पे सर आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल सही बात है। पहले के समय में घर में लोग बैठते थे ड्रॉइंग रूम में या कोई भी कॉमन सिटिंग एरिया में, लोग पूरे दिन पे चर्चा करते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि उनका दिन कैसा बीता, क्या समस्याएं आईं, क्या अच्छी चीज़ हुई, क्या उनको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या खाया, क्या पिया, सारी चीज़ें आपस में परिवार के लोग डिस्कस करते थे बैठ के। आज की डेट में परिवार के लोग बैठते तो हैं साथ, लेकिन हर कोई अपने फ़ोन से ही ग्लूड रहता है, चिपका रहता है, और एक दूसरे की बात को पूरी कंसंट्रेशन से भी नहीं सुनते हैं। वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि मेरे स्क्रीन पे क्या चल रहा है, मेरे पोस्ट्स पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, इन चीज़ों पे। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप आ गया है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, दादा दादी और पेरेंट्स और बच्चों के बीच, ये तीनों जनरेशन के बीच में जो गैप आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी बढ़ा रहा है, बिकॉज हम लोग बने नहीं हैं उस तरह से कनेक्ट होने के लिए, हम लोग वायर्ड नहीं हैं उस तरह से कनेक्ट होने के लिए। तो बीइंग ह्यूमन, जो एक हमारा इंट्रिंसिक नेचर है, उससे हम अगर भागेंगे तो तनाव का शिकार होंगे।
1: और जब ये तनाव बढ़ने लगेगा, जब व्यक्ति को लगने लगेगा कि अब हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वो आत्महत्या जैसे बहुत बड़े कदम उठा लेता है, जहां उसको लगता है कि अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया।
0: बिल्कुल
1: सर, एक बात जब युवाओं की बात होती है, तो साथ में अक्सर जो एक घर का एक कोना इग्नोर होता है, वो है महिलाओं का।
0: बिल्कुल,
1: चूंकि अभी भी सारी महिलाएं लगभग जो हैं वो वर्किंग नहीं है
0: जी।
1: जो महिलाएं घर में रहती हैं, उनमें अवसाद या डिप्रेशन ज्यादा बढ़ता जाता है, चूंकि वो अपनी बात कह नहीं पाती हैं। तो महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से उनको अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करना चाहिए?
0: आई थिंक जहाँ तक महिलाओं का सवाल है जो वर्किंग नहीं है और घर होम बाउंड ज़्यादा हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी नींद का सबसे अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर महिलाएँ सबका ख्याल रखने में अपने आप को पीछे छोड़ जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो भी महिलाएँ हैं वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, जिसमें उनका अपना हेल्थ भी ज़रूरी है, उनकी नींद भी ज़रूरी है, उनका अच्छा खान पान भी ज़रूरी है और उनका खुश रहना भी ज़रूरी है। जब तक एक महिला स्वस्थ नहीं रहेगी, परिवार स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि परिवार के भी बाकी जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों को समझें और ये टारगेट अचीव करने में जो भी घर की महिलाएं हैं उनकी मदद करें। टाइम टू टाइम उनको अपना बात रखने का मौका मिले, चाहे अपने हस्बैंड के सामने, चाहे अपने सास ससुर के सामने, चाहे अपने बच्चों के सामने। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग काम से लौटते हैं, खासकर हस्बैंड और उनकी वाइफ उनसे कुछ कहती हैं, तो आई थिंक इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। आई थिंक परिवार को एक टाइम निकालना चाहिए जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से बात करे, अपने मन की बात खुल के रखे, ताकि एक दूसरे के बीच कनेक्ट भी बना रहे और आपस के एक दूसरे की समस्याओं से भी लोग अवगत रहें और उनका निवारण करने में एक दूसरे की सहायता करें।
1: सर, आपने जो बात बताई कि अभी तक हम लोग अवसाद यानी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सेल्फ हार्म इन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज पर बात कर रहे थे
0: जी,
1: अब एक सर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर कोई आत्महत्या जैसा कदम उठाने की ओर बढ़ जाता है, तो क्या ये अचानक से हुआ डिसीजन होता है या वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद लेता है? कुछ तो लक्षण उसके होते होंगे।
0: बिल्कुल, आत्महत्या जैसी डिसीजन इम्पल्सिव एकदम से कोई तुरंत से नहीं लेता है। जनरली अगर कोई इंसान सडन इम्पल्सिव एक्ट किया, पहले किसी तरह का कोई डिप्रेशन या अवसाद की हिस्ट्री नहीं है, तो चांसेस दूसरे तरह के मानसिक बीमारियों का ज़्यादा होता है जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल हो सकते हैं। उस पे ना जाते हुए अगर हम सिर्फ डिप्रेशन की लाइन पे अभी बात करें, तो एक इंसान खुद को ख़त्म करने के पहले कहीं ना कहीं सारे ऑप्शंस तलाश चुका होता है ताकि वो अपने परेशानी को सॉल्व कर पाए, और फिर इतना हताश होता है तब जाके खुद को नुकसान करने के बारे में सोचता है। तो ये एज अ समाज हमारा कलेक्टिव दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं उनको हम प्रोत्साहित करें कि वो आगे आएं, बढ़ चढ़ के अपनी मन की बात रखें, अपनी तकलीफ डिस्कस करें। अक्सर देखा जाता है कि दोस्तों से लोग कहते हैं पहले, या अपने स्पाउस से, वाइफ से, हस्बैंड से इस बारे में बात करते हैं, या फिर अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं। तो मेक श्योर करना है कि जो भी लोग उनकी बात सुन रहे हैं उस चीज़ को सीरियसली ध्यान से सुने, उनके बात को जज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरी बात कोई सबसे पहले तो सुन ले, आधी समस्या का समाधान वहीं हो जाता है जब वो अपने मन की बात खुल के किसी से कह पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोग हैं समाज में, वो इस तरह के जो लोग हैं जो खुद को नुकसान करने की प्रवृत्ति में हैं, उनकी बात को सुने, उनकी तकलीफ को सुने और सुनने के बाद उनको समाधान ढूंढने में मदद करें, रादर देन उनको डिक्टेट कर देना कि नहीं इस चीज़ का यही सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। आप उनको गाइड करिए, आप उनको डायरेक्ट मत। दूसरी चीज़, ऐसे लोग जो कभी छोटा मोटा कुछ अटेम्प्ट करने के बारे में आपसे बोले हैं, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उनको किसी चिकित्सीय परामर्श के लिए प्रेरित करिए या किसी काउंसलर से मिलने बोलिए। अगर क्योंकि ऑब्वियसली आज के समय में सबके पास इतना टाइम नहीं है कि हर समय अवेलेबल रह सके, तो अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि नहीं वो इस तरह से प्लान कर रहा है खुद को नुकसान करने का, चाहे वो हैंगिंग हो या अलग अलग मोडलिटीज हो, अगर वो किसी पर्टिकुलर मोडलिटी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा है, तो बेटर है कि आप जाके उसको किसी चिकित्सक से या किसी साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से जरूर मिलवाएं।
1: सर, जो बात अभी आपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की कही, तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि जो कमजोर होते हैं वो आत्महत्या करते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप अपनी समस्या से हर समय लड़ते रहें। यही हम लोग को नहीं करना है कि एक पॉइंट पर आके जब आपको लगे कि अब ये समस्या आपसे बड़ी हो रही है तो वहां से हट जाना चाहिए। सर, एक सीनियर साइकाइट्रिस्ट होने के नाते आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कई दवाएं आजकल सहज रूप से मिल जा रही हैं?
0: अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो नियम से कोई भी ऐसी दवाई जो आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है वो ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में कई जगह ये देखा जाता है, हर जगह नहीं, मेट्रोज में कई जगह काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, बट हमारे शहर में या हमारे राज्य में ये चीज़ बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लोग प्रोक्योर कर लेते हैं ऐसी दवाइयाँ जो आपको नींद दिला दें, ऐसी दवाइयाँ जो आपको थोड़े दिन देर के लिए रिलैक्स कर लें। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि आप एक आम इंसान को अपने शारीरिक संरचना और फंक्शनिंग के बारे में ठीक से पता नहीं होता है और वो कोई भी दवाई लेना शुरू करते हैं ओवर द काउंटर, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होने के रिस्क होते हैं, उसमें उनके ब्रेन के फंक्शंस का एक तरह का हाईजैक का स्थिति भी उत्पन्न हो सकता है, ओवर सिडेशन की वजह से सांस की समस्या और बाकी हार्ट के रिदम्स की समस्या भी हो सकती है, कभी इस तरह के केस में अगर कोई ओवरडोज कर ले तो उनकी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए मेरा यही सलाह है कि आप किसी भी चिकित्सक से मिलकर उनकी सलाह के बिना इस तरह की कोई मेडिसिन ना लें।
1: सर, आपका लंबा कार्य अनुभव रहा है तो आपने कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स जरूर देखे होंगे जो कॉमन तरीके से पॉपुलेशन के भीतर आते हैं जिनकी सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, कृपया उन इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा
0: जी बताएं। सबसे पहले तो जो भी इंसान सुसाइड करने के लिए जाता है या इस बारे में सोचता है वो लंबे समय से तनावग्रसित तो रहता है, ये एक बहुत कॉमन चीज है जो उसके दोस्त या परिवार के लोग देखते हैं उसके अंदर। अक्सर किसी तरह के नशे का सेवन भी इस तरह के लोगों में पाया जाता है जो अपने परेशानी से निकलने के लिए वो उसको शॉर्ट रिसॉर्ट करते हैं कि शायद अल्कोहल ले लें या और किसी तरह का नशा कर लें और इस परेशानी से हम बच जाएं या उससे थोड़ी देर के लिए निजात पा सकें। तीसरी चीज़ है कि वो अपने रोज के कार्यशैली में उतने परफेक्ट नहीं रह जाते हैं जितना पहले रहा करते थे। चौथी चीज़ है इमोशनल फ्लक्चुएशंस उनमें बहुत देखने को मिलता है, सडन एंगर आउटबर्स्ट, सडन क्राइंग स्पेल्स, रोने की प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाने का टेंडेंसी, ये सब देखने को मिलता है। पांचवी चीज़ है कि इस तरह के लोग अक्सर अपने परिवारजन में या अपने दोस्तों से अपनी समस्या शेयर करते हैं और ऐसा भी अपने इंटेंशन शो करते हैं कि उन्हें लगता है कि लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, जीवन जीना बेकार है, शायद मर जाए तो अच्छा हो। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो एक आम आदमी में हम लोग देख सकते हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी जिसके अंदर डेवलप हो।
1: बिहेवियरल चेंजेस को लेकर के थोड़ा सा इसमें सावधान रहना होगा।
0: बिल्कुल
1: सर, अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास अपने परिवार में या अपने दोस्तों से अपनी बात नहीं कह पा रहा है
0: जी,
1: तो क्या ऐसी कोई हेल्पलाइन या इस तरीके के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जहां वो अपनी बात कह सके?
0: जी, इस तरह के काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इस तरह के कुछ सेवाएं सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है टेलीमानस के नाम से, जहां पे लोग 24 घंटे में कभी भी अपनी समस्या को डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनाई हुई है, तो जो भी इस तरह के मरीज हैं, इवन गवर्नमेंट इवन प्राइवेट, जहां पे इस तरह के जो भी मरीज हैं जो सडन कुछ इस तरह की भावना लेके प्रकट कर रहे हैं उनको तुरंत वहां रीच आउट किया जा सकता है और उनको ट्रीट किया जा सकता है।
1: तो श्रोताओं, आज आपको जानकारी दी गई कि यदि आप किसी प्रकार की चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सुसाइडल टेंडेंसी को फेस कर रहे हैं तो कृपया आप बात करें, अपने आप को इस तरीके से न परेशान करें कि आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिंदगी है अनमोल इसकी कद्र करें, आत्महत्या कारण एवं रोकथाम आज का विषय था। और हमारे साथ थे डॉक्टर सुयश सिन्हा, इनसे बातचीत कर रहे थे प्रभु शरण। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे थे। और अब कुछ ही पलों बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्म संगीत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए बड़ी बहन फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। आवाज है सुरैया की और संगीत दिया है हुसनलाल भगतराम ने और गीत के बोल हैं कमर जलालाबादी के।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं। 12 o'clock फिल्म का ये गीत है, आवाज गीता दत्त की है। गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं फागुन फिल्म से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं। गीत लिखा है कमर जलालाबादी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक

0: समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक आधारित बनाने के लिए AI असिस्टेंट और AI फैमिली डॉक्टर प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही रिम्स में आधुनिक कैंटीन के निर्माण और रेडियोथेरेपी विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए तकनीशियनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के SIR बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 4,06,000 से अधिक नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरा है। दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित है। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राहुल दुबे गिरोह के 2 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान रामगढ़ निवासी मुन्नू कुमार और अविनाश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से लेवी के 40,000 रुपए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद किया है। दिलीप ट्रॉफी 2026 का खिताबी मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ईस्ट जोन की टीम चैंपियन बनी। पहली पारी की बढ़त के आधार पर चैंपियन की घोषणा की गई। इससे पहले आज झारखंड के कुनैन कुरैशी ने शतकीय पारी खेली। वहीं पहली पारी में झारखंड के ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 270 रन बनाए थे, जबकि झारखंड के ही कुमार कुशाग्र ने भी शतकीय पारी खेली है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए हम आपको अब सुनवाते हैं विज्ञान जगत कार्यक्रम। आज चर्चा होगी स्पैम कॉल मैसेज लिंक से रहे सावधान, और एक भेंट वार्ता आप सुनिएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में एम्बुलेंस की भूमिका, इसके बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर रोहित सेंगर और इनसे बातचीत करेंगे बसंत कुमार। और आविष्कार की जानकारी होगी तड़ित चालक के बारे में, और प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं आज स्पैम कॉल, मैसेज और फर्जी लिंक से हमें क्यों सावधान रहना है इसके बारे में। इसके बाद बात करेंगे भेंटवार्ता में आज हम स्वास्थ्य सुविधाओं में एम्बुलेंस की भूमिका के बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे तड़ित चालक क्या है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि स्पैम कॉल, मैसेज और फर्जी लिंक से हमें क्यों सावधान रहना चाहिए इसके बारे में।

0: कर्मचारी बनकर तो कभी किसी कंपनी या सरकारी संस्था के नाम पर फोन और मैसेज करते हैं। अगर आपको कभी ऐसा फोन आए या मैसेज आए कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है या फिर आप केवाईसी अपडेट नहीं करवाए हैं, आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा या आपने इनाम जीता है, इसके बाद एक लिंक भेजी जाएगी और उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका जो जमा रकम है या फिर आपकी जो डेटा है फोन पर, वो सारी दूसरी जगहों पर चली जाएगी। इसीलिए कभी भी इस तरीके के लिंक, मैसेज और फोन कॉल को लेने से बचना चाहिए। अगर किसी अनजान नंबर से ऐसा कॉल आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बैंकिंग जानकारी, एटीएम या डेबिट कार्ड नंबर, पिन, सीवीवी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। बैंक या कोई भरोसेमंद संस्था आपसे फोन पर ओटीपी या यूपीआई पिन नहीं मांगती है। अगर आपके मोबाइल पर कोई ऐसा मैसेज आए जिसमें लिखा हो कि यहाँ क्लिक करें इनाम पाने के लिए या फिर केवाईसी अपडेट करने के लिए, तो आप उस लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि वो जालसाजी के लिंक हो सकते हैं। अनजान कॉल पर सावधानी, संदिग्ध लिंक से दूरी और अपनी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा, यही साइबर ठगी से बचने की समझदारी तो स्पैम कॉल, मैसेज और फर्जी लिंक से हमें क्यों सावधान रहना चाहिए, इसके बारे में हमने आपसे जानकारी साझा कर ली। बारी है अब भेंटवार्ता की। तो भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको बता दें कि आज हम स्वास्थ्य सुविधाओं में एम्बुलेंस की क्या भूमिका है, इसके ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रोहित सिंगर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दुर्घटनाओं के बीच में, यानी कि प्राथमिक जो दुर्घटनाएं होती हैं या फिर सड़क यात्राओं के बीच में जो दुर्घटनाएं होती हैं, तो उस चीज से निपटने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए जो एम्बुलेंस की सेवा है, ये कब शुरू की गई थी और इसकी उपयोगिता कैसे महसूस हुई?
1: एम्बुलेंस की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 1905 में ब्रिटिश जब राज कर रहे थे, तब इंडिया में सबसे पहले वही लोग एम्बुलेंस की फैसिलिटी अगर बोला जाए तो लेके आए थे। सेंट्रलाइज्ड हमारा एम्बुलेंस नंबर है 108, जिसको साल 2005 में पहली बार आंध्र प्रदेश से स्टार्ट किया गया।
0: ये तो बात हो गई कि शुरुआत की, एम्बुलेंस इस तरह से शुरू हुआ इसका सेवा जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए। बाद के वर्षों में अगर एम्बुलेंस को देखा जाए, बढ़ते बढ़ते जब हर एक मेडिकल के क्षेत्र में जब इसकी जरूरत महसूस होने लगी, तो लोगों तक भी इसकी जो जानकारी है वो पहुंचाना जरूरी हो गया। अगर हम बात करें बीमारियों में या फिर किसी तरह की दुर्घटना में, तो एम्बुलेंस की जो उपयोगिता है वो इसका इस्तेमाल के रूप में लिया जाता है। तो सड़क दुर्घटनाओं में एम्बुलेंस की अगर हम बात करें, तो लोग इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं और ये कितनी जरूरी हो जाती है?
1: देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में एम्बुलेंस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में मदद करती है, जिससे बहुत सारे केसेस में जान भी बचाया जा सकता है। एम्बुलेंस में प्रशिक्षित पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स भी रहते हैं, जो घायलों को प्राथमिक चिकित्सा तुरंत शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी की एक्सीडेंट हो गई है, रोड से ही अगर हमने एम्बुलेंस बुलाया है, तो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाने तक में ही प्राथमिक चिकित्सा शुरू हो जाती है एम्बुलेंस में। तो एम्बुलेंस सड़क दुर्घटनाओं में तो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है।
0: और जितने भी जो फ्लाईओवर्स हैं, जो हाईवेज हैं, जो रोड हैं, तो उन जगहों पर एम्बुलेंस का जो उपयोग है वो तो देखने को मिलता है, लेकिन क्या हर एक हाईवे पर एम्बुलेंस की जो सेवा है वो उपलब्ध है, मिल पाती है समय से?
1: सर देखिए, हमारे पास टोल फ्री नंबर है 108
0: जी।
1: तो चूंकि एम्बुलेंस का भी नंबर लिमिटेड है और किसी को भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, 108 नंबर टोल फ्री का यूज करके आप कहीं पे भी सटीक पता अगर देंगे तो आपको एम्बुलेंस वहां पे आ जाएगी।
0: टोल फ्री की आपने बात की है, जिस नंबर की, तो टोल फ्री में अगर कोई व्यक्ति फोन करता है और बातचीत करते हैं कि एम्बुलेंस उन्हें चाहिए, तो उनमें किस तरीके से उन्हें बात करनी चाहिए और किस तरीके से उन्हें वो सारी चीजें उनको पहुंचानी होगी कि एम्बुलेंस वहां सटीक रूप से पहुंच पाए?
1: देखिए, टोल फ्री नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर है, तो है जब भी आपने अगर टोल फ्री नंबर लगाया है, आपको सटीक पता बताना पड़ेगा कि एम्बुलेंस को जाना कहाँ है, पहला। दूसरा, घटना का एक विवरण देना पड़ेगा कि हमारी एम्बुलेंस जो है वो एक तरह से अपने आप को तैयार करके आती है कि मेरे पास इतने सारे मरीजों को मेरे को लेके जाना है, इतने सारे मरीजों को शायद से ये प्रॉब्लम हुआ है, उसी हिसाब से क्या अपने आप को एक तरह से रेडी करके लेके आती है एम्बुलेंस। तो मेरे हिसाब से दो चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, सटीक पता और एक बेसिक

0: आइडिया देना होता है, मतलब घटने का विवरण बताना पड़ेगा कि मरीज की क्या हालत है।
1: जी उसी हिसाब से वो सारी चीजें लेकर एम्बुलेंस वहां तक पहुंच सकती है, यानी कि जिसे भी एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो उन्हें सही रूप से अपने जगह का विवरण देना होगा और मरीज की जो स्थिति है उसके बारे में बताना आवश्यक है। ये तो सड़क यात्रा से जुड़ी हुई बातें हो गई और एम्बुलेंस से, लेकिन जब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जो आपको बाहर लेकर किसी को जाना हो तो हम बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की। तो एयर एम्बुलेंस की जो सेवा है लोग उसके बारे में जानकारी आम तौर पर थोड़ी कम रख पाते हैं, तो इसके बारे में हमें बताएं कि इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है और किन-किन कागजों की हमें जरूरत पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
0: देखिए, एयर एम्बुलेंस का जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि वो दूर पेशेंट को लेके जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को मेरे मरीज को दिल्ली लेके जाना है या फिर वेल्लोर लेके जाना है, मरीज की हालत बहुत खराब है और मेरे को तुरंत लेके जाना है, इस कंडीशन में मैं एयर एम्बुलेंस का उपयोग करूंगा। और एयर एम्बुलेंस का अगर उपयोग आपको करना है तो एयर एम्बुलेंस के लिए मल्टीपल कंपनीज हैं। अभी 2023 साल में हमारी झारखंड सरकार ने अपना एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया था, जो टोल फ्री नंबर से आप कॉल करके उपलब्ध करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 0651-466-5561। इस पे कॉल करने से आप अपना एयर एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं। और एयर एम्बुलेंस में जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए, बहुत बार व्यक्तिगत रूप से भी पेमेंट करना पड़ता है या फिर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस है,
1: जी
0: हेल्थ इंश्योरेंस से पेमेंट करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का आपका पेपर लगेगा, पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसका एक विवरण लगेगा। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: उसमें डॉक्टर की रिकमेंडेशन भी लगानी पड़ेगी
0: एक डॉक्टर का रेफरल लेटर भी होना चाहिए।
1: जहां लेके जाना है उनके लिए। और अगर व्यक्तिगत तौर पे कोई करता है एयर एम्बुलेंस की जो सेवा है उसका लाभ लेने के लिए उपयोग, तो उससे कैसे किया जा सकता है? ये तो आपने बता दिया कि किसी डॉक्टर का रिकमेंडेशन है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपका जो लेटर है वो चाहिए होगा, तो व्यक्तिगत तौर पे अगर करते हैं और उसका अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर
0: तो
1: कैसे हो?
0: पेमेंट आपको खुद से करनी होगी फिर।
1: जो भी खर्च आएगा
0: हाँ,
1: वो
0: जो खर्च आएगा
1: करना।
0: वो आपको खुद पे हैंडल करना होगा।
1: आपने टोल फ्री नंबर के बारे में भी बता दिया कि कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है एयर एम्बुलेंस का, और हम एम्बुलेंस के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो हम आपसे एक चीज और यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि हम आमतौर पर जब एम्बुलेंस को सड़कों पर जाते हुए देखते हैं तो लोग कई बार जाने अनजाने में गलती करते हैं, एम्बुलेंस के पीछे भागते हैं या तो उसको रास्ता देने में कोताही बरतते हैं। तो एम्बुलेंस जब भी किसी मरीज को लेकर जा रही है या फिर लेने के लिए मरीज को जा रही है तो लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, ये जरूरी बात हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे लोगों को सहयोग करना चाहिए?
0: देखिए, एम्बुलेंस जब ट्रैफिक में आपके पीछे है, आप अगर एक गाड़ी चला रहे हैं और आपके पीछे एक एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आ रही है, तो एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से हमें साइड देना चाहिए एम्बुलेंस को, ना कि उसके साथ कंपटीशन करने लगे। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रहे कि एम्बुलेंस जो जा रही है या तो वो किसी बहुत सीरियस मरीज को अस्पताल लेने जा रही है या फिर अस्पताल से उस मरीज के घर जा रही है जो बहुत सीरियस है। इसलिए हमेशा जब भी एम्बुलेंस आए तो साइड दे दे, एम्बुलेंस को आगे जाने दे, क्योंकि एम्बुलेंस का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है समय बचाना। और बहुत बार होता है कि ट्रैफिक के कारण ही एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच पाती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से हमें हमेशा एम्बुलेंस को साइड दे देना चाहिए कि आप पहले चले जाइए, हम थोड़ी देर बाद ही जाएं।
1: तो एम्बुलेंस को लेकर हम बहुत सारी जो नई बातें हैं वो हमें जानने को मिल रही है और एम्बुलेंस हमारे लिए कितना जरूरी है ये हम सभी समझते हैं, लेकिन एम्बुलेंस को हम इतनी जरूरी समझने के बावजूद भी उसके प्रति जो हमें जो जागरूकता होनी चाहिए वो बहुत कम है। तो जागरूकता की इस कमी को हम कैसे भरपाई कर सकते हैं और लोगों को इसके प्रति क्या विचार रखना चाहिए कि एम्बुलेंस हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो आप कैसे लोगों को जागरूक करना चाहेंगे, कैसे उनको ये बात समझाना चाहेंगे?
0: मैं ये बोलना चाहूंगा कि एम्बुलेंस अगर रोड पे दिख रही है आपको और एम्बुलेंस अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पीछे एम्बुलेंस है, सायरन बज रहा है, इसका मतलब है कि कोई बहुत ही सीरियस मरीज को एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जा रही है। इस मरीज के पास ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम समय हो। तो एज अ जिम्मेदार नागरिक हम लोग, मैं तो यही चाहूंगा कि हर किसी को एक रिस्पेक्ट देना चाहिए एम्बुलेंस को, कि अगर आपके पास आसपास है तो जाने दें। कोशिश करें कि जितने जल्दी आप साइड होके एम्बुलेंस को आगे जाने दीजिए। आपका अगर काम 5 मिनट लेट भी होता है तो आप किसी अच्छे काम के कारण लेट हो रहे हैं,
1: जी
0: ये आपको समझना होगा।
1: अब हमने इतनी सारी बातें कर ली तो हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि एम्बुलेंस जिसमें बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं मरीजों के लिए, और उसमें डॉक्टर्स भी रहते हैं और नर्सेज भी अस्पताल के द्वारा मुहैया कराए जाते हैं। तो ऐसे जो क्राइटेरिया हैं एम्बुलेंस को एम्बुलेंस के रूप में स्थापित करने के लिए, वो कौन कौन से हैं, और अगर किसी एम्बुलेंस में ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो लोग उसकी जो शिकायत है वो कहाँ कर सकते हैं, कैसे उसकी जो समस्या है उसका निदान मिल सकता है?
0: देखिए, एक गाड़ी को अगर मैं बोलता हूँ कि ये एम्बुलेंस है,
1: जी
0: तो उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए। अगर मैं शुरुआत करूँ तो सबसे पहले ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो कि 2 से 3 घंटे तक रहे। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, वो होता है एक वेंटिलेटर होना चाहिए, कि अगर मरीज बहुत ज्यादा ही बीमार है जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है तो वेंटिलेटर हो उस एम्बुलेंस में। तीसरा चीज होता है एक मॉनिटर, मॉनिटर जो हमारा हार्ट का रेट बता सके, हार्ट का रिदम बता सके। तीसरा, सारे इमरजेंसी रिलेटेड मेडिसिन्स,
1: जी
0: कि अगर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते समय कुछ भी अगर मेजर सीरियस कंडीशन होता है तो हमारे पास वो सारी दवाइयां हैं जिसको हम तुरंत यूज करके मरीज की जान बचा सके। ये सब कुछ मिनिमम चीजें हैं जो एक गाड़ी में अगर होती है जिसको हम एम्बुलेंस टर्म दे सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस का एट द एंड ऑफ द डे काम जान बचाना होता है।
1: जी और अगर किसी एम्बुलेंस में ये सारी चीजें नहीं है, सुविधाओं में कमी है, तो उसकी जो शिकायत है लोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं?
0: ये डिपेंड करता है कि आपका एम्बुलेंस आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से मंगाया है या फिर आप किसी 108 टोल फ्री नंबर से मंगाए हैं। अगर ऐसा होता है तो, अगर प्राइवेट है तो आप प्राइवेट अस्पताल के प्रबंधन से जाके बता सकते हैं कि आपके एम्बुलेंस में ये सुविधाएं होनी चाहिए और ये नहीं है।
1: जी
0: दूसरा, अगर सरकारी है तो आप CS ऑफिस में जाके बता सकते हैं कि ये 108 नंबर पे हमने बुलाया था एम्बुलेंस, ये नंबर था इस एम्बुलेंस का और इसमें ये चीजें नहीं है।
1: यानी कि जिस जगह से वो एम्बुलेंस आई है उसके जो प्रबंधन करता है वहीं से
0: हाँ
1: बात करनी होगी। तो हमारे जितने भी सुनने वाले जो श्रोता हैं उन्हें आज एम्बुलेंस के बारे में जो जानकारियां हैं वो मिल गई होंगी, और आशा करते हैं कि एम्बुलेंस के प्रति लोग जागरूक होंगे और जब भी उसे सड़क पर जाते हुए देखेंगे तो उसके प्रति गंभीरतापूर्वक सोचकर उसे रास्ता देने में भूमिका जो है वो निभाएंगे। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है हमारे बीच में आकर, और आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसमें आज हमने बातचीत की है स्वास्थ्य सुविधाओं में एम्बुलेंस की भूमिका, जिस पर हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रोहित सिंगर। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद लौट कर हम आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

मरने से डरता है क्यों? ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा। रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम जानकारी देने वाले हैं महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का नाम भारतीय विज्ञान के इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। माना जाता है कि इनका जन्म 476 ईस्वी के आसपास हुआ। आर्यभट्ट ने ऐसे समय में गणित और खगोल विज्ञान पर काम किया जब आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। इसके बावजूद इन्होंने आकाशीय पिंडों की गति, ग्रहण और समय की गणना के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है आर्यभट्टीय, जिसकी रचना लगभग 499 ईस्वी में की गई ऐसा माना जाता है। इस ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान से जुड़े कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। इनके कार्यों का प्रभाव बाद के भारतीय गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों पर भी काफी पड़ा। अब बात करते हैं आर्यभट्ट की सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय अवधारणाओं में से एक की। उस समय कई लोग मानते थे कि सूर्य और दूसरे आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने तारों की दिखाई देने वाली गति को पृथ्वी के घूमने से जोड़कर समझाने का काम किया। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या भी दी। इनके अनुसार ग्रहण किसी रहस्यमय घटना के कारण नहीं, बल्कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों और उनकी छायाओं के कारण लगता है। इसके बारे में लोगों को जानकारी दी। आर्यभट्ट ने समय की गणना और वर्ष की अवधि पर भी अध्ययन किया। इन्होंने वर्ष की लंबाई का जो अनुमान लगाया वो अपने समय के लिए उल्लेखनीय रूप से काफी सटीक था। आर्यभट्ट का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। इनके ग्रंथ और विचार बाद में अन्य भाषाओं में पहुंचे और भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के ज्ञान को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्यभट्ट का जीवन हमें ये संदेश देता है कि जिज्ञासा, तर्क और निरंतर अध्ययन के माध्यम से कठिन रहस्यों को समझाया जा सकता है। लगभग 1500 वर्ष पहले बिना आधुनिक कंप्यूटर, टेलीस्कोप और वैज्ञानिक उपकरणों के आर्यभट्ट ने गणित और अंतरिक्ष के बारे में जो अध्ययन किया वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। इसी महान वैज्ञानिक के सम्मान में भारत ने अपने पहले उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा था, जिसे सन 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे खोज और आविष्कार में। आज तड़ित चालक क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके बारे में। तो बरसात के दिनों में अक्सर हम बिजली का चमकना, बादलों का गरजना और कई जगह बिजली के गिरने जैसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, और इसमें कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन विज्ञान ने एक ऐसी चीज का आविष्कार किया जो इन बिजली की गिरते हुए किरणों को खींचकर जमीन के अंदर सोखने का काम करती है। आकाशीय बिजली एक अत्यंत शक्तिशाली प्राकृतिक विद्युत विसर्जन के रूप में जानी जाती है। अगर ये किसी इमारत पर सीधे गिर जाए तो आग लग सकती है, बिजली के उपकरण खराब हो सकते हैं और जान माल का काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे में तड़ित चालक ही एक मात्र उपाय है जो इससे हमें बचा सकता है। तड़ित चालक को आमतौर पर किसी ऊंची इमारत की छत पर लगाया जाता है। ये एक धातु की छड़ी चालक प्रणाली होती है, जिसे मोटे विद्युत चालक के माध्यम से जमीन में सुरक्षित रूप से जोड़ दिया जाता है। जब बिजली इमारत के आसपास गिरती है, तड़ित चालक का प्रभाव इमारत तक पहुंचता है, तो तड़ित चालक विद्युत धारा को कम प्रतिरोध वाले सुरक्षित मार्ग से जमीन तक पहुंचाने में मदद करता है। इससे बिजली का प्रवाह इमारत के संवेदनशील हिस्सों से होकर गुजरने की संभावना को कम कर देता है। इसलिए तड़ित सुरक्षा प्रणाली में केवल छड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि सही डिजाइन, उचित अर्थिंग, अच्छे चालक और नियमित निरीक्षण भी जरूरी है। अगली बार जब बारिश के साथ आसमान में बिजली चमके तो इसे केवल प्राकृतिक नजारा समझकर नजरअंदाज मत करिएगा। ये प्रकृति की अत्यंत शक्तिशाली विद्युत ऊर्जा है। आकाशीय बिजली से बचाव में सावधानी जरूरी है और सुरक्षित तड़ित सुरक्षा प्रणाली जीवन और संपत्ति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हमने ढेर सारी जानकारी, ढेर सारी बातें आपके साथ में साझा की हैं, और अब हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि विज्ञान ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो हमारी जान माल की रक्षा करने के लिए है, तो हमें उनका सदुपयोग करना चाहिए और जीवन में हमें हर एक चीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा, और अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एफ ही आप सुन रहे थे विज्ञान जगत कार्यक्रम। वाचन एवं सहयोग था वसंत कुमार का। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम डेप्थ के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चलें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से बस थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पे युवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है अपने करीबी लोगों से शेयर करें मन की बात। इतिहास में आज का दिन भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में इस पर चर्चा होगी और साथ में रोचक तथ्य और समसामयिक की भी आपसे साझा किए जाएंगे। कंपेयर होंगी आद्या शक्ति और तनिष्का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता गौरव कुमार पांडे। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पे। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है हरित उद्योग पर्यावरण संरक्षण से आर्थिक प्रगति तक। साथ में नई श्रम संहिता औद्योगिक संबंध विषय पर भी चर्चा होगी। कंपेयर हैं पूजा बोस और सुषमा एक का। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की।

किसान वाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:02 पे। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है पशुपालन में बीमारी से बचाव। सूत्रधार जुगनी खलखो और मनोज कुमार, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। हमारे दूसरा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:32 से। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की है। प्रादेशिक समाचार शाम के 7 से प्रसारित किए जाएंगे। जिले में आजकल आप सुन सकेंगे 7:11 से।

आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज संताली भाषा में। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है जीवन है अनमोल और साथ में अपनी बात कहना सीखें मन में ना रखें। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। सूत्रधार हैं शकुंतला बेसरा और उषा किरण हांसदा। 7:30 से आप सुन सकेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का जीवंत प्रसारण। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संस्कृत वार्ता कार्यक्रम सुर भारती में आज का विषय गीता अवसाद काले आशाय किरण विषय पर। वार्ताकार हैं डॉक्टर चंद माधव सिंह। कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:45 से। फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा रात्रि 8:00। सुर्खियों में कार्यक्रम रात्रि 8:30 से। सुनहरी यादें कार्यक्रम रात्रि 10:00। ये कार्यक्रम फिल्मी गानों पर आधारित है। और रात्रि 10:30 पे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत राग जय जयवंती में ध्रुपद गायन और राग शंकरा में गायन प्रस्तुत करेंगे पंडित सियाराम तिवारी। समय रात्रि 10:30 से। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत और श्रोताओं अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुने कुछ फिल्मी गाने।

फिल्म जुगनू का गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार का स्वर था। रचना थी आनंद बख्शी की, सचिन देव बर्मन का था। और कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं,

0: संगठन अपना देश का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत राहुल देव बर्मन का था। अगला गीत सुनने से पहले श्रोताओं लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, हम हाजिर होते हैं अगले गीत के साथ।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल,
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम में फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत IF सुने, फिल्म लव इन टोक्यो का ये गीत है। लता मंगेशकर की आवाज, रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का।

फिल्म लव इन टोक्यो का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, रचना शरेंद्र की है और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सांझ सरगम कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं, आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को

बंद करने से रोकने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। रांची के सीएमपीडीआई स्थित रविन्द्र भवन में एमएमई विकास कार्यालय और सीएमपीडीआई की ओर से दो दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम सह उत्पाद प्रदर्शनी 2026 का आज समापन हो गया। प्रदर्शनी में 5 सार्वजनिक उपक्रमों और लगभग 15 एमएसएमई इकाइयों ने स्टॉल लगाए, जबकि 200 से अधिक उद्यमियों ने तकनीकी सत्र में भाग लेकर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। नाबार्ड के झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव क्लासिक एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन कल से 20 सितंबर तक किया जाएगा। इस एक्सपो में देश भर के बुनकरों, शिल्पकारों और ग्रामीण उद्यमियों के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित और बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। एक्सपो का उद्घाटन कल दोपहर 3 बजे रांची के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के द्वारा किया जाएगा। जेपीएससी और जीएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन के तीसरे दिन भी सड़कों पर है। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आज धनबाद, चतरा, सरायकेला और लातेहार समेत 6 जिलों में समाहरणालय और उपायुक्त कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। दिलीप ट्रॉफी 2026 का खिताबी मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ईस्ट जोन की टीम चैंपियन बनी। इससे पहले आज झारखंड के कुनैन कुरैशी ने शतकीय पारी खेली। वहीं पहली पारी में झारखंड के ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 270 रन बनाए थे, जबकि झारखंड के ही कुमार कुशाग्र ने भी शतकीय पारी खेली है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:03 हो रहे हैं। श्रोताओं, शांतिकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम के बारे में हम बता देते हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सबको छवि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आपको हम सुनवाएंगे 5:05 पर कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद युगल फिल्म में की। उसके बाद आप सुनिएगा 5:30 से फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम संध्या के 6 बजे तक। संध्या के 6 बजे से 6:02 तक होगा मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 से संध्या के 6:30 तक आप सुनेंगे बंगला कार्यक्रम सात रंग।

श्रोताओं, संध्या के 6:30 से 6:55 तक आप सुनेंगे संथाली भाषा का कार्यक्रम। उसके बाद आपको हम सुनवाएंगे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। संध्या के 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 से 7:30 तक आप सुनेंगे

लोग की जादू मुंडरी और साथियों के स्वर में। रात्रि के 8 बजे आपको हम लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण इसके समापन तक। रात्रि के 8:45 से 9 बजे तक आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारे दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे 9 बजे से 9:15 तक अंग्रेजी में समाचार। 9:15 से रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे क्रिकेट मैच का प्रसारण इसके समापन तक। रात्रि के 11 बजे से आपको हम ले चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 11:10 से 11:45 तक आप क्रिकेट मैच का प्रसारण सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, और 11:46 पर सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। श्रोताओं, आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। अब कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद युगल गीत।

श्रोताओं, शुरू करते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। आप सबको छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज गुरुवार है, आज हम आपको फिल्मी गीतों में सुनाते हैं चंद युगल गीत। तो चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको फिल्म आंधी का ये गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गुलजार के बोल हैं, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद युगल गीत। तो चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है आए मिलन की बेला। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आपको हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद युगल गीत। अब आपको सुनवाते हैं बेताब फिल्म का ये गीत, शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आरती बर्मन का।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाए। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: श्रोताओं, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद युगल गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म का नाम है आराधना। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है एसटी बर्मन का।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे चंद युगल नगमे। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ छवि। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आप बहुत सारे गीत सुनेंगे अलग अलग फिल्मों के, तो चलिए शुरू करते हैं इस गीत से। अरमान फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा, उषा उत्थुप और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में चंद फिल्म लग में। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का ये गीत मुकेश और शारदा की आवाजों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म की छवि के साथ। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म का नाम है आशा। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं, साथ में लता मंगेशकर भी हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में चंद फिल्मी नगमे। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म का नाम है बाहर आने तक। पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, राजेश रोशन का संगीत है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में चंद फिल्म में नगमे। अब इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट विस्तार के लिए भारत सरकार के अमेंडमेंट भारतनेट प्रोग्राम के तीसरे चरण के तहत केंद्र ने डिजिटल भारत निधि राज्य सरकार और JDICL के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत 260 प्रखंडों, 4395 ग्राम पंचायतों और 26773 गैर जीपी गांवों में अगले 5 वर्षों में करीब 4,39,000 घरों को फाइबर कनेक्शन दिए जाएंगे। रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र में मतदाता सूची से 34 मतदाताओं के नाम हटाने की शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जांच का आदेश दिया है। श्री भजंत्री ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे ने निलंबन समाप्त होने के बाद आज कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान दिया। राज्य सरकार द्वारा निलंबन समाप्त करने का आदेश जारी किए जाने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। रांची में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में जागरूकता कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ NHM के झारखंड अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने किया। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर संवाद करने, आत्महत्या के चेतावनी संकेतों को गंभीरता से लेने और जरूरतमंदों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। साहिबगंज में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया। रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आज से CISCE झारखंड बिहार राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट 2026 शुरू हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। प्रतियोगिता में देश के 11 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं बंगला कार्यक्रम सात रंग, बस कुछ ही पलों में।

0: শ্রোতা বন্ধুরা, এতক্ষণ শুনছিলেন শ্রীকান্ত আচার্যের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত।
1: সবকে লিয়ে সামাজিক সুরক্ষা অটল পেনশন যোজনা মোদী জি কা সংকল্প
2: যোজনা উন নওজওয়ানো কে লিয়ে হ্যায়। जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
5: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
4: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: फिर एलाम विज्ञापन बिरतिर पर। श्रोता बंधुरा, एबार एकटु फोस्टार केयार स्कीम तार सम्बन्धे आलोचना, जेटी की मिशन बात्सल्य योजना बला है। तार अंतर्गत जिसब छेले मेयेदेर माँ बाबा नहीं তাদের সরকারি পক্ষ থেকে বিশেষ ধ্যান দেওয়া হচ্ছে এবং তারা তাদের জন্য একটি নির্ধারিত শুল্ক তাদের পিছনে খরচা করার জন্য সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য যদি বেশি এর সম্বন্ধে আপনারা জানকারি নিতে চান, তাহলে জেলা বাল সংরক্ষণ একাই সেখানে গিয়ে সম্পর্ক করতে পারেন। তার জন্য নম্বর হল 9955131364 এবং 9090700489। শ্রোতা বন্ধুরা, আজকে আর বিশেষ সময় নেই, তাই আজকের মতো আমাদের সাত রং অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত করছি। আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমাকে বিদায় দিন। নমস্কার।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे बंगला कार्यक्रम सात रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं संथाली कार्यक्रम।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱝᱜᱟᱹᱞᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ
1: अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क।
0: ᱵᱚᱭᱦᱟᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ, ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱢᱟᱱ ᱵᱤᱨ ᱯᱨᱚᱛᱟᱯ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ
3: ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛᱟᱱ ᱨᱚᱲ ᱟᱲᱟᱝ ᱜᱮ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱷᱟᱵᱽ, ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱵᱷᱟᱵᱽ, ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱟᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱥᱮ ᱥᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱜᱩᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱤᱱ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱪᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱢᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱟᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱮ ᱨᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱦᱟᱨ, ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ, ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱟᱨ ᱟᱥᱟᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱨᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ, ᱵᱷᱩᱴᱟᱱ, ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱟᱨ ᱢᱚᱨᱤᱥᱟᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱚᱴ 1 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱚ 2 ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱥᱮ ᱯᱨᱟᱪᱤᱱ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ 1947 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱮᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱠᱚ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱟᱨ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣᱮᱱᱟ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱲᱤᱭᱟ ᱜᱤᱨᱤᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱪᱟᱢᱵᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱞᱮᱥᱥᱚᱨ ᱟᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱮᱝᱜᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱢᱤᱥᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ, ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱵᱟᱹᱫᱤ, ᱵᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱵᱟᱯᱴᱤᱥ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱤᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱥ ᱟᱨ ᱮᱞᱤᱱᱚᱭᱮᱥ ᱫᱚ 1845

0: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱚᱞᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱦᱟᱨᱚᱯᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ 1852 ᱨᱮ ᱮᱱ ᱤᱱᱴᱨᱳᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱴᱩ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱱᱟᱠᱷᱟᱨᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪ ᱢᱤᱥᱱᱟᱨᱤ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱬᱛᱮ ᱢᱟᱱ ᱤ ᱮᱞ ᱯᱩᱠᱥᱞᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱠᱚ ᱡᱟᱴᱟ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱮ ᱵᱷᱩᱠᱟᱵᱞᱟᱨᱤ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ 1868 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱭᱵᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱟᱯᱴᱤᱥ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱲᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱢᱟᱱ ᱠᱮᱨᱟᱵ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱟᱨ ᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱᱥᱚᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸᱠᱤᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱮᱫᱟ 1873 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱮ ᱜᱨᱟᱢᱟᱨ ᱚᱯᱷ ᱫᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱵᱟᱱᱟᱨᱚᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱯᱨᱮᱥ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱲᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱮᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱱ ᱨᱟᱭ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱡᱟᱴᱟᱜ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱚᱞ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱚ 1880 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ 1947 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱩᱪᱱᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱡᱚᱱᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱦᱟᱯᱛᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱢᱵᱟᱫᱽ ᱫᱩᱢᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱫᱚ ᱢᱟᱱ ᱰᱚᱢᱟᱱ ᱥᱟᱹᱦᱩ ᱥᱚᱢᱤᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩᱞᱟᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱞᱠᱤᱥᱚᱨ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱟᱫᱤᱛ ᱢᱤᱛᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱩᱯᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱦᱚᱨᱚᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱷᱟᱭᱭᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱪᱩᱱᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱩᱱᱠᱩᱞᱟᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱱᱩᱱᱠᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱦᱤᱨᱫᱚᱭᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱥᱭᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱡᱟᱴᱟᱜ ᱡᱟᱣᱨᱟᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱭᱤᱪ ᱥᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱮ ᱮᱥ ᱮᱭᱤᱪ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱩᱱᱠᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱚᱞᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱦᱚᱨᱤᱦᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱠᱮᱣᱚᱞᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱤᱱᱳᱫ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱥᱩᱫᱮᱵᱽ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱨᱩᱯᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱵᱷᱟᱜᱚᱵᱚᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱷᱚᱜᱞᱟ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱥᱭᱟᱢᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱱ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩᱨᱟᱢᱪᱚᱨᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱢᱰᱟᱠ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱱ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱧᱩᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩᱨᱟᱢ ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱚᱞᱟᱜ ᱞᱤᱴᱟᱹ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱟ 1957 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱱᱟᱴᱚᱠ ᱚᱱᱚᱞ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱦᱩᱛ ᱨᱩᱯᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱨᱤᱡᱟᱞ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱛᱨᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱨᱤᱦᱤᱨᱤ ᱟᱨ ᱩᱢᱩᱞ ᱵᱟᱱᱟᱨᱜᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱛᱟ ᱜᱟᱢ ᱢᱟᱱᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱜᱤᱫᱤ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱨᱟᱭᱵᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱡᱮᱛᱮᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱨᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱤᱠᱤᱲ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱚᱢᱚᱥᱛᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟᱫᱮᱵᱽ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱨᱚᱵᱤᱞᱟᱞ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱟᱞᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱵᱟᱞᱮᱥᱥᱚᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱡᱚᱫᱩᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱡᱟᱢᱟᱫᱟᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱱ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ, ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮ ᱫᱷᱚᱱ, ᱵᱤᱫᱩ ᱪᱟᱸᱫᱟᱱ, ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱵᱤᱨ, ᱨᱚᱱᱚᱲ, ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱮᱢᱟᱱ᱾ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱦᱟᱨᱟᱯ ᱦᱚᱸᱭ ᱜᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱭᱮᱞ ᱯᱚᱧᱪᱟᱱ ᱢᱟᱨᱰᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱨᱭᱟᱱᱚᱱᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱥᱭᱟᱢ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱵᱟᱲᱦᱟ ᱵᱮᱥᱨᱟ, ᱩᱫᱚᱭᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱰᱟᱠᱟ᱾ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱥᱟᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱨᱮᱥᱥᱚᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱫᱤᱱᱮᱥ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱜᱳᱯᱤᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱨᱟᱱᱰᱤ᱾ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱨᱤᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱦᱮᱲᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ, ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱪᱮᱬᱮ, ᱰᱚᱢᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱴᱩᱰᱩ, ᱦᱚᱨᱤᱦᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱵᱷᱳᱜᱽᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱥᱭᱟᱢᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱥᱟᱹᱠᱞᱟᱹ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱜᱚᱱᱮᱥ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ, ᱵᱷᱚᱞᱟᱱᱟᱛᱷ ᱠᱤᱥᱠᱩ, ᱪᱷᱚᱴᱨᱟᱭ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱮᱢᱟᱱ᱾ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱝᱥᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ, ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫᱽ, ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱮᱢᱟᱱ᱾ ᱞᱟᱦᱟᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ᱾ ᱠᱷᱟᱴᱚᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱬᱜᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ, ᱧᱮᱞ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱥᱮᱫ ᱥᱚᱦᱚᱨᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱮ ᱡᱩᱲᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ᱾
1: ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ, ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱩᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱ ᱢᱟᱱ ᱵᱤᱨ ᱯᱨᱚᱛᱟᱯ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ᱾
2: चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ᱵᱚᱭᱦᱟᱢᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱛᱥᱟᱞᱞᱚ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱤᱞᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱛᱥᱟᱞᱞᱚ ᱚᱱᱛᱚᱨᱜᱚᱛ ᱯᱷᱚᱥᱴᱟᱨ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ 18 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱮᱠᱷᱨᱮᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱳᱫ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱥᱛᱷᱟᱭᱤ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱟᱢᱟ, ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱦᱚᱸ, ᱟᱨ ᱜᱟᱹᱨᱤᱢᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱡ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱮ ᱧᱟᱢᱟ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ, ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱟᱭᱩ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ 115 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱞᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱠᱞᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 35 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱭᱟ। ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱵᱤᱱ, ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱭ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱵᱷᱮᱨᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱥᱟᱥᱛᱷ तहन लग दिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको हम ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
4: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
3: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
5: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
6: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
3: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
8: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
3: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए?
9: एनएसबी कराने।
3: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
11: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता।
10: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2 माह के अंदर पूरा करने का दिया निर्देश। राज्य के ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट विस्तार के लिए केंद्र के डिजिटल भारत निधि, राज्य सरकार और जेडीआईसीएल के बीच हुआ समझौता। भाकपा माओवादी के 3 प्रमुख नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 15 लाख रुपए का इनामी और 10 लाख रुपए की इनामी उसकी पत्नी भी है शामिल। पलामू और कोल्हान के 8 जिलों में कल भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। पिछले 24 घंटे के दौरान देवघर और मधुपुर में सबसे अधिक 80 मिलीमीटर बारिश। और दलित ट्रॉफी में ईस्ट जोन की टीम बनी चैंपियन, झारखंड के ईशान किशन ने बनाए 270 रन। कुमार कुशाग्र और कुनैन कुरैशी ने भी खेली शतकीय पारी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2 माह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने और मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को कराने का निर्देश दिया। वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पदों के लिए आयोजित परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट विस्तार के लिए भारत सरकार के एमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के तीसरे चरण के तहत केंद्र के डिजिटल भारत निधि, राज्य सरकार और JDICL के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर जीपी गांवों में अगले 5 वर्षों में करीब 4,39,000 घरों को फाइबर कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही 4,387 पंचायतों के नेटवर्क को अपग्रेड कर स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा। इससे ग्रामीणों को ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी योजनाएं, डिजिटल भुगतान, टेलीमेडिसिन और रोजगार जैसी सेवाओं तक गांव में ही पहुंच आसान होगी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ आज भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। साहिबगंज में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान श्री मरांडी ने सीआईडी के एडीजी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की।
9: सरकार दिखाने के लिए सीआईडी की जांच कर रही है, लेकिन उस सीआईडी पर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए। जो आज प्रदेश में सीआईडी के जो इंचार्ज है वही खुद बैठेड है, कहीं खुद वो धागी है। जब वो हजारीबाग में एसपी हुआ करते तो वहां कोयला भी चोरी करवाते।
1: रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में आज केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य और विधायक लुईस मरांडी तथा विधायक सुदीप गुड़िया ने प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा पर आदिवासियों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया। लुईस मरांडी ने मध्य प्रदेश में 30 आदिवासी बच्चों की मौत की घटना को गंभीर बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।
12: भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में यदि 30 बच्चों की मौत हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उससे भाजपा भाग क्यों रही है। सवाल यह भी है कि जिन आदिवासी समुदायों को संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त है उनके बच्चे ऐसे भारी संख्या में मरने को कब तक मजबूर होते रहेंगे।
1: रांची में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में जागरूकता कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एनएचएम के झारखंड अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने किया। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर संवाद करने, आत्महत्या के चेतावनी संकेतों को गंभीरता से लेने और जरूरतमंदों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया तथा टेलीमानस हेल्पलाइन 144-16 की जानकारी दी गई। नाबार्ड के झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव क्लासिक एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन कल से 20 सितंबर तक किया जाएगा। इस एक्सपो में देशभर के बनकरों, शिल्पकारों और ग्रामीण उद्यमियों के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित और बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। एक्सपो का उद्घाटन कल दोपहर 3 बजे रांची में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के द्वारा किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जंगलों में सक्रिय भाकपा माओवादी के 3 प्रमुख नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच सरेंडर किया है। इनमें 15 लाख के रुपए का इनामी रीजनल कमेटी सदस्य रामप्रसाद मार्डी, उसकी पत्नी और 10 लाख रुपए की इनामी जोनल कमेटी सदस्य मीता तथा सब जोनल कमेटी सदस्य गौरी उर्फ बुल्लू शामिल हैं। तीनों के खिलाफ हत्या, पुलिस बलों पर हमला, आईईडी विस्फोट, आर्म्स एक्ट, यूएपीए और सीएलए एक्ट समेत कुल 81 मामले दर्ज हैं। सिमडेगा पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर सिक्योरिटी मनी वसूल कर 5 से 6 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने बताया कि वीएसके फाउंडेशन में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के नाम पर 40,000 से 3 लाख रुपए तक वसूले जाते थे।
13: पाया गया कि बेसिकली एमएलएम स्कैम है, जिसमें कुल

0: इसको प्रॉपर जांच पड़ताल करने के लिए बताया गया।
1: झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे ने निलंबन समाप्त होने के बाद आज कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान दिया। राज्य सरकार द्वारा निलंबन समाप्त करने का आदेश जारी किए जाने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। और अब मौसम का हाल। झारखंड के 8 जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तर पश्चिमी जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा तथा दक्षिणी जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा शामिल है। पिछले 24 घंटों में देवघर के मधुपुर में सबसे अधिक 80.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दलित ट्रॉफी 2026 का खिताबी मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ईस्ट जोन की टीम चैंपियन बनी। पहली पारी की बढ़त के आधार पर चैंपियन की घोषणा की गई। इससे पहले आज झारखंड के कुनैन कुरैशी ने शतकीय पारी खेली। वहीं पहली पारी में झारखंड के ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 270 रन बनाए थे, जबकि झारखंड के ही कुमार कुशाग्र ने भी शतकीय पारी खेली है। रांची के खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथ सहदेव स्टेडियम में आज पावर ग्रिड की 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पावर ग्रिड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसका उद्घाटन पूर्वी क्षेत्र 1 के मुख्य महाप्रबंधक नितिन कुमार श्रीवास्तव ने किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया 2 माह के अंदर पूरा करने का दिया निर्देश। राज्य के ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट विस्तार के लिए केंद्र के डिजिटल भारत निधि, राज्य सरकार और जेडीआईसीएल के बीच हुआ समझौता। भाकपा माओवादी के 3 प्रमुख नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 15 लाख रुपए का इनामी और 10 लाख रुपए की इनामी उसकी पत्नी भी है शामिल। पलामू और कोल्हान के 8 जिलों में कल भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। पिछले 24 घंटे के दौरान देवघर और मधुपुर में सबसे अधिक 80 मिलीमीटर बारिश। और दलित ट्रॉफी में ईस्ट जोन की टीम बनी चैंपियन। झारखंड के ईशान किशन ने बनाए 270 रन। कुमार कुशाग्र और कुनैन कुरैशी ने भी खेली शतकीय पारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
3: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
4: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
3: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
4: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
3: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
3: जी हाँ, कानून भी यही कहता है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
6: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
3: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
6: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
3: और लड़के की 21 वर्ष है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: झारखंड सरकार के दिवंगत नगर विकास मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को जिले में प्रत्येक दिन राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं, अधिवक्ता संघ एवं पत्रकार संघ के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव की अगुवाई में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पुलिस प्रशासन ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी है।
2: सभागार में जो लोगों ने माननीय मंत्री से आत्मा की शांति के लिए तो उनका मौन रखा और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। मैं समन्वय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों

0: भाकपा माले के वरिष्ठ नेता और बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने सरिया प्रशासन पर जानबूझकर एसआईआर के काम में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक ने इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और गिरिडीह डीसी राम निवास यादव से की है।
1: सरिया के 13 बूथों के मतदाताओं का कैंप स्थल उनके पंचायत से बदल करके जो है वो प्रखंड मुख्यालय कर दिया गया। ये लोगों को फजीहतों को परेशानियों को और बढ़ा देने वाला है। आज सुबह ही मैंने बगोदर विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी से, जिला निर्वाचन पदाधिकारी से, उपायुक्त गिरिडीह से और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कुमार जी से बात की कि भाई ये मतदाताओं के लिए सहूलियत नहीं, उनकी परेशानियों को बढ़ाने वाला है। इसलिए उन तमाम मतदाताओं को जहाँ पे भी आगामी डेट है उनके पंचायतों पर ही कैंप स्थल रखा जाए।
0: गिरिडीह जिले में रक्त की कमी से थैलीसीमिया के मरीज परेशान हैं। रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने गिरिडीह वासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है।
2: गिरिडीह ब्लड बैंक में रक्त की थोड़ी कमी चल रही है, जिसके कारण थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को परेशानियां हो रही है। कई संस्थाओं के द्वारा कैंप लगाया जा रहा है, लेकिन जिस अनुपात में थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बच्चे हैं उस अनुपात में कैंप नहीं हो पा रहा है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं संस्थाओं से भी कि वे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाएं। 18 साल से 65 साल तक के बीच के हैं, वे आके स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं।
0: गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने कहा है कि थाना में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि पुलिस का व्यवहार आम लोगों के प्रति मित्रवत हो। नगर थाना इंस्पेक्टर द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई मामले में उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है, साथ ही जांच का आदेश भी दिया गया है।
3: जो वायरल हुआ था, जो लोग के संज्ञान में आया है और उसको लेके हमने एक जांच टीम बनाया है और जो एडिशनल एसपी उसमें जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रथम दृष्टया उसमें जांच प्रभावित नहीं हो, इसको लेकर के थाना प्रभारी नगर को लाइन पोस्ट किया गया है अभी। और अभी वर्तमान में थाना प्रभारी पोस्टिंग कर दी गई है, वहाँ पे जो श्याम किशोर मेहते हैं उनको नया नगर थाना प्रभारी बनाया गया है और ज्ञान रंजन को फसल थाना प्रभारी बनाया गया है।
0: गिरिडीह जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद धान रोपनी के काम में तेजी आई है। जिले में धान रोपनी का काम अब भी चल रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
4: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:16 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म चांदनी का ये गीत। लता मंगेशकर और बाबला की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है शिवहरी का। इस गीत को सुनना चाहते हैं पुंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, सुहानी महली, हर्षमणि महली, नंदिनी महली, संजय सोरेन, साजीव सोरेन, पार्वती महली, पातोर खां, बांकीरा पातोर बांकीरा और डोली बांकीरा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधि

अध्यक्ष राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म चांदनी से।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है गुप्त। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है बीजू शाह का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू खुशी, अभिषेक, अनिश और मुन्ना। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मन महिनी महतो, दीन बंधु महतो। मौलडिया सोनवा झारखंड से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष गीतेश, अनु तनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा झारखंड से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, कुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पाणी प्रधान और नीक पाणी प्रधान। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं गुप्त फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: उत्सव है। खरीफ सीजन की जो फसलें हैं अरहर, मूंग, उड़द और कुलथी, रबी सीजन की फसलें चना, मसूर, मटर और खेसारी, ये सब हैं। डोबरा जी, दलहनी फसलों की खेती करने से मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है और इसमें जो जल है वो बहुत ही कम लगता है।
1: ऐसो सारी का जी चाष गया को ना हिंदी हाई अंत किन जगरा बुए ओको ना डाले उतु कहते बु जोमेतिया उतु को रे कंसरी को वो कुड़ती को चना को मोटरा को इमान इमाना को रियाड़ी को मिल लेका जेट असड़ा नो आते वो चाष हो कहते ना निमते मुंगी को रंबा को निया को उतु कहते डाले कहते जोमेतिया जिनिस को तना अंडो निया बुगिन चाष जिनिस को तन गया ऐसो सारी का जी आसमाय तकिन किन जगरा बुए तो नेन चर्चा जगर को अब सुनुमन जिनिस कोरिया चास बास विषय कोरी वाला जगरा को आसा जी।
0: बिल्कुल डोबरो जी, तिलहनी फसलों की बात करें तो इसमें तिल, तीसी, सरसों, राई, मूंगफली, सरगुंजा, ये सब हैं। इनसे हमारे किसान भाई बहन तेल की प्राप्ति करते हैं और इनकी भी खेती हमारे किसान भाई बहन काफी आसानी से कर सकते हैं। इन सब की खेती के लिए सबसे पहले तो खेत की तैयारी बहुत ही जरूरी है और इसके साथ ही हमारे किसान भाई बहन याद ध्यान रखें कि जब भी बीज की बुवाई करते हैं तो स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग करे तो वो ज्यादा अच्छा है और अच्छे किस्मों का चुनाव करे तो वो ज्यादा अच्छा है। इससे जो फसल का जो पैदावार है वो भी काफी अच्छा होता है। इसके साथ ही मिट्टी जांच बहुत ही जरूरी है। हमारे किसान भाई बहन अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं तो इससे यह पता चलेगा कि उनके खेत में किस तरह के पोषक तत्व की कमी है। तो इन सब बातों का हमारे किसान भाई बहन ध्यान रखे और सही समय पर अगर इन सब की खेती करते हैं तो उन्हें बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: या सारी के चाष गया को अब सुनुमन जिनिस को रे ना ऊंची को अंडो बादाम को एनते मानी को सुरसो सुनुम बो मैनी ने लेकिन सुनुमन जिनिस को वो चाष रियो अब ऐसो लापा में ना अब सुनुम को के बोलेन इरिकेते अब मी सिर में भर सिर में अब पैटी बो वार बो सेसनी है चीना मनते ची ना किरिंग रे ऐसो गुनों तन गया अंडो अब नहीं बो अकरिंग के तो पैसा बो ना मिया अंडो अपना वार के पैटर बा गुजर रे तो पैसा तबो बचा हुआ सरी के चास गया को नेलेकन जिनिस को बो चास या दो चर्चा को तो असा जे निंता रे के तिसिंग रंग तुंडो नोता निन तयम मियन सिविल दुरंग तबो और आसा लेनुआ जगबंधु बारी अंडो जुड़ी को पाए थे।

0: ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱟᱝ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱟᱥᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱞᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱨᱤᱞᱮ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱦᱮ ᱭᱟᱦ ᱭᱩᱱᱮᱥᱠᱳ ᱠᱟ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱦᱮ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱦᱟᱢᱮᱥᱟ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱥᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱛᱤ ᱨᱤᱦᱤ ᱦᱮ ᱡᱤᱥᱢᱮ ᱚᱛᱛᱟᱫᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱱᱰ ᱚᱨ ᱜᱚᱨᱢ ᱚᱵᱫᱤᱭᱟᱸ ᱥᱟᱢᱤᱞ ᱦᱮ ᱵᱚᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱵᱚᱨᱯᱷ ᱠᱮ ᱯᱚᱨᱛᱚᱸ ᱯᱮᱲᱚᱸ ᱠᱮ ᱛᱚᱱᱚᱸ ᱯᱚᱨ ᱵᱚᱱᱮ ᱪᱷᱚᱞᱚᱸ ᱚᱨ ᱚᱱᱮᱠ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱠᱮ ᱠᱚᱨᱚᱞ ᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷ ᱠᱚᱨ ᱤᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱᱚᱸ ᱠᱟ ᱚᱫᱷᱭᱚᱭᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱦᱮ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱡ ᱢᱟᱱᱵᱤᱭᱚ ᱜᱚᱛᱤᱵᱤᱫᱷᱤᱭᱟᱸ ᱡᱮᱥᱮ ᱛᱮᱞ ᱜᱮᱥ ᱚᱨ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱡᱚᱞᱟᱱᱟ ᱚᱨ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞᱚᱸ ᱠᱚ ᱠᱟᱴᱱᱟ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱮᱡᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟ ᱨᱤᱦᱤ ᱦᱮ ᱤᱥᱥᱮ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱢᱮ ᱚᱨ ᱵᱷᱤ ᱡᱟᱫᱟ ᱩᱛᱟᱨ ᱪᱚᱲᱦᱟᱣ ᱯᱚᱫᱷᱚᱸ ᱚᱨ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨᱚᱸ ᱠᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱛᱚᱛᱷᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱵᱷᱳᱡᱚᱱ ᱚᱨ ᱩᱨᱡᱟ ᱠᱤ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟᱭᱮᱸ ᱯᱮᱫᱟ ᱦᱳᱛᱤ ᱦᱮ ᱜᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱦᱮ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱚᱨ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱠᱮ ᱛᱚᱨᱤᱠᱚᱸ ᱢᱮ ᱞᱚᱢᱵᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱚᱠ ᱦᱳᱱᱮ ᱵᱟᱞᱟ ᱵᱚᱫᱞᱟᱣ ᱭᱟᱦ ᱮᱠ ᱨᱳᱪᱚᱠ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱦᱮ ᱔᱔ ᱭᱩᱜᱽ ᱥᱮ ᱟᱵ ᱛᱚᱠ ᱯᱨᱤᱛᱷᱵᱤ ᱠᱟ ᱚᱣᱥᱚᱛ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ 1 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱥᱮᱞᱥᱤᱭᱟᱥ ᱥᱮ ᱚᱫᱷᱤᱠ ᱵᱚᱲ ᱪᱩᱠᱟ ᱦᱮ
2: ᱢᱟᱱᱚᱱᱤᱭᱚ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱡᱤ ᱠᱮ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱤ ᱱᱮᱛᱨᱤᱛᱣ ᱢᱮ ᱯᱤᱪᱷᱞᱮ 8 ᱥᱟᱞᱚᱸ ᱢᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱮᱵᱚᱢ ᱤᱥᱥᱮ ᱡᱩᱲᱮ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱵᱟᱱᱟᱱᱮ ᱚᱨ ᱠᱤᱥᱟᱱᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱚᱥᱚᱠᱛ ᱮᱵᱚᱢ ᱟᱛᱢᱚᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱵᱟᱱᱟᱱᱮ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱠᱟᱭ ᱢᱚᱦᱚᱛᱚᱯᱩᱨᱱ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱩᱴᱷᱟᱭ ᱜᱟᱭ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱞ 2013-14 ᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱠᱮᱵᱚᱞ 21,933 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱨᱩᱯᱮ ᱛᱷᱟ ᱣᱟᱦᱤ ᱥᱟᱞ 2022-23 ᱢᱮ ᱤᱥᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟ ᱠᱟᱨ 1,24,000 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱠᱟᱨ ᱫᱤᱭᱟ ᱜᱟᱭᱟ ᱛᱟᱵᱷᱤ ᱛᱚ ᱥᱟᱞ 2013-14 ᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱫᱭᱟᱱ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ 265.05 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱴᱚᱱ ᱛᱷᱟ ᱣᱟᱦᱤ ᱥᱟᱞ 2021-22 ᱠᱮ ᱛᱤᱥᱨᱮ ᱚᱜᱨᱤᱢ ᱚᱱᱩᱢᱟᱱ ᱢᱮ ᱭᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟ ᱠᱟᱨ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ 314.51 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱴᱚᱱ ᱦᱚ ᱜᱟᱭᱟ ᱣᱟᱦᱤ ᱥᱟᱞ 2013-14 ᱢᱮ ᱵᱟᱜᱽᱣᱟᱱဤ ᱯᱷᱚᱥᱞᱚᱸ ᱠᱟ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ 280 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱴᱚᱱ ᱛᱷᱟ ᱣᱟᱦᱤ ᱥᱟᱞ 2021-22 ᱢᱮ ᱭᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟ ᱠᱟᱨ 333.25 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱴᱚᱱ ᱦᱚ ᱜᱟᱭᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱᱚᱸ ᱠᱤ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱚᱛᱚᱸ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱯᱤᱮᱢ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱱᱤᱫᱷᱤ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱞᱟᱜᱩ ᱠᱤ ᱜᱟᱭ
3: प्रधान मंत्री जो सम्मान निधि आती है ना वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
4: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
2: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
5: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
2: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
6: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
2: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
7: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
2: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
8: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
2: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
9: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है।
0: नैन संदेश को तयम नियत बेपटा जप गर्भ आयुम लेनो खीछन गार्डन से लाभ बकई कोरे अबु जाना को बुचास कहते चिलकेन लापा को नम दियो मीना विषय रे रीना महतो ओंडो अकिंग लो जपगारे मीना किने आशा माने को।
9: किसान भाई बहनों, आप कम समय में किचन गार्डन की तैयारी कैसे करें? आज हम जानकारी लेंगे किचन गार्डन की तैयारी आप कैसे करें, कैसे आप अपने घर पर किचन गार्डन बना सकते हैं। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
10: रीना महतो सरेकला है सावड़ी से।
9: जी, आपका हम कार्यक्रम किसानवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहार
10: सबको को जोहार।
9: हम यहाँ देख रहे हैं आपके किचन गार्डन में आप काफ़ी कुछ साग सब्जियों की खेती किए हैं, तो आप ये किचन गार्डन कब से कर रही हैं?
10: मैं तो किचन गार्डन 10 साल से कर रही हूँ। सब
9: 10 साल हो गया?
10: 10 साल
9: मतलब आप काफ़ी अनुभव ले चुकी हैं इसमें आप।
10: हाँ,
9: तो आप सबसे पहले इसके लिए आप तैयारी कैसे करती हैं?
10: तैयारी पहले मिट्टी को खोद करके पूरा सुखा लेते हैं।
9: जी,
10: उसके बाद 2-3 दिन सुखा लेते हैं, फिर बीज डालते हैं।
9: जी,
10: फिर उसके बाद 2-3 दिन सूखने से उसमें पानी डालते हैं।
9: ये मतलब बीज बोने से पहले ही आप पानी डाल देते हैं?
10: नहीं, बीज बो लेते हैं।
9: अच्छा।
10: उसके बाद थोड़ा सूखेगा 1-2 दिन।
9: जी,
10: फिर उसके बाद पानी डाल देते हैं।
9: अच्छा।
10: फिर धीरे धीरे अंकुर निकल जाता है, फिर 1 सप्ताह 15 दिन जैसे ही बीज बड़ा हो जाएगा।
9: अच्छा।
10: उसे गोबर या खाद से थोड़ा बहुत ये कर देते हैं।
9: तो खाद के रूप में गोबर खाद ही इस्तेमाल करते हैं?
10: हाँ, थोड़ा बहुत गोबर भी। और
9: अच्छा।
10: ये भी यार घर का खाने के लिए उतना नहीं देते हैं खाद।
9: हाँ, हम आपके यहाँ किचन गार्डन में देख रहे हैं कि आप बहुत कुछ लगाई हुई हैं, तो एक एक कर हमें जानकारी दीजिए कि आप इसके लिए सबसे पहले तैयारी कैसे करती हैं।
10: जैसे मिट्टी सबको वही बोले जो खोद करके पूरा सुखा लेते हैं, फिर 2-3 दिन सूखेगा, सूख करके उसके बाद बीज डालते हैं, जैसे ननुआ, करेला, भिंडी। अच्छा। कुंदरी
9: जी,
10: फिर साग, मूली, कद्दू, लौकी।
9: अच्छा।
10: वही सब सुखा करके बीज सब डाल देते हैं।
9: तो इसके लिए सबके लिए आप अलग अलग क्यारी?
10: हाँ, अलग अलग। हाँ, अलग अलग खेत बना लेते हैं।
9: अच्छा।
10: फिर बीज सब में डाल देते हैं
9: जी,
10: और 2 दिन सूखने देते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं।
9: अच्छा, ये अंकुर होने के लिए?
10: हाँ, अंकुर होने के लिए पानी डाल देते हैं।
9: हाँ।
10: फिर अंकुर हो जाएगा, फिर 15-20 दिन में फिर उसको खाद वगैरह दे करके ये कर देते हैं, मतलब गोबर खाद जैसे बाजार से खाद भी वैसे थोड़ा बहुत कम सम दे देते हैं।
9: अच्छा।
10: उसे बीज सब थोड़ा अच्छा हो जाता है उसमें।
9: अंकुरण होने के बाद फिर क्या इनको अलग से लगाती हैं?
10: नहीं नहीं, एक ही जगह दे देते हैं।
9: एक ही जगह
10: वहीं पर खाद गोबर डाल देते हैं।
9: अच्छा, ये जो आप करेला बताए तो इसके लिए क्या बीजों को फुलाते भी हैं?
10: नहीं नहीं फुलाते हैं, डायरेक्ट मिट्टी में डाल देते हैं।
9: अच्छा। बीज लगाने के बाद अंकुरण कितने दिनों में होता है?
10: 3-4 दिन में हो जाता है।
9: तो ये सभी सब्जियों में होता है या अलग अलग?
10: सभी सब्जियों में, करेला जैसे 1 महीना लग जाता है निकलने में, जैसे कद्दू 5-6 दिन
9: जी,
10: लौकी 5-6 दिन
9: जी,
10: बरबट्टी सब तो 3-4 दिन में निकल जाता है, भिंडी सब भी 3-4 दिन में निकल जाता है, मकई सब भी 3-4-5 दिन लग जाता है।
9: अच्छा। हाँ आपके यहाँ देख रहे हैं कि आप मकई भी लगाई हुई हाँ। है तो इनका मतलब अंकुरण अलग अलग
10: अलग अलग तरीके से
9: अलग अलग तरीके से होता है और सबका अपना अपना समय है हाँ, जैसे समय। आप करेला का बताई
10: वो ज्यादा समय लगता
9: ज्यादा है, समय लगता है। तो जो लत्तर वाली सब्जियां हैं उनके लिए आप किस तरह सहारा देती हैं या ऐसे ही जमीन में फैलता है?
10: जैसे धूप के टाइम में वो जमीन में ही हो जाता है लौकी कद्दू सब जमीन में ही। और जैसे अभी बरसात के टाइम में लौकी कद्दू सब उसको तो कीड़ा खाने का डर रहता है इसीलिए उनको डंडा दे देते हैं।
9: अच्छा और करेला?
10: करेला सबको देते हैं। धूप के टाइम में करेला भी जमीन पर ही रहता है। अच्छा। फिर अभी बरसात के टाइम में उसको भी लकड़ी से दे देते हैं।
9: जी ये जो साग सब्जियां हैं लगभग कितने महीने में ये तैयार हो जाते हैं?
10: बरबट्टी सब तो एक महीना लगे जाता है
9: जी।
10: भिंडी सब भी एक डेढ़ महीना, फिर नन्हुआ दो तीन महीना लग जाता है, करेला सब भी तीन चार महीना।
9: हाँ तीन चार महीना,
10: तीन चार महीना लग जाता है। लौकी भी दो तीन महीना लगे जाता है
9: जी।
10: फिर कद्दू सब भी वैसे ही दो तीन चार महीना लग जाता है। बरबट्टी सब एक ही महीना में हो जाता है,
9: वो सब एक महीना में
10: एक महीना हो जाता है
9: तैयार हो जाता है।
10: हाँ जैसे मकई सब वो सब भी तो तीन चार महीना लग जाता है मकई सब का।
9: तो पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इसमें किस तरह के रोग आते हैं, रोग का पता चलता है?
10: हाँ पत्ता सब सिकुड़ जाता है
9: जी,
10: सिकुड़ जाता है। बरबट्टी सब का जैसे साग का थोड़ा बूंदी बूंदी हो जाता है साग सब का।
9: इसके बचाव के लिए किस तरह से उपचार करती है?
10: थोड़ा बहुत दवाई दे देते हैं
9: जी,
10: जैसे कीड़ा नहीं लगे खाने के लिए बैगन उगन सब में जैसे थोड़ा बहुत दवाई दे देते हैं।
9: अच्छा आप सिंचाई कैसे करती हैं?
10: जैसे बीज बोन देते हैं
9: जी,
10: सूखेगा उसमें तो पानी डालना पड़ेगा, तीन चार दिन पानी डाल देते हैं। फिर ज्यादा धूप देने से सुबह शाम पानी डालना पड़ता है, और धूप नहीं देने से दो तीन दिन चार दिन में एक बार पानी डालने से भी हो जाता है सब।
9: जैसे सब्जी जब आप बीज बोना शुरू करते हैं और जब तक फसल जो हमारा तैयार नहीं होता तब तक सिंचाई तो करते ही है।
10: हाँ
9: आपको किचन गार्डन से किस तरह का लाभ मिल रहा है?
10: किचन गार्डन से जैसे हरा सब्जी डेली मिलता है घर में खाने के लिए, बाजार नहीं जाना पड़ता है, सुबह शाम हरा सब्जी मिल रहा है खाने के लिए, मतलब सब प्रकार का हरा सब्जी है।
9: ये तो सही बात है कि हम लोग को हरी साग सब्जियाँ घर से ही मिल रही है
10: लाभ, जैसे सुबह सुबह शाम मार्केटिंग नहीं जानी पड़ रहा है हम लोग को।
9: अच्छा।
10: मार्केटिंग तो नहीं जानी पड़ रहा है, बहुत बचत हो रहा है हम लोग का, मतलब हाँ पैसा का भी बचत हो रहा है,
9: धन और समय दोनों की बचत हो रही है।
10: हाँ सब बचत, और सुबह शाम जैसे नहीं रहने से भी सब यहीं से मिल रहा है, तो क्या बाजार जाएंगे, और एकदम ताजा सब्जी हरा सब्जी सब मिल रहा है।
9: हाँ और ताजी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है।
10: हाँ।
9: और ताजी सब्जियों के सेवन से हम भी स्वस्थ रहेंगे।
10: ताजा सब्जी खाने से मतलब हम लोगों का शरीर थोड़ा तंदुरुस्त रहेगा, इसीलिए सुबह थोड़ा टाइम निकल करके बागान में लग जाते हैं।
9: अच्छा।
10: किचन गार्डन में सुबह जैसे सुबह का टाइम में एक घंटा, शाम के टाइम में एक घंटा
9: जी,
10: जैसे पानी वगैरह देना होगा तो शाम के टाइम में पानी डाल देते हैं थोड़ा
9: जी,
10: ज्यादा धूप के टाइम में।
9: इससे होता है कि हम जो हम लोग का शारीरिक श्रम है वो भी हो जाता है,
10: शरीर के लिए
9: ठीक है। इन साग सब्जियों की विशेष देखभाल आप किस तरह से करती हैं?
10: देखभाल इसे जैसे जैसे घास उस सब नहीं निकलता, उस सबको कीड़ा मकड़ा को देखते हैं, थोड़ा
9: अच्छा।
10: बहुत घास उस निकलता उसमें खोद देते हैं।
9: हाँ।
10: मिट्टी दे देते हैं पेड़ पौधा सब में, थोड़ा अच्छा फल उल खिलेगा बोल करके
9: जी। हाँ और सही बात है, जो घास होते हैं
10: हाँ।
9: उनको तो हटाना बहुत जरूरी
10: है, जरूरी। घास उस जितना गोबर उदुक खाद मिलता है घास भी उतना जल्दी ही बढ़ जाता है,
9: बढ़ता है।
10: उस सबको थोड़ा टाइम निकल करके साफ सफाई सब करते हैं तब ना सब्जी अच्छा से खिलेगा।
9: अच्छा, हाँ। जो पौधे का विकास है वो हाँ, भी अच्छा होगा,
10: उसके सामने गंदा नहीं दिखेगा पेड़
9: जी।
10: साग सब्जी के नीचे पेड़ पौधा के नीचे जैसे बैगन पेड़ के नीचे सब वही सब साफ सफाई भी बहुत कर लेते हैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके
9: जी। जी आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग को ये जो घास है ये सबको हटाना है और खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना है, तभी जो साग सब्जियां है वो भी अच्छे से होगी, जो साग सब्जी है उनका विकास भी अच्छा होगा और फल भी अच्छा होगा। कि आप बताएं कि आप 10 वर्षों से ये किचन गार्डन का काम कर रही हैं, तो आपको अभी इसमें इस कार्य में आपको कैसा लगता है?
10: करने में अच्छा ही लगता है, सब में थोड़ा हरा भरा जैसे बड़ी ये जमीन हरा भरा दिखता है तो थोड़ा अच्छा लगता,
9: अच्छा
10: है। घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा अच्छा भी दिखता है, फल हुआ है सब पेड़ पौधा में फल उल लगा रहेगा तो अच्छा दिखता है थोड़ा एकदम।
9: और खाने के लिए भी आपको एकदम ताजी सब्जी
10: हाँ, ताजी सब्जी मिलती है खाने के लिए भी।
9: अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
10: सबको ऐसे ही थोड़ा बहुत मेरे जैसा करते रहिए
9: जी,
10: शरीर भी अच्छा रहेगा, फिर खाने के लिए ताजा सब्जी मिलेगा, फिर बाजार नहीं जाने पड़ेगा, टाइम निकल करके थोड़ा बहुत कृषि में ध्यान देना चाहिए, किचन में,
9: किचन गार्डन में
10: थोड़ा ध्यान देना चाहिए
9: जी।
10: जैसे हम थोड़ा बहुत बागान करते हैं, वैसे आप सब भी सबको थोड़ा बहुत जगह रहने से, जैसे गमला में धनिया मिर्चा थोड़ा थोड़ा जगह रहते हुए गमला सब में भी ये कर सकते हैं आप लोग भी किचन गार्डन में।
9: हाँ, किसने की जगह कम पड़ रहा है तो वो गमले में भी,
10: गमले में भी उन लोग कर सकते हैं,
9: खेती कर सकते हैं,
10: खेती कर सकते हैं थोड़ा बहुत।
9: किचन गार्डन कैसे करें, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार
10: जोहार।
9: किसान भाई बहनों, आइए अब हम सुनते हैं यह संदेश।

0: बीमा कर।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
5: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही है, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
4: डोबरो जी, अब हम कार्यक्रम के अंत में आनंद लेते हैं मुंडारी लोकगीत का, जादू मुंडरी व साथियों के स्वर में।
5: या मरबो अयुम लिया मुंडारी सी बिल्दुरा।

0: ᱱᱮᱱᱫᱩᱨᱟᱝᱞᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱮ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱨᱤᱫ ᱠᱚ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱵᱩᱲᱩᱞᱤ ᱚᱰᱚᱜ
1: ᱟᱥᱟᱢᱤᱱ ᱜᱚᱵ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱤᱵᱤᱫᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱤᱥ ᱠᱟᱨᱤᱠᱨᱚᱢ ᱠᱮ ᱯᱨᱟᱭᱳᱡᱚᱠ ᱛᱷᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱮᱵᱚᱢ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱟᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
2: श्रोताओं आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच।
3: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं गुरमीत रामल मीर द्वारा लिखित और निर्देशित झलकी मुबारकबाद।
1: श्रीधरन, अरे ओ श्रीधरन, श्रीधरन तुम भी अजीब आदमी हो। पुकारते पुकारते मेरा गला भी खुश्क हो गया। तुम हो कि अपनी धुन में ही चले जा रहे हो।
2: बंधु तुम, सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया।
1: श्रीधरन, तुम्हारे साथ ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: श्रीधरन होना क्या है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।
2: बंधु हम तो ये जानते हैं कि वही होता है जो मंजूरे बंधु होता है।
1: क्यों बेकार में फूंक दे रहे हो यार, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
2: बंधु पहले तुम्हारा इनसे परिचय तो।
1: अरे रे, इतनी जल्दी भी क्या है?
2: क्यों,
1: परिचय तो वहां किया जाता है जहां इंसान की कोई जानकारी ना हो।
2: कैसी जानकारी?
1: श्रीधरन के शौक के बारे में किसको पता नहीं।
2: शौक? कैसा शौक?
1: वैसे ऐसा शौक पालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरह हर कोई ट्रिकबाज नहीं हो सकता।
3: आप किन बातों में उलझ गए, आगे क्यों नहीं चलते?
1: मैडम, मिस्टर श्रीधरन जी हमारे भी घनिष्ठ मित्र हैं। अगर अब नहीं है तो क्या हुआ, पहले तो थे ही। प्लीज हमें भी दो बातें करने दो।
3: आपके घनिष्ठ मित्र जरूर होंगे, लेकिन इस वक्त तो बोर मत कीजिए।
1: श्रीधरन जी, ये नई चिड़िया कहाँ से?
2: बंधु तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो।
1: जी कहना क्या है, मैं वही तो कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ।
2: क्या देख रहे हो?
1: नई चिड़िया।
2: क्यों बात बात बेसिर पैर के हाँक रहे हो? तभी तो मैंने शुरू में ही कहा था कि तुम्हारा इनसे परिचय करा दो।
3: ये आपके कैसे मित्र हैं जी, मुंह में जो आता है बोले जा रहे हैं।
2: रेखा डोंट माइंड, इन्हें दिल लगी करने का शौक है।
1: मैंने सोचा था कि किसी दिन श्रीधरन के हाथ में कुमुदनी का हाथ होगा और मैं दोनों को मुबारकबाद दूंगा, पर तुम तो अभी अपना शौक ही पूरा कर रहे हो।
2: बंधु भाई मजाक छोड़ो, भी इस वक्त भी मुबारकबाद देने का ही शुभ अवसर है। मैं कब से कह रहा हूं कि रेखा मेरी पत्नी ही तो है, 2 हफ्ते पहले ही तो हमारी शादी हुई है।
1: अच्छा, रियली आप दोनों की शादी हो चुकी है?
2: जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है, पर तुम मेरी कोई बात सुनो तब ना।
1: इसका मतलब यह हुआ कि बेचारी कुमुदनी के साथ सिर्फ शौक का ही इश्क चल रहा था।
2: कुछ कहने से मैं तुम्हें रोक तो सकता नहीं, पर अब रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और तसल्ली से बातचीत करें।
1: देर अब नहीं, मैं भी मिसेस के इंतजार में हूं, हमें कहीं जरूरी पहुंचना है, उसने पहले ही देर कर दी है। ओके, शादी की मुबारकबाद, अब चलता हूं, फिर मिलेंगे।
3: अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, क्या आगे नहीं जाना है?
2: इस बंधु के बच्चे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
3: लेकिन एक बात तो पक्की है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता।
2: उस बंधु के कहने मात्र से ही तुम्हें आग नजर आने लगी है।
3: ज्यादा बहाने मत बनाओ।
2: भला मैं क्यों बहाने बनाने लगा?
3: अपराधी आदमी के पास बहाने बनाने के अलावा और कुछ नहीं होता।
2: देखा, सच मानो कुमंदनी नाम की किसी लड़की को मैं जानता तक नहीं। मैं यही सोच रहा था कि बंधु ने उसका नाम कैसे लिया।
3: जब आपका शौक ही ऐसा रहा है तो किस किस का नाम याद रखोगे?
2: तुम्हारे वहम का इलाज मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुमसे शादी से पहले और ना ही अब मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं है।
3: झूठ बोलने के लिए किसी तरह का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं होती, जरा सी जुबान ही तो हिलानी होती है। मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये एक्स्ट्रा शौक पालने हैं तो हमारा साथ साथ रहना नामुमकिन है। मैं जा रही हूँ।
2: रेखा प्लीज गुस्से को थूक दो, मैं जो बता रहा हूँ उस पर यकीन करो।
3: पीछे हट जाओ, मुझे मत छुओ, मेरा रास्ता छोड़ दो।
2: आखिर चाहती क्या हो, क्या 2 हफ्ते में ही आपसे विश्वास, पारिवारिक आस्था और दाम्पत्य श्रद्धा धूल की तरह उड़ गई?
3: अच्छा हुआ जो 2 हफ्ते में ही आपकी कलाई खुल गई, नहीं तो बाद में न जाने कितना पछताना पड़ता।
4: श्रीधरन जी, क्या बात है, ये नवविवाहित जोड़ा सड़क पर क्यों दो दो हाथ कर रहा है?
2: चंदन आओ, इधर कहाँ जा रहे हो?
3: नमस्ते जी।
4: नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, सब ठीक तो है ना?
2: चंदन भाई, तुम उस बंधु को तो जानते हो, वो किसी का सुखमय जीवन देखकर कभी खुश हो सकता है?
4: हाँ लगता है वो चलता चलता तुम दोनों में भी झगड़े की चिंगारी सुलगा गया है।
2: तुम्हें कैसे पता लगा?
4: अरे उसका काम ही ये है, दूसरों के घर में आग लगाकर उसे हाथ सेकने का बड़ा ही शौक है।
2: क्या तुम्हारे साथ भी कुछ?
4: हाँ पिछले दिनों वो हमारे घर आया, कहने लगा चंदन जी वो सब तस्वीरें कहाँ गई जिन लड़कियों के साथ तुम घुमा फिरा करते थे। बस उसका इतना कहना था कि निशा के मन में मेरे प्रति भयंकर शंका पैदा हो गई।
2: फिर तो घर लड़ाई का अखाड़ा बन गया होगा।
3: तो इसका मतलब उसने आपके घर में भी झूठी बातें कही थी?
4: अरे झूठी नहीं, बिल्कुल सफेद रूप में झूठी। जब बंधु सत्यार्थी ने खुद अपने मुख से निशा को बताया कि वो तो सिर्फ दिल लगी के लिए ही तस्वीरों की बातें कर रहा था, तो तब जाकर निशा के दिल से शंका की भावना मिटी।
3: मुबारकबाद देता देता वो न जाने क्या क्या कह गया। भाई साहब मैं तो वास्तव में उसकी सब बातों का विश्वास कर गई।
2: और आग बबूला होकर मुझसे सड़क पर ही लड़ने लगी।
4: अरे श्रीधरन के बारे में तो मैं खुद प्रमाण पत्र जारी कर सकता हूँ, इसके समान कोई भी व्यक्ति आदर्श पति नहीं हो सकता। जीवन भर आंखें मूंद कर श्रीधरन के पीछे चलती रहोगी तब भी सुख ही सुख मिलेगा।
3: देखो जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने एक मिनट में न जाने क्या क्या नहीं कह डाला, मुझे माफ कर दो।
4: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी तो जिंदगी की शुरुआत ही हुई है, आगे न जाने जिंदगी में कितने बंधु सत्यार्थी मिलेंगे।
2: अब बंधु एक बार मिल जाए तो?
4: वो तो अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा ठाट से कॉफी पी रहा है और चीज पकौड़े खा रहा है।
3: अच्छा ये बात है।
2: हम दोनों के बीच में लड़ाई करा के खुद रेस्टोरेंट में बैठा पत्नी के साथ पकौड़े खा रहा है।
3: भाई साहब थैंक यू वेरी मच, अब हम भी रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं, बंधु सत्यार्थी से वहीं मुलाकात होगी।
2: चंदन जी तुम भी चलो ना, दो मिनट गप्पाजी हो जाएगी।
4: मैं कहीं जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर कभी सही। अच्छा जी नमस्ते।
2: नमस्ते जी।

0: आपने क्या सोचकर ये कह दिया? तो कि मैं आप पर शक कर सकती हूँ? मैं इतनी कमजोर नहीं कि लोगों की बातें सुनकर आप पर ताने कसने लगूं।
1: ओहो, तुम तो एकदम

0: लगाए हो।
1: ओ हेलो सत्यार्थी जी, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई।
2: क्या मुझसे कहा आपने?
1: और किससे कुछ कह सकती हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई लवली फ्रेंड मिस्टर बंधु सत्यार्थी।
0: जी कौन है जी जो इस तरह बेशर्मी से आपके मुंह लग रही है?
1: बंधु जी ये कौन है जिसे हंस हंस कर बातें कर रहे हो?
2: ममता मेरा ख्याल है कि ये मिसेज श्रीधरन है। हेलो हेलो मिसेज श्रीधरन।
1: कौन मिसेज श्रीधरन? मैं मिस्टर बंधु, इस नई चिड़िया के सामने बनने की कोशिश मत करो। 10 मिनट लेट क्या हो गई? लगे इस मैडम के साथ रोमांस करने?
2: मैं
1: क्या 10 मिनट में मेरा वेट नहीं कर सकते थे?
0: आप इसके सामने मेमने की तरह मिमिया क्यों रहे हो? देखो देखो कितनी बेशर्म है, कैसे सटकर आपके पास बैठ गई है।
1: बंधु इस बड़बड़ाती मैम को जाने के लिए तुम कहोगे या फिर मुझे ही?
2: तुम ये क्या कह रही हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, जबकि ममता मेरी पत्नी है जिसके लिए तुम ये सब कह रही हो।
1: लेकिन लेकिन तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम मैरिड हो।
0: अच्छा मान ना मान मैं तेरा मेहमान, न जाने क्यों गले पड़ती जा रही है, इतनी हिम्मत?
1: मैडम गले मैं नहीं तुम पड़ रही हो, मिस्टर बंधु सत्यार्थी तो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड है। चलो जी हम कहीं और चलते हैं, यहाँ रहेंगे तो ये बिना मतलब के कवा में हड्डी बनती रहेगी।
2: तुम मुझे कहाँ खींचे जा रही हो, प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। कहाँ ना, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं।
1: लगता है इस वक्त तुम्हारा मूड नहीं है मुझसे बात करने का। ओके मैं अभी चलती हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊंगी। ओके बाय बाय।
2: अजीब बात है, ना जाने ये पागल कहाँ से आ सकती है।
0: वहाँ से ही टपकी होगी जहाँ आप उसे रोज मिलते होंगे।
2: क्या मतलब?
0: वही जो तुम जानते हो।
2: क्या जानता हूँ?
0: कि वो कौन है।
2: कौन है?
0: वही होगी जिससे रोज मुलाकातें करते हो।
2: कौन मुलाकात करता है, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानता।
0: मेरे सामने भोले बनने से वस्तु स्थिति में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं।
2: ममता यकीन करो वो कोई पागल थी।
0: हाँ, जब पोल खुलने लगी तो वो पागल हो गई। भला ऐसी कौन शरीफ औरत होगी जो सबके सामने पराए पुरुष के गले में हाथ डाल देगी।
2: ऐसी बेवकूफी करने से भला मैं कैसे रोक सकता था।
0: जब सब कुछ मेरे सामने हुआ है तो और आप कह भी क्या सकते हैं, कितने आत्मविश्वास से वो आपको अपना फास्ट फ्रेंड कह रही थी, आपको हाथ पकड़कर खींच रही थी। ऐसी औरतों के साथ घूमते हुए आपको शर्म नहीं आती है क्या?
2: ममता
0: दूसरों की तो नुक्ताचीनी करते हो जबकि खुद दिल से काले हो। बाल बच्चों वालों को ऐसी गिरी हरकतें करना शोभा देता है क्या? सच्ची और ईमानदार दिखाने के लिए अपने नाम के आगे क्यों सत्यार्थी लगा रखा है?
2: ममता धीरे बोलो, सब सुन रहे हैं, फिर बेमतलब की बातें तो मत करो, बेहतर है अब घर चलते हैं।
0: मेरा कोई घर बार नहीं है, अब उसी नखरे वाली को ले जाओ, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे।
2: अब कहाँ जा रही हो?
0: जहाँ मेरा दिल करेगा तुम उस परी को अपने साथ ले जाओ।
3: अब भाभी जी क्या हुआ, क्यों भाई साहब से बिगड़ रही हैं?
0: मुझसे क्या पूछते हो, पूछो पूछो अपने धोखेबाज 420 दोस्त से।
2: श्रीधरन मैं आप लोगों से मिलकर यहाँ आ गया, यहाँ से हम दोनों को बाजार जाना था, चलते चलते चाय पीने बैठ गए तो ना जाने एक मॉडल टाइप की कौन सी लड़की थी वो मेरे पास आकर बैठ गई और लगी इधर उधर की बेतुकी बातें हाँकने। मैं उसे जानता तक नहीं, पहचानता भी नहीं, बस उसी बात को लेकर ममता बिगड़ रही है।
3: रेखा अब आ भी जाओ ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 10 वर्षों के वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाए।
1: भाई बंधु जी ने सोचा शायद यही मुबारकबाद कहना जानते हैं।
2: ममता ममता देखा मैंने कहा था ना कि ये मुझे मिसेस श्रीधरन ही लगती हैं। बदले हुए कपड़ों में मैं पूरी तरह से पहचान नहीं पाया था।
3: तुम भी तो सड़क पर चलते चलते हम दोनों के बीच में संदेह के बीज बो आए थे।
1: और अगर चंदन भाई ना आते तो हमारा वही युद्ध छिड़ जाता, इसलिए बंधु भाई को सबक सिखाना जरूरी था।
3: मेरा ख्याल बंधु जी आइंदा के लिए तुम शंका के बीज बोने की हरकत नहीं करोगे।
2: अरे बाबा कभी नहीं, ममता का गुस्सा देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ कि निष्ठावान से निष्ठावान नारी भी आशंका की कितनी जल्दी शिकार हो सकती है।
1: तो आप लाइन पे आ गए
2: हमेशा के लिए।
4: हवा महल में अभी आप सुन रहे थे झलकी मुबारकबाद। इसके लेखक और निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। आकाशवाणी शिमला की इस प्रस्तुति के साथ ही

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कमाल खान, सुजैन, सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है वांटेड।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों लीजिए सुनिए अगला गीत बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और नाजिया हसन और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अनवर खालिद ने, संगीत है बिद्दू का और फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

where we wanna go. Hote hote milte hain, mil jate hain wahan.

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत। नीरज श्रीधर अलीशा चुनौई की आवाजों में, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश सुनिए यो यो हनी सिंह और जैस्मिन की आवाजों में। गीतकार संगीतकार है यो यो हनी सिंह और फिल्म का नाम है किक।

0: साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इस गीत को लिखा है पुनीत शर्मा ने, संगीत है रोशन का रोहन का, और फिल्म का नाम है संजू।
1: प्राण प्रिय

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम more crowded, technologies more powerful and actors more numerous।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दिस स्पिरिट मस्ट नाउ ट्रेवल बियॉन्ड अर्थ। वी सपोर्ट अ सेफ, सिक्योर, पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस डोमेन एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ, डायलॉग एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। साइंटिफिक डेटा मस्ट सर्व द कॉमन गुड विद ओपननेस एंड इंटीग्रिटी। इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर, दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के दो उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता चार प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल्स

डिफेंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है सूरज सनीम ने, संगीत है राम लक्ष्मण का और फिल्म का नाम है सातवां आसमान।

0: लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गड्डी ले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। गीतकार है इंदिवर, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं साधना सरगम की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए, इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहाँ बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कोई डर है न कोई रोजन है न कोई रोशनदान है, जिंदगी की ये इमारत कितनी आलीशान है। एक छोटा सा दिल इसमें रहता है, ये प्यार का नगीना है, तस्वीर उनकी जिसमें झिलमिलाती है। बात क्या कहूँ, कल रात दिल ने जो कही, आ जा के देख लूँ तुझे जी भर के एक बार, उठे हुए हैं दिल में वो तूफान तेरे बगैर।

गुलों में रंग भरा ये प्यार का तोहफा, खुशबू फैली हो जैसे रात की तन्हाई में। कितने मौसम बीत गए ये रंगत तब जाके नजर आई है, जो अब आए हो तो कुछ देर बैठो, चमन की बेबसी का राज कलियों से पूछो।

छाया गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे पेश करेंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

कुतरात ठहरती नहीं, जुबान से तो कुछ न कहा, हुई नजरों से नजरों की बात। अजब अपना हाल होता जो विशाल यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता।

चांद की खुली पलकों पर सितारों ने ख्वाब सजाए हैं। जरा सी देर हो जाए तो क्या होगा, दिल से दिल की बात कुछ और होने दो, शम्माए मोहब्बत कुछ और देर जलने दो, जुल्म ढाने का वरना डर होगा, ये इल्जाम भी हमारे सर होगा।

छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सोना महापात्रा की आवाज में हुसैन हैदरी का लिखा ये अगार फिल्मी गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। मुकेश की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम। संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म वीर दुर्गादास से लिया है। गीतकार पंडित भरत व्यास हैं और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ